प्रश्न उठ रहे हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में आकर के प्रश्नों के द्वारा हमसे उत्तर ले सकते हैं। तो आइए आज नए दिन की ओर चलते हैं, नए अभ्यास की ओर चलते हैं। आज का अभ्यास हमारा है भावना, यानी कि योग साधना भावना के माध्यम से। नाम से ही विदित है कि भावना का अर्थ होता है हमारे अंतर आत्मा को किस तरीके से सामने वाले को प्रस्तुत करना। कहा जाता है जैसी चैकी भावना वैसा दिखे भगवन। आपकी भावना जिस तरीके से जिसके लिए भी होती है वह आपके सामने वाले को दिखने लगती है। ठीक वैसे ही यदि हम ईश्वरीय वंदना की ओर चलें, हम ईश्वरीय स्तुति की ओर चलें, तो सबसे पहले जो कि एक नाम आता है वह है भावना। हम किसी से भी जुड़ते हैं तो भावात्मक रूप से ही जुड़ते हैं। भावना यानी कि योग साधना के माध्यम से हम आज जानेंगे कि भावना का महत्व हमारी योगशाला में योगाभ्यास में किस तरीके से मायने रखता है। योग से होने वाली कई ऐसी साधनाएं हैं, कई ऐसी योग आसन हैं जो कि हम नित प्रतिदिन तो करते हैं, परंतु सही मायने में हमें उस आसन, हमें उस प्राणायाम का महत्व उनसे जुड़कर नहीं समझ में आता है। इसीलिए यह 30 दिवसीय जो कि योग साधना का एक नया कार्यक्रम सीरीज शुरू हुई है, वह इसी कार्यक्रम, इसी श्रृंखला और इसी को उद्देश्यपूर्ण और बनाने के लिए। तो आइए भावना के अर्थ को हम योग अभ्यास के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के भागम भागी जीवन को व्यवस्थित रूप से एवं संतुलित रूप से करने के लिए भावना योग अति आवश्यक है। कई संत महात्माओं ने कहा है कि भावना योग तन को स्वस्थ और मन को मस्त व आत्मा को पवित्र बनाने के लिए अभिनव प्रयोग है। अभिनव प्रयोग का मतलब है कि यदि जो कि हम बहुत सारी ऐसी भावनाएं होते हैं जो कि हम अपने सामने वाले को प्रतीत नहीं करा पाते हैं, जैसे हम कुछ कहना चाह रहे हैं पर वह भावना उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी है कि भावना जिस तरीके से हम अपने सामने वाले की ओर रखते हैं वैसे ही हमें वह सामने वाला भी प्रतीत होने लगता है। यदि हम किसी को चाहपूर्ण से चाहते हैं तो वैसे ही उनके प्रति भावना बनने लगती है, और यदि हम किसी को घृणा रूप में देखते हैं, दोषपूर्ण देखते हैं, तो वैसी ही भावना सामने वाले के लिए बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी भावना को शुद्ध, पवित्र और जो कि विकृत अगर भावना आ रही है उसे हटाते हुए एक पवित्र और उज्ज्वल रखनी चाहिए। योग साधना में भावना योग साधना क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। पहला, भावना योग में आता है चमत्कारिक आसन, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा प्राणायाम। भावना से जुड़ी हुई कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसे हम समझ तो पाते हैं लेकिन हम अंतर रूप से कर नहीं पाते हैं। भावना योग साधना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द जो कि हमारे आज के योग साधना में सबसे पहला आता है, चमत्कारिक आसन। कई बार हम आसन तो बहुत सारे कर लेते हैं, जैसे आसन में सबसे महत्वपूर्ण आता है सूर्य नमस्कार, चक्रासन, उष्टासन और भी ऐसे बहुत सारे आसन हैं। लेकिन क्या हम ये जान पाते हैं कि किस आसन के साथ में हमारी कौन सी भावना जुड़ी है? ये भी तो हो सकता है कि भावना हमारी केवल की केवल यही है कि हमें पतला होना है, हमें दुबला होना है और हम इसीलिए उस योग साधना आसन को करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो उतना ही असर देता भी है। लेकिन यदि हम भावना ये रखें कि हमें स्वस्थ होना है, हमारा शरीर बहुत सारी ऐसी बीमारियों से हट करके स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। काफी लोगों की ये मनसा होती है कि हम योग साधना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक रूटीन बना रहे। साथ ही साथ योग साधना से जुड़ने के लिए कई ऋषि मुनियों ने यहाँ तक बता दिया है कि भावना सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण है योग से जुड़े रहने का। योग से जुड़े रहने

का महत्वपूर्ण कारण सिर्फ भावना को ही हम महत्व इसलिए दे रहे हैं कि यदि हम सवेरे उठ कर के हमारे मन में ये भावना है कि हम किसी स्वच्छ स्थान में बैठ जाएं और आराम से योग साधना को करें, तो यह भावना हमें रात में भी सोने नहीं देगी। हमें सवेरे उठ कर के जल्दी से इस प्रक्रिया को करने के लिए एक भावना जागृत करेगी। अंतर मन से हर प्रकार के कामों को करने के लिए सबसे पहले भावना ही उठती है। यदि हम किसी को माने, हम किसी मंदिर में जाएं, हम भगवान की प्रार्थना अर्चना करें, यदि भावना सही ना हो तो हो सकता है? नहीं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में एक शब्द जुड़ा है जो कि है भावना। आपने अभी एक बात गौर करी, भक्त भी भ से, भगवान भी भ से और भावना भी भ से, यानी कि भक्त, भगवान और भावना, ये तीनों चमत्कारिक शब्द इसलिए हैं कि तीनों के बीच में एक ही अंग, एक ही का अक्षर होना, भ। भ से भगवान, भ से भक्त और भ से भावना। इसीलिए कहा गया है कि यदि हम भावना से घर बैठे हुए अपने भगवान को याद कर लें, तो ही हमारी भावना उन तक पहुंच सकती है। योग साधना में भावना का अर्थ इतना दीर्घ बताया गया है कि अगर हम अभी आपके साथ में बताने के लिए बैठ जाएं तो काफी देर लग जाएगी, लेकिन भावना का सही उपयोग योग साधना में ये बताया गया है। तो आइए हम अब चलते हैं अभ्यास की ओर, जो कि है भावना योग। योग में सबसे पहले हम किसी स्वच्छ स्थान पर और एकांत वातावरण में बैठ जाएंगे। पद्मासन की स्थिति में, यदि आप पद्मासन की स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं तो आप साधारण सी पलथी मार करके भी बैठ सकते हैं। यदि आप जमीन पे भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी भी कुर्सी पे, जो बिना हत्थे वाली है, आप उस पे भी बैठ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए प्राणायाम आसन के प्रति। तो आइए हम अपनी भावना, योग भावना शुरू करते हैं। पद्मासन की स्थिति में या साधारण सी पलथी मारने की स्थिति में जब हम बैठ जाएंगे, उसके बाद हम एक हथेली, यानी कि अपनी दाहिनी हथेली बाई हथेली के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में जैसे हम हवन यज्ञ में जाते हैं, हम आचमन करते हैं, उसी तरीके से उसी अवस्था में आराम से बैठ जाएंगे और एकांत चित होकर के भावना योग की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इस तरह।

हाथों की हथेलियों में घर्षण करने के बाद में चेहरे पे और अपनी आंखों पे लगाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। भावना योग इसलिए है क्योंकि भावना योग हम भावना से जुड़ रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा को पहचानते हुए अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल अवस्था की ओर जाते हुए हम एकाग्रचित होकर के भावना योग की ओर आगे बढ़ेंगे। आती जाती श्वास को महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे कि दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास को लेंगे व छोड़ेंगे। कुछ इस तरह आवाज आएगी और यही प्रक्रिया हम लगातार 1 से 1.5 मिनट तक करते रहेंगे। तत्पश्चात बाईं नौसिका को बंद करके हम दाहिनी नौसिका से श्वास की प्रक्रिया को लेंगे और छोड़ेंगे। सिर्फ यही प्रक्रिया एक ऐसी है जो कि हम भावना योग में करते हैं। इस प्रक्रिया को करने से हमारी अंदर की जितनी भी विशुद्धि होती है वह बाहर निकलेगी और सही प्रकार में, सही मायने में जो कि प्रक्रिया है श्वास लेने की, वह अंदर जाएगी। इसी प्रक्रिया को 1 से 1.5 मिनट हम आराम से करेंगे और उसके बाद हम पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक साक्षी चित्र होकर के फिर से हम ओम की स्थिति

तो भावना योग आज आपने समझा कि भावना योग में हमने सबसे पहले ध्यान योग को लगाते हुए किस तरीके से हम मुद्राओं के साथ में जुड़ते चले गए। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं भावना योग के लाभ। भावना योग के लाभ हम कुछ इस तरह बताएंगे आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो जीवन शैली है वह हमेशा भागम भागी और सारे कामों को एक साथ करने की एक शैली बन चुकी है, लेकिन भावना योग आपको एक संतुलन से कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। भावना योग, जैसा कि बताया, यदि नित सवेरे आप केवल इस प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट, ये आगे की अवस्था है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था आप इसे 1 मिनट से शुरू करते हुए 1.5 मिनट 2 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में संतुलन शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जब आप किसी यज्ञ में जाते हैं तो आचमन कराया जाता है, और आपने इस योग साधना में आचमन भी किया, तो इसका मतलब यही हुआ कि योग शुरू करते समय हमें आचमन भी कराया गया और फिर आगे की प्रक्रिया को समझाया गया। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि योग यानी भावना योग साधना में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पद्मासन की स्थिति, या फिर आप बैठ सकते हैं साधारण सी पलथी मार करके, दाहिनी नासिका को बंद करके बाहिनी नासिका से सांस लेना है 1 से 1.5 मिनट तक और वहीं से छोड़ना है। तत्पश्चात बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से सांस लेना है व छोड़ना है। यही प्रक्रिया 1 से 1.5 मिनट तक चलती रहेगी। पुनः बताने का उद्देश्य यही है कि यदि आप में से किसी ने भी सुनने समझने में अगर आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम उन्हें पुनः बता दें। लाभ, भावना योग का लाभ बहुत ही संक्षिप्त है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं औरों को भी समझा सकते हैं। भावना योग, जैसा कि बताया, लाभ यह बिल्कुल जांचा परखा हुआ ही है कि भावना योग जब से आप करने लगेंगे आपको इसका लाभ 15 दिनों के अंदर ही मिलने लगेगा। उसके पहले आपको यह पक्का करना है अपने आप को कि हमारी भावना हमारे सामने वाले के प्रति कितनी ज्यादा पवित्र है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम भावना योग को करें और सामने वाले तक भी हम सही व सच्ची भावना पहुंचाने में सक्षम रहें। छोटा सा उदाहरण हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हम सभी एक पारिवारिक माहौल में रहते हैं। कई बार हमारे परिवार में कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें अप्रिय लगती हैं, जैसा कि किसी से विवाद हो जाना, किसी से बोलचाल बंद हो जाना। अगर हम उस स्थिति में एक मौन की स्थिति आ जाए और अपने आप को मौन करते हुए भावना योग की ओर अगर चले जाएं, तो तुरंत ही आपको इसका लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए कैसे, हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके घर में, आपके पारिवारिक में किसी से कोई विवाद की स्थिति है। उसके बाद में हमने उस समय तो विवाद कर लिया, लेकिन पूरा दिन हमारे अंतर मन में उनके लिए कुछ ऐसी उठपटांग सी बातें चलती रहती हैं। यदि वह बातें हम ना चलाते हुए उनके लिए अच्छा सोचें कि हो सकता है उन्होंने हमें इस तरीके से बोला हो, उसका अर्थ यह हुआ हो, यही भावना आपके सामने वाले तक भी जाएगी, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन है टेलीपैथी। हम जो सोचते हैं वह तुरंत हमारे सामने वाले की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इसीलिए भावना योग से जुड़ें और हमारे साथ नित प्रतिदिन आकर के योगशाला में जुड़ें। और इसी के साथ आज की सीरीज में भावना योग हम सभी मिलकर के करेंगे, यह एक दृढ़ संकल्प लेते हुए मुझे दे इजाजत, करें योग, रहे निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की युग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि योग पाठशाला में सवेरे आप आकर के सभी मिलकर के योग प्राणायाम क्रिया को करते होंगे। आइए दोस्तों, इसके पहले जब हमने अभी पहले का जो सीरीज बनाई थी उसमें विद्यार्थियों के लिए हमने कुछ प्राणायाम आसन बताए थे, जिसमें मेधा शक्ति, नेत्र शक्ति, आज उसी में आगे हम बताने वाले हैं कपोल शक्ति। आइए तो हम अपने प्राणायाम आसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज कराने वाले हैं कपोल शक्ति विकासक क्रिया, जो कि सबसे पहले हम विधि जान लेंगे और उसके बाद लाभ। समावस्था में खड़े रहें, हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाएं, अंगूठे से नाक बंद करें, गर्दन को ऊपर ले जाएं, मुंह को कांक चोंच की तरह बनाएं, जिस तरह सीटी बजाते हैं। अब 8 अंक मन में गिनते हुए मुंह से श्वास अंदर खींचे, तुरंत मुंह को बंद करें, गालों को फुलाएं, नेत्र बंद रखें, हुड्डी कंठकूप से लगाएं। 32 अंक तक मन में गिनते हुए श्वास को रोकें, तत्पश्चात गर्दन सीधी कर अंगूठा हटाकर 16 अंक तक मन में गिनते हुए नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास रोकते समय कनिष्ठिका सीने पर रखें, दोनों हाथों को कंधों के सीध में रखें और इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। कपोल शक्ति विकासक क्रिया को करने से हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, जिसमें सबसे पहला है कि साधक की दीर्घ आयु बनती है। जिन्होंने बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मतलब वैसे तो प्यास लगना बहुत ही आवश्यक है और अच्छी बात है, पर ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, जिसके लिए प्यास जो है वो शांत होती है, मुख के रोग जो हैं वो दूर होते हैं, दांत पुष्ट बनते हैं और मुख की दुर्गंध दूर होती है, मुख प्रफुल्लित होकर गालों की झुर्रियां, चेहरे के फोड़े फुंसियां ठीक होते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर दर्द, नेत्र दोष, पेट की गर्मी, बालों का पकना, झड़ना आदि विकार ठीक होते हैं। विद्यार्थी उम्र में, यानी कि जब हम देखते हैं कि 12-13 साल से 18-19 साल के बीच की जो अवस्था होती है, उसमें ये सारी तकलीफें विद्यार्थियों को आती रहती हैं, जैसे कि चेहरे पे फोड़े फुंसी निकलना, नेत्र दोष और पेट की समस्या, बालों का पकना, झड़ना आदि, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। कपोल शक्ति विकासक क्रिया नित्य प्रतिदिन करने से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। अगला है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया विधि। समावस्था में खड़े रहें, हाथों के अंगूठे से कान को बंद करना है, तर्जनी से नेत्र और मध्यमा से नाक को बंद करें, गर्दन को ऊपर उठाएं, 8 अंक तक मुख में श्वास भरें, गालों को फुलाएं, हुड्डी कंठकूप में लगाएं, 32 अंक तक मन में गिनते हुए श्वास को रोकें, दोनों हाथों को कंधों के सीध में जमीन के समांतर रखें, गर्दन को सीधा कर मध्यमा उंगली हटाते हुए नाक से 16 अंक में श्वास को बाहर छोड़ें। इस क्रिया को हमें 3 बार करना है। आइए अब हम कर्ण शक्ति विकासक क्रिया के लाभ जान लेते हैं।
कान का मैल, कान का बहना, कम सुनाई देना आदि विकार जो हैं, वो दूर होते हैं। कान का संस्कृत शब्द जो है कर्ण, इसीलिए इस आसन का नाम कर्ण शक्ति विकासक क्रिया रखा गया है। कर्ण रंध्र की शक्ति जागृत होती है और वे पुष्ट बनते हैं। कान, नाक, आंख और मुंह बंद करने से सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग शुद्ध होता है, जिसके कारण विविध प्रकार के नाद यानी ध्वनि सुनाई देते हैं। प्राणायाम के लिए विशेष लाभकारी क्रिया है, जो कि हम कर्ण शक्ति विकासक क्रिया के नाम से हम जानते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम और आवश्यक आसन है। आसनों में अगला आसन है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। उसका भाग नंबर एक सबसे पहले करेंगे। ग्रीवा का मतलब होता है जीभ, तो आइए हम विद्यार्थियों के लिए यह आसन कर लेते हैं और हम सभी मिलकर के आसन करेंगे। सभी के लिए ये आवश्यक है। समावस्था में खड़े रहें, श्वास खींचते हुए गर्दन को बाएं कंधे की सीध में ले जाएं, गर्दन को दाएं और बाएं लाएं, श्वास छोड़ें एवं गर्दन दाएं कंधे की सीध में रखें। क्रिया को इसी तरह 10 बार आइए भाग इसका दूसरा जान लेते हैं। श्वास लेकर गर्दन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर देखें, श्वास छोड़कर गर्दन को नीचे की ओर वापस लाएं। आइए अब हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के लाभ जान लेते हैं। ग्रीवा के समस्त रोग दूर होते हैं, गर्दन का मोटापा कम होता है, टॉन्सिल्स, कंठमाला आदि रोग ठीक होते हैं, स्वर मधुर व सुरीला बनता है, हकलाहट और तुतलापन जैसे विकार ठीक होते हैं, गर्दन पुष्ट और मजबूत बनती है। यह विद्यार्थियों की उम्र के बीच का जो भी ये समस्याएं हैं वह दूर होती हैं, जैसे हकलाहट हो जाती है कुछ बच्चों को और तुतलापन। तो यह आसन करने से जिस क्रिया से अभी आसनों को बताया गया है, उसी क्रिया से इस आसन को करने से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। आइए ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का दूसरा भाग कर लेते हैं। समावस्था में खड़े रहें, हुड्डी कंठकूप में लगाएं, आंखें बंद ना करें, श्वास खींचकर रोकें, सिर बाएं कंधे की ओर से चक्राकर घुमाते हुए सामने लाएं, श्वास छोड़ें, पुनः श्वास भरें, चक्राकर में दाएं ओर से बाएं ओर सिर वापस लाएं, पूर्ण चक्र होने पर श्वास को छोड़ें। यानी कि हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहना है। प्रयास करें कि दोनों समय गर्दन को इतना झुकाएं कि कान कंधे से स्पर्श करने लगे, कंधों को उठाएं। इस क्रिया को आपको 3 बार करना है। आइए दोस्तों अब हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के लाभ जान लेते हैं। ग्रीवा के समस्त रोग दोष दूर होते हैं, गर्दन का मोटापा कम होता है, टॉन्सिल्स, कंठमाला आदि रोग ठीक होते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का तीसरा, समावस्था में खड़े रहें,

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

राधे राधे श्रोताओं, सुप्रभात और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की पहली किरण में मैं आपको लिए चलूंगी मथुरा की गलियों से लेकर गोकुल के आंगन तक, वृंदावन के कुंजों से होकर कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र तक, जहां हर मोड़ पर कान्हा का एक रूप है, नन्हा शिशु माखन चोर, गोवर्धन धारी बंसी वाला गोपाल और अंत में गीता का योगेश्वर। हर कहानी हर रूप एक न एक सीख देती है, हर कहानी में छुपा है जीवन का संदेश। तो आइए शुरू करते हैं कान्हा के जन्म से, और उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आप सभी सुन रहे हैं अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण और मैं हूं आपकी रेडियो सखी आकांक्षा। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो कोई विषय नहीं, वो है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम का सागर, मोक्ष दिलाने वाला। जी हाँ, श्री कृष्ण, कृष्णा, कन्हैया, माधव, केशव, ना जाने कितने नाम है जिनके। आज हम उनके जन्म की कहानी जानेंगे, सुनेंगे और उसके बारे में वार्तालाप आपस में करेंगे। आपस में करेंगे मतलब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी और आप अपने आसपास में इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस दिन की खुशियों को मनाने वाले हैं और साथ ही साथ में ढेर सारे भजन का भी आनंद उठाने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ कृष्ण की जन्म की ओर। उस युग में, उस दौर में जब कंस का आतंक था पूरे मथुरा में, देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे। देवकी की हर संतान जन्म लेते ही कंस के हाथों मारी जा रही थी और फिर आया वो दिन जब जन्म हुआ सारे दुखों के नाशक का, मधुर करने वाले का, हर किसी को अपनी आकर्षण से मोह लेने वाले का, श्री कृष्ण का। दिन था भाद्रपद की अष्टमी की आधी रात। रात के समय जैसे ब्रह्मांड थम सा गया, बादल गरजे, बिजली चमकी और जन्म हुआ उस नन्हे श्याम का, जो आने वाले समय में दुनिया के हर अन्याय का अंत करने वाला था। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव शिशु को सिर पर रखकर यमुना पार कर नंद के घर पहुंचे। श्रोताओं, इस जन्म में छुपी सीख ये है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म का जन्म अवश्य होता है।

आप सभी सुन रहे हैं अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी अपनी रेडियो सखी आरजे आकांक्षा के साथ। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। एक कथा जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, पूतना वध। कृष्ण का जन्म होता है, वो जेल से देवकी और वसुदेव के पास से यशोदा और नंद के घर नंदग्राम पहुंचते हैं। उसके बाद आती है पूतना। जन्म लेते ही इनके सगे मामा इनके वध के लिए आतुर हो जाते हैं। जिस तरह से इनके पूर्व बाकी भाइयों का वध कंस के हाथों किया गया, अब इनकी भी बारी आने को थी, ऐसा सोचना था कंस का। जिसके लिए उसने पूतना नाम की एक राक्षसनी को इनको ढूंढ कर इनका वध करने के लिए भेजा। गोकुल में खुशी का माहौल था, लेकिन कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को इसलिए भेजा क्योंकि वो एक महिला थी और उस दिन उस माहौल में सभी को कन्हैया के, जी हाँ, नंद के लाल के दर्शन मिल सकते थे आसानी से। जिस तरह से किसी भी उत्सव के लिए पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है और सभी को उस उत्सव का अंश बनाया जाता है, उसी तरह से पूतना भी एक सुंदर नारी के रूप में वहां गई जाती है और कहती है कि मुझे भी कान्हा के दर्शन करने हैं। तो जो सुंदर स्त्री का रूप धरकर गांव में आई वो थी पूतना, और शिशु को दूध पिलाने का बहाना किया उसने। उसके स्तनों में विष था, लेकिन कान्हा ने उस विष को पीते पीते उसकी आत्मा का उद्धार कर दिया। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि अगर भूल चूक से ही किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, मतलब यहाँ कन्हैया ममता वाला पार्ट देखते हैं पूतना का। उसने अपने दूध को पिलाया तो कन्हैया ने उसको उस राक्षसनी योनि से मुक्त कर दिया, मुक्ति दिला दी। जी हाँ, उन्होंने उसे मोक्ष दिला दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि दुष्ट का भी उद्धार संभव है, नफरत के बीच भी प्रेम का रास्ता निकाला जा सकता है। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे और एंजॉय करिए ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, हमारे जीवन में भी कई पूतना रूपी हालात आते हैं जो बाहर से मीठे पर अंदर से कड़वे या खट्टे नहीं बल्कि विषैले होते हैं। उन्हें पहचानना और सही दिशा में शक्ति लगाना ही कृष्णत्व है।

जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन नटखटे पने से भरा हुआ था। वो माखन चुराते थे, मटकी फोड़ते थे और गोपियों से हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन इसमें एक गहरा भाव छुपा है। माखन चुराने का मतलब है ईश्वर भक्त का निर्मल हृदय चुराता है। जी हाँ, जब हम छोटे बालक होते हैं और थोड़े से नटखट पने में बहुत कीमती सामान कुछ भी तोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हमारे मासूमियत को देखा जाता है और उस कीमती सामान के टूटने को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भक्त थोड़ा सा कड़वाहट भी लाता है या कुछ भी उल्टा सीधा कर देता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, भक्त को निर्मल हृदय समझकर माफ कर दिया करते हैं। कान्हा के लिए माखन कोई भोजन नहीं, वो प्रेम का प्रतीक है। तो इस

जन्माष्टमी माखन और मिश्री का भोग लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि माखन चोर आपके हृदय में बसता है, हर एक घर के निवासी के दिल में बसता है। बुलाएं और भोग लगाएं और आनंद उठाएं इस प्यारे से भजन का।

श्रोताओं, कान्हा सिर्फ नटखट नहीं थे, वे समाज सुधारक और प्रकृति के रक्षक भी थे। यमुना का पानी जहरीला हुआ तो उन्होंने कालिया का वध किया। कृष्ण का कालिया के फन पर नृत्य करने का मतलब था, कितनी भी कठिनाई हो उसको आनंद के साथ सहो, देखो और उसका निस्तारण करो। अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, सत्य के आगे उसे एक दिन झुकना ही पड़ता है। और इनके जीवन की सबसे बड़ी सीख, हर कदम पे दुख, हर कदम पर बिछो, चाहे वो माँ से हो, परिवार से हो, या अपनी प्रिय बांसुरी से हो, या राधा से हो, या फिर अपने ब्रजवासियों से हो, गोकुलवासियों से हो, सभी से कहीं ना कहीं इनको समय समय पर बिछो का सामना करना पड़ा। काफी यातनाएं, काफी कष्ट होने के बाद भी ये सबसे बड़े प्रेम के द्योतक, प्रेम के स्वरूप और मुस्कान बांटने वाले बने रहे। और आज भी हम इन्हें वैसे ही याद करते हैं, और याद करने के बाद में हमारे भी चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो आइए मुस्कुराते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को जाना, अब आपको ले चलते हैं एक और कहानी की ओर, जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। ये बात, ये कहानी किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। ये बात उस समय की है जब सभी गोकुलवासी इंद्रदेव के लिए पूजन का आयोजन करते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आखिर में हम देवी देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं, और इंद्र हमें क्या ही ला के दे देते हैं, हमें इनका पूजन नहीं करना चाहिए। हमें तो पूजन करना चाहिए अपनी गौ माता का, अपनी इस भूमि का जो हमें अनाज देती है। और इस तरह से उस वर्ष इंद्रदेव की पूजा नहीं हुई, जिसको सुन के इंद्रदेव रोषित हो गए, यानी गुस्सा हो गए। वरुण देव से कहा कि कई महीनों तक इस पे वर्षा कीजिए, कहां गोकुल ग्राम पे। फिर वर्षा शुरू होती है और वो पूजा इंद्रदेव की ना करते हुए बकायदा, और वो जो पूजा इंद्रदेव के लिए और वो जो पूजा इंद्रदेव के लिए रखी गई थी उनके लिए ना करके वहाँ पे जो सबसे बड़ा पर्वत था, जहाँ से पूरे गोकुल वासियों का भरण पोषण होता था, यानी गोवर्धन पर्वत, उसकी पूजा की गई। सारी चढ़ावे, सारी पूजन सामग्री सब गोवर्धन पर्वत को चढ़ाया गया, और सभी फलों मिष्ठानों और बाकी सभी चीजों का आहार किया हमारे कन्हैया ने। जी हाँ, एक रूप धर कर वो गोवर्धन पर्वत में समाहित हो गए। वैसे भी वो तो हर जगह निवास करते हैं, हर दिल हर एक सांस में। फिर इंद्रदेव ने जब पूरी तरह से रुष्ट होकर लगातार वर्षा की, फिर भी कन्हैया ने क्या किया, जब पूरे गांव वाले चकित हो गए, डर गए कि ये सभी कुछ हमारे इंद्रदेव हमसे रुष्ट होकर कर रहे हैं, हमने इस बार उनका पूजन नहीं किया, तो उसकी नाराजगी स्वरूप आज हमको ये कष्ट झेलने को पड़ रहा है। कन्हैया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जिसकी पूजा की है अब वही आपकी मदद भी करेंगे। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पास। तभी श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठा उंगली, यानी सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठा लेते हैं, और जितना भी खाने पीने का सामान जिसके पास

था सब कुछ लेके, अपने पशुओं को लेके सब उस पर्वत के नीचे निवास करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि इंद्रदेव थक जाते हैं। कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण ये पूरे ग्रामवासी अभी तक बचे हुए हैं। फिर इंद्रदेव को नीचे आना पड़ता है, वो क्षमा मांगते हैं जब कन्हैया से मुलाकात होती है उनकी, और उनको अपनी गलती का भी भान होता है कि अहंकार सभी पतनों का कारण है। इसके उपरांत सभी ग्रामवासी कहते हैं कि कन्हैया यदि तुम ना होते तो हमारी जान न बचती, हम ना बच पाते और इतना भारी पर्वत हम कैसे उठाते। तो कन्हैया कहते हैं ये मेरी शक्ति का नहीं कमाल है, चाचा ताऊ भैया ये तो आप सभी की शक्ति का कमाल है। आप सभी ने, किसी ने कोई लाठी लगाई, किसी ने अपना हाथ लगाया, जो अपनी शक्ति भर जितना कर सकता था सबने मदद की, तब जाके मैं ये गोवर्धन पर्वत उठा पाया हूँ। तो इस तरह से सभी कर्मों को करने के बाद भी किसी भी कर्म का क्रेडिट खुद नहीं लिया कन्हैया ने, और ये भी सिखाया कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार सदैव पतन का कारण होता है। इस तरह से इंद्र का अभिमान टूटा, गांव वालों को प्रकृति पूजा के लिए प्रेरणा मिली और 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा हमारे कन्हैया ने। उसके बाद भी कोई श्रेय खुद के लिए नहीं लिया। ईश्वर प्रकृति में है, प्रकृति की सेवा ही पूजा है। यही शिक्षा थी इस कहानी की कन्हैया की तरफ से। तो प्रकृति की सेवा करें निस्वार्थ भाव से। आज हम गोवर्धन की तरह अपनी धरती, पानी, पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। यही असली भक्ति है। भक्ति करते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से भजन।

चलिए एक बार पुनः मैं आप सभी को ले चलती हूँ श्री कृष्ण जन्म की कथा की ओर। भाद्रपद मास की अष्टमी आधी रात का वक्त मथुरा नगरी के राजमहल में कैद थे वसुदेव और देवकी। देवकी के 6 संतानों को कंस पहले ही मार चुका था, क्योंकि आकाशवाणी में ये कहा गया था कि हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारी काल बनेगी। कंस का आतंक पूरे मथुरा में था। 8वीं संतान के जन्म के समय आकाश में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे और जेल को चारों ओर से घेर लिया गया था। अंधकार पसरा हुआ था। मगर उसी अंधकार के बीच जन्म हुआ नन्हे श्याम का। देवकी ने जैसे ही कृष्ण को अपनी गोदी में लिया, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज। वासुदेव ने देखा, जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदारी देने वाले पहरेदार सभी गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां टूटकर गिर गई, यानी खुल गई। वसुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना की लहरें उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, नदी का जल रास्ता देने के लिए 2 भागों में बट गया। नागराज शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु को बारिश से बचाया और कहा भी जाता है, सूप में सांवले श्याम को देखकर शेष जी फन को ताने खड़े रह गए। और एक और कहावत है कि यमुना जी का स्तर इसलिए बढ़ा ताकि वो कन्हैया के बाल रूप स्वरूप का आशीर्वाद पा सके। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के नन्हे कोमल चरणों का स्पर्श किया, वो खुद ब खुद घटती चली गई और जो तूफान उठा था यमुना नदी में, वो एकदम से शांत हो गया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने शिशु को नंद बाबा के घर यशोदा के पलंग पर सुला दिया और वहाँ जन्मी कन्या, जिनको योग माया के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इनको श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी मानते हैं, इसके अलावा उन्हें श्री कृष्ण की बहन भी कहा जाता है, को लेकर मथुरा लौटा। जब कंस ने ये सुना कि बालक नहीं कन्या ने जन्म लिया है, उस दुष्ट ने उस कन्या को भी मारना चाहा। वो देवी योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और अब तुझे तेरे अंत की ओर ले जाएगा। तुझे इस अंत से कोई नहीं बचा सकता। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म का जन्म अवश्य होता है। अन्याय और अत्याचार कभी स्थायी नहीं होते, हर युग में उसका अंत

श्रोताओं, आपने एक और कहानी बहुत सुनी होगी, जी हाँ, जिसकी चर्चा अक्सर होती है, श्री कृष्ण की रासलीला। रासलीला का साधारण सा मतलब ये है, रास शब्द का मतलब है जो चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ आपको रास आए, जो चीज़ आपके हृदय को खुशी दे। जी हाँ, तो हमारे कन्हैया तो हर एक कला में निपुण थे, पूरी की पूरी 16 कलाओं में पारंगत थे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप केशव। उसमें से एक कला होती है नृत्य की, जो इन्हें बेहद पसंद थी, उसी का आनंद उठाते थे ये रास करते हुए, जिसमें कभी कभार भोलेनाथ भी शामिल हुए, कभी पार्वती माता भी शामिल हुई, और इसी तरह देवी देवता गंधर्व सभी उनके साथ रास करने आते थे। और आज भी कहा जाता है कि निधिवन में कहीं ना कहीं हर दिन रात के वक्त कन्हैया रास करने आते हैं। हर गोपी को लगता था कि कान्हा उनके हैं। तो यदि कोई आपके जीवन में भी आपका कोई विशेष हो, तो उसको आप वक्त देते ही देते हैं, और हर किसी को कान्हा इस तरह से वक्त दिया करते थे, रास रचा के, उनके साथ खुशियां मना के, खुशियों को बांट के, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, आत्मा का मिलन होता है। रास सिर्फ नृत्य नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति होती है।

अब आपको ले चलती हूँ श्री कृष्ण के योगेश्वर रूप की ओर, महाभारत और गीता की ओर। उससे पहले आपको सुना देते हैं एक और चरित्र। जी हाँ, मित्रता की उच्चतम कोटि, सुदामा चरित। सुदामा को तो आप भली बात जानते होंगे, श्री कृष्ण के मित्र। जब ये फटी पुरानी वस्त्र में एक ब्राह्मण आता है कन्हैया की नगरी और कहता है कि मुझे अपने बचपन के मित्र केशव से मिलना है, कन्हैया से मिलना है, वो मेरे मित्र हैं। तभी द्वारपाल उसे रोक के कहते हैं, बड़ा आया, कन्हैया कहाँ राजा हमारे, और तू मलीन फटी पुरानी दुपट्टी में लिपटा हुआ, जो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, पाँव में पहनने को कुछ नहीं है, पाँव में बीमारी फटी हुई है, और इतना मलिन स्थिति में तू कन्हैया का भक्त हो सकता है, तू कन्हैया का मित्र हो सकता है। और इस तरह धिक्कारते हुए सुदामा को वापस कर दिया गया। रास्ते में काफी यातनाएं सही थी सुदामा ने, भूखे प्यासे थे, और इस तरह से निराश होकर वो वापस जा रहे होते हैं। तभी आभास होता है केशव को कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। ढेर सारी रानियों के बीच में बैठे कन्हैया भोजन करने जा रहे। तभी अचानक से वो अपना सब कुछ छोड़कर, सुध-बुध भूलकर इस तरह से वहां से दौड़ते हुए जाते हैं कि उनके मित्र को वापस कर दिया गया। जब एक द्वारपाल के द्वारा उनको ये खबर मिलती है तो एकदम बेसुध हुए कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, मेरा बचपन का मित्र, मेरा सुदामा मुझसे मिलने आया। इस तरह

0: तरह से भागते हैं कि उनके सर का मुकुट कहाँ कि उनके सर का मुकुट कहीं गिरा होता है, उनके अंगवस्त्र कहीं गिर रहे होते हैं, और वो एकदम से बेसुध हुए दौड़ते हुए सुदामा की ओर जाते हैं। सभी रानियां रुक्मिणी और बाकी सभी रानियां परेशान हो जाती हैं कि आखिर ये स्वामी को हुआ क्या है, और वे सभी भी उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। अब अपने राजा को देख और उनकी रानियों को दौड़ता देख सारे गांव वाले भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। और इधर सुदामा अपने रास्ते जा रहा था, पीछे से आवाज आती है श्री कृष्ण की, मित्र कहाँ जा रहे हो, ठहरो ठहरो। और इस तरह से होता है सुदामा और कृष्ण का मिलन। कुछ क्षण तो हृदय से लगने के बाद कन्हैया खाली रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। लगातार रोने के बाद उनको ले जाया जाता है राजभवन में, उनकी सेवा की जाती है, सत्कार किया जाता है, और कहा भी जाता है कि कन्हैया ने इतने आंसू गिरा दिए कि उनको पानी से चरण धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये था एक प्रेम, ये थी मित्रता की भावना, और एकमात्र सुदामा ही थे जो उन्हें मित्र कह के बुलाते थे। बाकी केशव माधव उधो, कोई प्रेमी कोई कुछ जो जैसी भावना रखता था, पर ये जो मित्र वाली भावना है वो सिर्फ और सिर्फ सुदामा के ही हिस्से की थी। इस तरह से अपने मित्र की आव भगत की कन्हैया ने, और रात का जब वक्त आया, सेवा कर रही थी श्री कन्हैया की, तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके पाँव में ये दिवाई कैसी? तो कान्हा बताते हैं कि मेरा मित्र आया यहाँ और उसने जितनी भी यातनाएं झेली अभी तक उन सभी को मैंने अपने पास रख लिया। फिर उपहार स्वरूप जब तेंदुल की पोटली खुलती है अगले दिन, तो रुक्मिणी जी जब पहले तो सुदामा झिझक में नहीं देते हैं, फिर जबरदस्ती श्री कृष्ण उनसे छीनते हैं और कहते, नहीं भाभी ने तो मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार भेजा है, आप झूठ बोल रहे हो मित्र। इस तरह से जब वो दो फांकी तेंदुल की लगाते हैं, मतलब उस चावल की खा लेते हैं, तो इसमें वो दोनों लोकों को दान कर देते हैं, पृथ्वी लोक और आकाश लोक। बचता है उनका वो लोक जहाँ वो निवास करते हैं, सत्य लोक। जैसे ही तीसरा फांका श्री कृष्ण उठाते हैं, तभी रुक्मिणी उन्हें रोक देती है कि अब ये मेरे हिस्से का है, हमें भी तो इसका स्वाद चखने दे, हमें भी तो इस प्रेम की अनुभूति करने दे। और इस तरह से मित्रता का ये भाव भी सामने आता है कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं और इसकी पराकाष्ठा होती है, फिर हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं सामने वाले पर सब कुछ से पहले हमें एक जगह पे रुकना भी होता है, अपने आप को नहीं खत्म करना होता है, अपने स्वरूप को पूरी तरह से, अपने अस्तित्व को खत्म करने से पहले हमें रुक जाना होता है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें कई सारी सीख मिलती है कि जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो वो ऊपर वाला हमारा साथी हो जाता है, वो खड़ा होता है हमारे लिए। हम जब किसी के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं तो वो हमें देता है। हम कभी गलत भी करते हैं किसी के लिए तो सीख के रूप में ईश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं। और इस दुनिया में अगर कोई सबसे खास रिश्ता है तो वो है मित्रता का, जो हम स्वयं बनाते हैं।
1: कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणा कुश का वो फाड़े,

बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी

आप सुन रहे हैं अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण और मैं हूं आपकी रेडियो सखी आरजे आकांक्षा। चलिए अब चलते हैं आपको लेके गीता के उपदेश की ओर। जी हाँ, अर्जुन को मोह हुआ कि वो अपने ही परिवार का हनन कैसे करे, उन सभी को कैसे मृत्यु की घाट पे उतार दे जिन्हें वो भाई, पिता, माता स्वरूप मानता है, फिर बात आती है कर्म, धर्म और भक्ति के संदेश की जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ये तो पहले ही मर चुके हैं, इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपने पतन को खुद आमंत्रित कर दिया है। तुम्हें तो वीर बनके अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है, बिल्कुल, और अमर हो जाना है इतिहास में। तुम्हें ये नींव रखनी है कि अन्याय करने वाला कोई भी हो, उस अन्याय को हमें नहीं सहना है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, और धर्म स्वयं की रक्षा करता है, इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सब कुछ पहले से ही नियति के द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। तुम्हें तो बस एक वीर की भांति युद्ध करना है और न्याय के लिए, धर्म के लिए इस युद्ध में विजयी भी होना है। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम उन्नति के रास्ते पे जाओगे, और अगर तुम्हारे कर्म अन्यायपूर्ण हुए, अधर्मपूर्ण हुए, तो तुम अवनति को न्योता दे रहे होगे। तो अच्छे कर्म करें, हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें।

आज के एपिसोड में हमने कृष्ण के जीवन के हर रूप से कुछ ना कुछ सीखा, जिसने हमें जीने की कला सिखाई। बालपन में मासूमियत, यौवन में प्रेम, मित्रता में समर्पण और अंत में सत्य के लिए दृढ़ता। आज जन्माष्टमी पर

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861 9876 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आ गए हैं, न सिर्फ आए हैं बल्कि संग अपने कई सारी बातों को लेकर आए। लेकिन एक खूबसूरत सी सुबह ने आज वाकई में फिर से ऐसा लगा है कि वेलकम कर दिया है। मतलब आजकल तो दो दिन से जब भी उठो ऐसा लगता है जैसे मेहरबान है सुबह, और कितना प्यारा लगता है सब कुछ, है ना। इतना मज़ा आता है कि सुबह देख के ही दिल खुश हो जाता है। यस, मतलब सुबह ऐसी होती है कि सुबह देखो और ऐसा लगता है वाओ दिन बन गया, दिल खुश हो गया। सो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये होना बहुत अच्छा है। और आज की सुबह अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिटरली बता रहा हूँ भाई, देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा। आप भी कहेंगे वाह क्या रिकमेंडेशन था वाकई। तो आज तारीख जो है वो 4 सितंबर हो गई, देखते देखते अक्टूबर निकल गया, सितंबर आ गया, और सितंबर की भी 4 तारीख हो चुकी है। यानी ये दिन काफ़ी तेज़ी से गुज़रता है, ये तो बात हम सभी लोग जान रहे हैं। एंड इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो दिन है ये आपको अपने अकॉर्डिंगली बिताने होते हैं, क्योंकि ये वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है। ये सिर्फ दिन नहीं जा रहा बल्कि हमारी लाइफ के कीमती दिन जो है वो भी जा रहे हैं। सो फिलहाल अब ले चलते हैं आपको आज के फ्राइडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे की तरफ, और बताते हैं कि आज का स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है जो आपको आज एक ऐसा तोहफा देने वाला है जिसको आप हमेशा अपने पास अगर रखेंगे तो आपको हमेशा मेरी याद भी आने वाली है। अब मेरी याद क्यों भाई, मेरे ही ज़रिए पहुँचेगा ना आप तक। तो चलिए हम कहीं ना कहीं अपना इसको बना ही लेते हैं फिलहाल। अब आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ चलें और बताएं कि भाई आज का फ्राइडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे जो सिर्फ आपके लिए है वो आखिर अपने संग ऐसा क्या लाया है जो आपको सुनने के बाद देखने के बाद बेहतर लगने वाला है और आप कहने वाले हैं वाह क्या बात है। जब तक ये वाह नहीं निकलता है मुँह से

आज का थॉट ऑफ द डे इतना ज्यादा धांसू है कि आप कहेंगे अरे ये कैसे, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही अलग था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज दरअसल व्हाट द मीन ऑफ स्टाइल, जो स्टाइल स्टाइल हम कहते हैं कि बड़ा स्टाइलिश था, बड़ा स्टाइल मार रहे हो, तो आखिर ये स्टाइल है क्या। आज का दौर कहता है कि स्टाइल जो है वो बिना बोले ये बताने का एक तरीका है कि आप कौन हो। समझ में आया, स्टाइल क्या है? स्टाइल है बिना बोले ये बताने का तरीका कि आप कौन हो, यानी आपकी पर्सनालिटी को दिखाने का, जताने का, बताने का एक तरीका है स्टाइल। सो स्टाइल जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ कोर्स पॉपुलर होती है लोगों के बीच। ये वर्ड जो है इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और यही स्टाइल जो है आपको दिखाती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप हो कौन। सुबह ही स्टाइल की बात करें तो देखिए कई लोगों का स्टाइल होता है कि पहले गर्म जोशी से हाथ मिलाना, कई लोगों का स्टाइल होता है एक स्माइल के साथ में स्टार्टिंग करना, और कई लोगों का स्टाइल होता है अपना इंट्रोडक्शन अपने स्टाइल में देना, यानी अपने तरीके में देना। सो स्टाइल यही है कि आप जब बोले ना, और आपके हाव भाव, आपके तरीके, आपका जेस्चर, आपका पॉस्चर ये बताए कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो फिर आप समझ जाइएगा कि वही जो है स्टाइल है। तो ये स्टाइल जो है कितनी ज़्यादा आप यूज़ करते हैं ये ज़रा सोचिएगा। लोग कहते हैं ना कि वो उसका स्टाइल है भैया, कि जब वो आता है तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बताता है, वो उसका स्टाइल है भैया कि वो लोगों को सुनता है तो उसके बाद से इस तरह रिस्पॉन्ड करता है, वो उनका स्टाइल है। जब वो आती हैं तो वो ऐसे कुछ बातों की शुरुआत करती हैं। तो भाई ऐसा होता है ये स्टाइल में, और कई लोगों का स्टाइल होता है हाँ हाँ करना, यस यस ऑफ कोर्स, और सामने वालों को लगता है कि यार ये सिर्फ यस कर रहा है, लेकिन जब पूछो तो सच में उसको पता होता है सारी चीज़ें, बस उसका स्टाइल होता है हाँ हाँ करने का। सो ऐसे बहुत सारे स्टाइल हैं, मुझे लगता है ऐसे कुछ स्टाइल्स आप में भी होंगे जिनको लेकर के लोग कहते होंगे वाओ भाई। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग कहते हैं कि चश्मा ऊपर करने का भी लोगों का स्टाइल होता है। अब भैया ये स्टाइल कितनी तरह का होता है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि स्टाइल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्टाइलिश लोगों से आपका पाला ज़रूर पड़ा होगा, और इवन ख़ुद आप में एक स्टाइल होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई स्टाइल है, या ऐसे किसी स्टाइलिश पर्सन को आप जानते हैं जिनकी स्टाइल से आप भी प्रभावित हुए थे, सो आप भी मेंशन करके बता सकते हैं। फिलहाल ये आज स्टाइल वाला थॉट कैसा लगा ये हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए, कि और किस तरह से आपका स्टाइल है। जब किसी अनजान शख्स से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपका स्टाइल क्या कहता है, आप आखिर किस स्टाइल में रहते हैं, क्योंकि कुछ हो ना हो लेकिन कहा ज़रूर ये जाता है कि भैया स्टाइल में रहने का।

तो स्टाइल वाला सॉन्ग भी आ गया। वैसे हम बता दें, स्टाइल का मतलब जितना बताया उतना नहीं है। स्टाइल मतलब हर वो चीज जो आपकी बातों को प्रभावित करती है, समझे? अपन के स्टाइल।

0: या सच बोल रहा है अपन की स्टाइल में रहने का है, वो चाहे गुंडा का है तू, चाहे बारा बाइच का हो या बारा ब्रंकी का हो, कहीं का भी हो, तो बस स्टाइल में रहने का। और स्टाइल का मतलब ये आपकी जो स्माइल का तरीका है ना, वो बहुत बेहतरीन स्टाइल है। आपके स्टाइल का तरीका जो लगातार किसी को कंसंट्रेट होकर के सुनना है ना, ये एक्टिव लिसनिंग जिसे बोलते हैं, वो बहुत बेहतरीन स्टाइल है। आपका स्टाइल तो ये भी है कि बात करते करते हल्के से आप अपनी जुल्फों को ऊपर कर रहे हैं या आप कान के पीछे कर रही हैं, तो ये भी आपका एक स्टाइल है। तो चलिए भाई, स्टाइल वाले थॉट के बाद स्टाइल वाली जरा मैसेजेस पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ आपने लिखा है, क्योंकि इस वक्त आपने ट्यून किया हुआ है हमको फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ आप हमको सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से, जो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिलता है। और इसी एप्लीकेशन में आपको मिलता है चैट का ऑप्शन, जिसमें आप जो कुछ लिखते हैं सीधे गोंडा एफएम के आरजीस तक लाइव शो में पहुंच जाता है आपका मैसेज। सो फिलहाल वो लोग जो सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, उन्होंने चैट पर आकर के क्या कुछ लिखा है और क्या क्या मैसेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि आज का दिन वैसे भी काफ़ी बड़ा है, आज फ्राइडे ही नहीं बल्कि आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, सो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए अब मैसेजेस की तरफ आ गए हैं और शुरुआत करते हैं सभी से। और सबसे पहला जो मैसेज आया है वो अरविंद का आया है मनकापुर से। आप लिखते हैं, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, और राधे राधे सभी को। आपको भी राधे राधे, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजिया अंसारी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू नाजिया, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सविता दुबे जी हरखापुर गोंडा से हैं, सुप्रभात। गोपाल जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। एंड सोनिया तिवारी मौजूद हैं, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड नाजिया को गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, इसके बाद चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। और सोनिया लिखती हैं, जिस पल जन्मे कान्हा वो पल निराला था, मथुरा की धरती पर खुशियों का उजाला था। माँ देवकी की आंखों में आंसू थे प्यार के, और नंद के आंगन में स्वागत था नंदलाल के। क्या बात है। एंड सनी पांडे मौजूद है, राधे राधे ऑल फ्रेंड्स लिखते हैं, राधे राधे आपको भी। एंड इसके अलावा जो है नेक्स्ट मैसेज की तरफ अगर हम चले, सो नेक्स्ट मैसेज जो है वो है कि आज मेरे पसंदीदा हीरो का बर्थडे है, वो है ऋषि कपूर जी का। ओके, नाजिया ने बताया है, सो ऋषि कपूर जी का आज बर्थडे है भाई, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके बर्थडे पर। एंड यस, इसके बाद जो है धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिखते हैं, अदनान से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर लोग तुम्हें बार बार गलत समझ रहे हैं तो यकीन मानो तुम कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि अच्छा इंसान ही सबसे ज़्यादा सवालों में घिरा रहता है और गलत लोग तालियां बटोरने में लगे रहते हैं। वाह क्या बात है, थैंक यू। एंड बात ही बात में हमारे अनूप जी भी आ गए हैं और लिखते हैं कि मटकी में माखन दिल में प्यार। अर्ज़ किया है कि मटकी में माखन दिल में प्यार, हर ओर कान्हा का श्रृंगार। आपके घर में भी आए खुशियों की बहार, जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं बारंबार। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं 2026, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अनूप जी। एंड महेंद्र भी आ गए हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार आपको भी आरजे नानसर जी, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स जन्माष्टमी उत्सव की बधाई दी है धर्मेंद्र जी ने भी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात प्यारा सा भेजा है प्रीति जी ने बहराइच से, आपको भी प्यारा सा सुप्रभात। एंड लवली थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। सविता दुबे जी लिखती हैं, सुविचार बहुत प्यारा लगा, मुझे तो सब कोई पागल समझता है। क्या बात है, अगर आपको पागल समझा जाने लगा है तो मुबारक हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, यस। एंड महेंद्र लिखते हैं कि जब भी स्टाइल और स्वैग की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम सुपरस्टार रजनीकांत सर का ही आता है। ऑलराइट, आशु जी लिखती हैं लखनऊ से, सुप्रभात सर जी, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी मॉर्निंग वाले शो में। सो फिलहाल स्टाइल में जब नाम आता है कोई स्टाइल का तो पहली जहन में क्या बात आती है, मुझे लगता है अक्सर ये आता है क्योंकि बॉलीवुड ने स्टाइल का मतलब जो बताया है वो बालों जुल्फों को पीछे करना बताया, चश्मा लगाने का, कॉलर उठाने का, जैसा कि अभी आपने सॉन्ग में भी सुना था। हालांकि स्टाइल का मतलब सबका अपना स्टाइल है, और ये आप जब किसी चीज़ की सीमाओं को तोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत वास्ट हो जाता है। सो जब स्टाइल की बात आती है तो किसी की स्माइल देना भी आपका एक स्टाइल है, किसी को लगातार देखते हुए सुनते रहना भी स्टाइल है, किसी का सबसे पहले सामने वाले को मौका देना स्टाइल है, किसी का बोल देना उल्टा सीधा लेकिन सामने वाले का स्माइल करके चुप रह जाना भी स्टाइल है। सो स्टाइल आप कौन सी अपनाए हैं और आपकी क्या स्टाइल है, ये भी आप मेरे ख्याल से ज़रूर से समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भाई मौसम का ध्यान हम कैसे भटका सकते हैं ना, इतना बेहतरीन मौसम है तो मौसम भी इन्जॉय करते रहेंगे, और स्पेशली जब ये सॉन्ग है तो भाई मौसम और भी ज़्यादा गजब का लगने लगता है। यकीन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुनिए इस गाने को और देखिए कैसे यकीन आ जाएगा।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

भाई स्पेशली श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हमको वो माखन चोरी तो याद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदत जो है वो हम सब में रही है बचपन से। सो कभी हो सकता हो आपने अपनी छोटी बहन का सरलक खाया हो चुपके चुपके, या हो सकता हो बड़ी भैया का आपने आम चुराया हो, या फिर मम्मी के बैग से कुछ पैसे निकाले हों, या फिर पापा के पॉकेट में हाथ डाल के कुछ नोट लेके भागे हों। वैसे आपने किन किन चीज़ों की चोरी की है आप भी बता सकते हैं चैट बॉक्स पर आकर के। जब तक आप अपनी चोरियों को बताएं तब तक हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आपके सिटी की अपडेट यानी गोंडा शहर की अपडेट। क्या कुछ चल रहा है गोंडा में ये सब कुछ आप जान लेंगे कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई भी चोरी जो कि क्यूट चोरी बोलेंगे वो रही हो तो फटाफट से कमेंट करके आप भी हमको चैट बॉक्स पर बता सकते हैं। वैसे हाँ चोर हम सब में है लेकिन प्यारा वाला।

0: अरे आज थोड़ी ना, मैंने कब से आपको अपना बनाया हुआ है और आज आप फिर इस तरह कह रहे हैं। यू आर माई आपता। ऑलराइट, सो चलिए भाई, वक्त हो गया है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको ले चलेंगे सिटी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने कहा अगर आपने भी ऐसी कोई क्यूट सी चोरी की है तो बताइए। सविता जी ने रिस्पॉन्ड किया है और बताया है कि आखिर उन्होंने क्या और किसकी चोरी की है। चलिए बता रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई हमने पूछा कि आज के दिन जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं उसी में याद आ जाता है माखन चोरी, लेकिन फिर याद आती है अपनी चोरी जो हमने भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों से और अलग अलग चीज़ों के लिए की थी। तो इसको लेकर के सविता दुबे जी लिखती हैं कि मैंने तो ससुर की जेब से पैसा चोरी किया था। ओके ऑलराइट, बहुत बड़े तक आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और लिखती है लेकिन अब तो सभी मन चोरी करने की आदतें हो गई है। हाँ, सबके मन चोरी करने की आदतें हो गई हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े चोर हो गए हैं, ये चोर मचाए शोर। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया। और छोटी छोटी चोरियाँ कुछ बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, कुछ तो चोरियाँ ऐसी होती है जब हम ज़िंदगी में कुछ लम्हातों की चोरी कर लेते हैं और एक सफ़र के दौरान भी एक स्माइल दे करके लोगों को हंसा देते हैं, और कहीं किसी लाइन में भी हम कुछ ऐसी बातों को नोटिस कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे कि हम कुछ पलों की चोरी ज़रूर कर लेते हैं। सो ये कुछ खूबसूरत सी चोरियाँ होती हैं जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इत्मीनान देती हैं और काफ़ी उम्मीदों को भी कई बार ले आती हैं ये चोरियाँ। अनूप जी लिखते हैं कि सहारनपुर में जब मैं था तो शायद पूरे मोहल्ले का कोई अमरूद का पेड़ बचा हो जिसके अमरूद मैंने नहीं चोरी से तोड़ा हो और खाया हो। वाह क्या बात है भाई। सो ये चोरी से जो अमरूद तोड़ के खाने की बात कही है, मुझे भी बेर तोड़ के और शहतूत तोड़ करके और अमरूद तोड़ करके खाने वाली बात सच में याद आ गई है। और ये चोरियाँ कसम से लाजवाब होती थी, बेमिसाल होती थी। किस तरह से कई बार ईंटों को फेंक करके अमरूद तोड़ा जाता था, तो कई बार चढ़ करके, तो कई बार लंबा सा जो डंडा होता है जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में लग्गी बोलते हैं, लग्गी से भी तोड़ते थे। और सविता दी लिखती हैं कि भाई नाम लगाती थी पति का, वाह वाह वाह। ससुर के जेब से चोरी खुद करे और नाम लगाए कि भैया पति देव ने किया और पिताजी जो है उनकी पिटैया कर दे, वाह बहुत अच्छा दिमाग लगाते थे, थैंक यू। बहुत बढ़िया आप दोनों लोगों ने बताया अनूप जी एंड सविता जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपनी सिटी अपडेट की तरफ और बताते हैं कि आज शहर में क्या कुछ है। तो आपको बता दें कि भाई आज है 4 तारीख और 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। सो 12 सितंबर को होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जो है वो तेज़ कर दी है। फिलहाल नोडल अपर ज़िला जज दानिश हसनैन ने पुलिस प्रशासन और कई सारे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि लोक अदालत का जो उद्देश्य है वो आमजन को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना है। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी रिंकी जायसवाल, ACMO डॉक्टर आदित्य वर्मा, DIOS रामचंद्र, LDM विनोद तिवारी, CO दभिदल तिवारी और रेंजर बद्री प्रसाद ये लोग मौजूद रहे। इसके अलावा RBS के टीमों को CMO की चेतावनी भी दी गई है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में चेतावनी जारी की गई है। CMO डॉक्टर संतलाल पटेल ने सभी RBS के टीमों को माइक्रोप्रांग के हिसाब से नियमित भ्रमण और जांच करने के निर्देश दिए हैं। CMO की जांच करने के निर्देश के बाद कुछ टीमों के सदस्य कई महीनों से चुकी भ्रमण को फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं भेज रहे हैं और सभी सदस्यों के साथ भ्रमण करके जियो टैग फोटो भेजना अनिवार्य किया गया है। फोटो नहीं भेजने पर संबंधित टीम या सदस्य को अनुपस्थित मांगकर उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। सो ये जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से एक अपडेट जो थी वो आप तक हमने बता दिया है। एंड फिलहाल आपको बता दें कि गांव की तरफ बढ़ रहा है बाढ़ का पानी और 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बढ़ा है सरयू का जलस्तर। ग्रामीणों को सताने लगी है पलायन की चेतावनी। जी हाँ, और स्पेशली मगरमच्छ से बचाव के लिए भी जो है एडवाइजरी जारी की है। सो वन विभाग ने एडवाइजरी मगरमच्छ से बचाव को लेकर के जारी की है। DFO अनुराग प्रियदर्शी ने खेत खलिहान तालाब नदी नालों और बाकी जो जल के स्रोत हैं उसके आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। कहा है कि सुबह शाम मगरमच्छ ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, पानी के आसपास अकेले जाने और रात में बिना टॉर्च के खेतों की तरफ जाने से बचें। नदी तालाब में नहाने तैरने और किनारे बैठकर पानी में पैर लटकाने से भी परहेज़ किया जाए। बच्चों की खास निगरानी रखने और चेतावनी बोर्डों का पालन करने की अपील की। मगरमच्छ दिखाई पड़ने पर
उनसे दूरी बनाए रखने और पानी में हाथ पैर ना डालने और घरों के आसपास झाड़ियों और जल भराव की सफाई रखने और पानी के किनारे मांस मछली या बाकी जैविक कचरा ना डालने की सलाह दी है। किसी भी स्थिति में वन विभाग को सूचना देने की भी अपील की गई है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट का जो आ रही है वो है कि भाई फिलहाल कजरी तीज पर 12 से लागू होने वाला है रूट डायवर्जन। जी हाँ, सो कजरी तीज पर इस बार 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है और 12 सितंबर दोपहर 12 बजे से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक ज़िले में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान ज़रा गौर से सुनिए कि कहां से क्या रूट डाइवर्ट किया गया है, ताकि इस बीच अगर आप निकलते हैं तो इस रूट का डाइवर्जन का आपको ख्याल पहले ही रहे, ताकि आपका टाइम और एफर्ट्स जो है वो बचे। सो इस दौरान बड़गांव चौराहा, गुरु नानक चौराहा और अम्बेडकर चौराहे से करनैलगंज जाने वाले रास्ते पर हर तरह के जो वाहन हैं उसका आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जनपद मुख्यालय में भारी वाहन जो हैं उनको और ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सो कजरी तीज 13 और 14 सितंबर को मनाई जाएगी। श्रद्धालु करनैलगंज के सरयू घाट से जल लेकर कटरा कौड़िया रास्ते पृथ्वीनाथ मंदिर और करनैलगंज बालपुर मार्ग से दुखरणनाथ मंदिर पहुंचेंगे। सो भीड़ के मद्देनज़र प्रशासन ने मुख्य चौराहों और मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किया है। सो DM प्रियंका निरंजन ने लोगों, श्रद्धालुओं, कांवड़ियों और भारी वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। सो हल्के वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग है। जी हाँ, लखनऊ और बाराबंकी से गोंडा आने वाले हल्के वाहन जरवल रोड, भंभुआ, भौरीगंज, परसपुर, देहरास होकर आएंगे। लखनऊ से अयोध्या, लोलपुर होकर भी गोंडा में प्रवेश किया जा सकेगा। गोंडा से लखनऊ जाने वाले वाहन नवाबगंज, अयोध्या होकर जाएंगे। वैकल्पिक मार्ग के रूप में अम्बेडकर चौराहा, जेल रोड, देहरास, परसपुर, भौरीगंज, भभुआ, जरवल रोड, बाराबंकी, लखनऊ मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा बता दें कि बहराइच और बलरामपुर से अयोध्या जाने वाले हल्के वाहन जो है श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला, मनकापुर, कोल्हमपुर, लोलपुर जो कि नवाबगंज पड़ता है उससे होकर जाएंगे। अयोध्या से बहराइच जाने वाले जो वाहन हैं इसी रास्ते से विपरीत दिशा में संचालित होंगे। इसके अलावा सरयू घाट, करनैलगंज से गोंडा, बड़गांव चौराहा, करनैलगंज से आर्यनगर, खरगपुर से आर्यनगर और गोंडा बहराइच मार्ग पर भी निर्धारित अवधि में वाहनों का आवागमन जो है वो प्रतिबंधित होने वाला है। सो इसलिए आप लोग इसका ख्याल रखिए, ताकि अगर उस बीच आपको कहीं निकलना है या आप जा रहे हैं तो रूट डाइवर्जन की जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि 7 दिन में बिल जमा ना किया तो कट जाएगी बिजली। जी हाँ, बिजली का बिल का भुगतान नहीं करने वाले कंज्यूमर्स पर अब कार्रवाई होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को 7 दिन का नोटिस देकर बकाया बिल जमा करने का आखिरी मौका दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। सो ये निर्देश मुख्य अभियंता ने राजस्व वसूली और विभागीय सेवाओं की समीक्षा बैठक में बताया। मुख्य अभियंता ने गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अभियंताओं, फील्ड कर्मचारियों, उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ओवरलोडिंग की समस्या दूर करने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और फॉल्ट ठीक करने की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो है जिला महिला हॉस्पिटल में निरीक्षण में कई अव्यवस्थाएं मिली। जी हाँ, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष को कई महिलाओं के हाथ में निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच रिपोर्ट मिली। सो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी के निरीक्षण की सूचना मिलते ही जिला महिला हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार सुबह 7:45 बजे से तैयारियाँ शुरू हो गई थी। मरीजों को व्यवस्थित तरीके से लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त दिखाने की कवायद करीब 5 घंटे तक चलती रही, लेकिन जब दोपहर 12:45 पर उपाध्यक्ष हॉस्पिटल पहुंची तो तैयारियों की परत पीछे छिपी अव्यवस्थाएं एक एक कर सामने आने लगी। सो उपाध्यक्ष ने पहुंचते ही MCH विंग में बैठी महिलाओं से बातचीत शुरू की। इस दौरान कई महिलाओं के हाथ के बाहर अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच रिपोर्ट देखकर उन्होंने जानकारी ली। कुछ महिलाओं ने खुद बाहर से जांच कराने की बात कही, जबकि एक तीमारदार ने मरीज के खून की जांच बाहर से कराने की जानकारी दी। इस पर उपाध्यक्ष ने संबंधित मामले में लिखित शिकायत देकर जाँच कराने के निर्देश भी
दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी और उपस्थिति को लेकर भी नाराज़गी जताई गई। जी हाँ, एंड अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट भी आपके सिटी से ही आ रही है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि भाई आज सुबह 10 बजे से धानेपुर के रामलीला मैदान में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आज जो है शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है। सो वज़ीरगंज में दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज में आज यानी बृहस्पतिवार को परिषदीय यानी कल के दिन शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो है वो संपन्न कर दिया गया। BEO श्रवण तिवारी ने बताया कि निपुण भारत मिशन के तहत पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया, एंड इसके बाद जो है सड़क निर्माण की मांग भी आ रही है। सो चिलविला डिहवा से गोंडा बहराइच मार्ग जोड़ने वाली करीब 1 किलोमीटर सड़क जर्जर हो चुकी है और ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन से निर्माण की मांग की है। इसके अलावा अगर अगली अपडेट की हम बात करें तो जो मेधावी हैं उनको स्टडी टेबल भी बांटी गई है। सो ये सारी जानकारियों के बाद आई होप कि मुझे लगता है कि भाई आपको गोंडा में अपडेट में काफ़ी कुछ आज जानने को मिला होगा और समझने को मिला होगा। आई होप कि ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रही होगी। तो चलिए भाई इसी अब जानकारी के बाद बढ़ते हैं अपने म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गाना आपके मॉर्निंग वाले शो में।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
0: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9861 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: काम करने की इच्छा ऑब्वियस सी बात है जल्दी तो नहीं होती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई 95 साल की एज में भी कोई काम करने के लिए एकदम बेताब रहता है तो यकीन कर पाना मुश्किल लगता है। 95 ईयर्स ओल्ड और काम के लिए ऐसा डेडिकेशन। अब आप सोचेंगे आरजे अदनान के पास ज़रूर कोई स्टोरी होगी। सही सोचा है। चलिए बताते हैं एक 95 साल यानी एक ऐसे शख्स की स्टोरी जो सच में जीने की इच्छा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जिजीविषा, जाग उठेगी आपकी भी। लेट्स लिसन दिस स्टोरी।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

क्या आप 95 साल की उम्र में भी रोज काम करना चाहेंगे? अगर मैं आपकी बात करूं, एक सवाल, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं भाई, 95 साल की एज में कैसे काम होगा। लेकिन कोलकाता के भवानीपुर में एक 95 साल के बिमल कांता डे के लिए काम कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि जिंदगी की जरूरत है। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने कि इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है काम बल्कि जिंदगी की जरूरत है। सो 12 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने चाचा से सिलाई सीखना शुरू किया था। तब शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि करीब 8 दशक तक उनकी जिंदगी एक सिलाई मशीन के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। सो आज उम्र है 95 साल, आंखें पहले जैसी साथ नहीं देती और लंबे वक्त तक मशीन पर बैठना भी मुश्किल है, फिर भी जब भी बॉडी इजाजत देती है तो वो सिलाई करने बैठ जाते हैं। बिमल कांता डे की कहानी इंस्टाग्राम पेज स्टोरीज बाई आराधना की एक पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंची और देखते ही देखते वायरल हो गई। वीडियो में लोगों ने सिर्फ इनकी उम्र नहीं बल्कि उस उम्र में काम की, उनके जो श्रम है, आत्मसम्मान है और जिज्ञासा की कहानी दिखाई। सो 95 साल की उम्र में जहां ज़्यादातर लोग आराम की ज़िंदगी की कल्पना करते हैं, वहीं बिमल कांता डे आज भी अपनी सिलाई मशीन के सहारे ज़िंदगी को जी रहे हैं। मतलब 95 साल की एज में सच में इतना डेडिकेशन अपने काम को लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद ज़्यादातर हम काम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमको इसलिए नहीं कि बस उससे कोई अर्न करना है या वो करना ज़रूरी है, लेकिन न जाने क्यों एक बात होती है जो उससे जोड़े रखती है और वो हमेशा ही चलती रहती है। वैसे क्या ख्याल है अपने बारे में? अगर आप 95 साल के होंगे तो क्या यूं ही आप भी मशीनों पर काम करते रहेंगे या कर सकते हैं, या कुछ और इरादा आपका? तो आप भी कमेंट करके फिलहाल बता सकते हैं अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान को। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 पर।

0: सब लोग बैठ जाओ
1: बैठ जाओ। पहले हमारे एक सवाल का जवाब दो।
2: अच्छा पप्पू तुम बताओ।
0: हाँ सर।
1: ये बताओ मोटर साइकिल में कितने टायर होते हैं?
3: सर छह।
1: अरे कैसे पता चला?
3: सर चार मोटर के और दो साइकिल के।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वैसे तो बहुत सारे दिवस सुने, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या विश्व नारियल दिवस के बारे में आप लोग जानते हैं, तो आप हैरान मत होइए। और अगर अंदाज़ा हो तो आप बताइए कि भाई विश्व नारियल दिवस आखिर कब मनाया जाता है, क्योंकि नारियल से जुड़ी कुछ बातें बहुत काम की, वो हम आपको बताने वाले हैं आपकी मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आप सोचेंगे यार कि दिन तो टीचर्स डे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, फादर्स डे, मदर्स डे और इंडिपेंडेंस डे और न जाने कौन कौन से दिन हैं जो मनाए जाते हैं, अब ये नारियल विश्व नारियल दिवस कैसे आ गया। चलिए, अगर पता है कि कब मनाया जाता है तो फिर आप बताइए, और नहीं पता तो चलिए हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है कि भाई 2 अगस्त को, ऑप्शन बी है 2 सितंबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 2 नवंबर। जी हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीनों के जो ऑप्शंस हैं वो आपको हमने बता दिए हैं कि विश्व नारियल दिवस आखिर कब मनाया जाता है। ये बताइए, फिर उसके बाद आकर के हम बताते हैं कि आखिर क्या होता है विश्व नारियल दिवस पर, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं

0: सो भाई मेरा सवाल था कि आखिर विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 नवंबर। जिस पर शमा जी ने फ्रॉम लखनऊ से लिखती हैं, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं मस्त, बढ़िया। और आपने लिखा है कि विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है, क्या बात है, थैंक यू। साथ ही आपने हैप्पी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू सो मच शमा जी फ्रॉम लखनऊ। एंड यस, 2 ही तारीख को मनाया जाता है, यानी 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। सो आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है विश्व नारियल दिवस को कि बाकायदा इसका एक दिन डेडिकेटेड है? चलिए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो बहुत अहम जानकारी तो आपको मिल गई है कि हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। दरअसल अगर हम पूरे भारत की बात करें तो तकरीबन 30.37% हिस्सेदारी रखता है पूरी विश्व में, जो सिर्फ भारत का नारियल है। पूरी दुनिया का नारियल एक तरफ और भारत में 30.37% जो है वो पूरे विश्व का हिस्सेदारी रखता है। देश में हर साल आपको हम बता दें कि 21,373.62 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है, इतना ज़्यादा। सो 2024-25 की बात करें तो भारत में तकरीबन 13.97 मिलियन टन नारियल का उत्पादन हुआ। इस दौरान औसत उत्पादकता जो थी वो 6.36 टन प्रति हेक्टेयर थी। सो नारियल की खेती में कौन से राज्य आगे हैं, कौन कौन से? ऑफ कोर्स अगर आपको जहन में हो तो आप साउथ के कुछ राज्यों के नाम जाहिर बताएंगे। एंड यस, साउथ के ही ये राज्य हैं जो कहीं ना कहीं खेती में सबसे ज़्यादा आगे हैं नारियल की। सो सबसे पहले केरल, फिर दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, सो खेती के क्षेत्रफल में सबसे आगे, उत्पादन में सबसे आगे, उत्पादकता में भी सबसे आगे है ये। सो ये जो चीज़ें हैं ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं नारियल के बारे में है। और नारियल को लेकर के आपको पता है कि भाई फ़ायदे आखिर कौन कौन से होते हैं। फ़ायदे तमाम होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई फ़ायदों को देखकर ही आप जानते हैं कि हाँ कई सारे फ़ायदों को लेकर के आता है ये नारियल। चूँकि अब जाहिर है इसमें कई ऐसी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं, इसलिए नारियल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और साउथ में जाइए तो ऑफकोर्स नारियल के तेल का ही आपको खाना भी मिलने वाला है। अब वहाँ सरसों तो होती नहीं है कि वहाँ सरसों के तेल में आपको मिलेंगे खाना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल या नारियल तेल का, इवन नारियल कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और मिठाइयाँ खानी है तो भाई साउथ में ही जाके नारियल की मिठाइयाँ खाइए, वो ज़बरदस्त टेस्ट मिलने वाला है कि आप भूल जाएंगे बाकी चीज़ें। एंड नारियल की लिटरली अगर बात करें तो मिठाइयों में मुझे पर्सनली नारियल की बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है, न जाने क्यों इतने ज़्यादा अच्छी लगती है नारियल की मिठाइयाँ। बहरहाल आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि आपको भी उसी तरह नारियल पसंद है, कि आप भी कुछ जबरा फैन टाइप के हैं नारियल के। अगर हाँ तो भी बता सकते हैं। फ़िलहाल मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन वक्त हो गया है आपको एक बहुत ही सुपर्ब सा सॉन्ग सुनाने का। क्यों? क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे खूबसूरत गाने से रूबरू कराने जिसको सुनने के बाद आप कहने वाले वाह क्या बात है भाई, ऐसे गाने आ जाते हैं तो मूड ही पूरा चेंज्ड हो जाता है। सो एक ऐसे ही मूड चेंजर एक प्यारा सा सॉन्ग आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में RJ Adnan की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

0: हाँ जी, तो भाई कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जो सोशल वर्क के साथ आपकी लाइफ में ऐसी जगह असर डालती हैं जहां पर शायद बाकी संस्थाएं सोचने पर थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। फ़िलहाल आपको कुछ दो ऐसी संस्थाओं के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके चैट बॉक्स पर शेयर करने वाले हैं। अगर आपको भी उस फाउंडेशन की हेल्प के लिए कोई लगता है नीडी पीपल है तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, उनको नंबर दे सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा चैट बॉक्स पर। लेकिन चलिए पहले हम बताते हैं कि आखिर कौन सी संस्थाएं हैं और क्या काम कर रही हैं वो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि भाई पहली तो है खुशी फाउंडेशन, जो हमारी सोसाइटी है उसके ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग और बच्चों और महिलाओं की ज़िंदगी में सहारा और उम्मीद का संबल बनने की कोशिश कर रहा है। सो ये संस्था बेसिकली करती क्या है कि बुज़ुर्गों को खाना अवेलेबल कराने के साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर भी अवेलेबल कराती है, और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की शिक्षा सामग्री देने के साथ उनकी पढ़ाई में भी मदद करती है। सो ये महिलाओं की जो एजुकेशन है या अवेयरनेस की दिशा में भी बहुत कोशिश कर रही है। संस्था का जो उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने का मौका देना है। सो ये सारा काम जो है वो खुशी फाउंडेशन कर रही है। अगर आप भी ऐसे किसी नीडी पीपल को जानते हैं तो उनका नंबर जो है वो आप दे सकते हैं। नंबर है 9999245022। जी हाँ, नंबर है 9999245022, यानी 9999245022, 9999245022। ये खुशी फाउंडेशन का नंबर है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है बुज़ुर्गों को खाना उपलब्ध कराती है, ज़रूरत पड़ने पर व्हीलचेयर भी, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए उनके कापी किताब या और कोई सामान नहीं मिल पा रहा उसमें भी हेल्प करती है। महिलाओं की एजुकेशन की दिशा में भी काफ़ी कोशिश कर रही है, और ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को या बच्चों को। इसके अलावा हम आपको बताते हैं खालसा हेल्प फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, सो ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों के सहारे और सम्मान की एक सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है ये संस्था, और ये संस्था बुज़ुर्गों को रहने की सुविधा, उनको पौष्टिक भोजन देने के साथ साथ वक्त पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करती है, जहां उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच और ज़रूरी चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। सो इस पर भी आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9557555607, 9557555607। ये 07, ये इस पे आप कॉल कर सकते हैं। यानी खुशी फाउंडेशन और खालसा हेल्प फाउंडेशन दो फाउंडेशन हैं जिनके अलग अलग हमने आपको बताया कि क्या किस तरह से किन चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं, और इन दोनों लोगों के आपको नंबर भी मिल जाने वाले हैं चैट बॉक्स पर ऑपरेटर जी के ज़रिए। जी हाँ, सो अगर आप भी इनसे हेल्प इनकी कोई भी करना चाहते हैं, यानी कोई भी ऐसा अगर है जिन तक आप ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो आप उन तक ये जानकारी फ़िलहाल पहुंचा सकते हैं। और खुशी फाउंडेशन का नंबर भी मेंशन्ड है, खालसा हेल्प फाउंडेशन का नंबर भी है। सो जो भी ऐसे लोग हैं जो सच में इसकी ज़रूरत रखते हैं उन तक ये नंबर आप ज़रूर पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। सो कई बार सही जगह तक पहुंचा देना इतनी बड़ी हेल्प का काम करता है कि सामने वाले की लाइफ चेंज हो जाती है और वो दुआएं देते नहीं थकता। और वैसे भी जब बात बुज़ुर्गों की, महिलाओं की और बच्चों की आती है तो ये जिम्मेदारी हमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इवन हर किसी के लिए बढ़ जाती है।

0: और छोटे मेरे और मेरे जीव की शादी हो रही है।
1: वाओ।
2: अरे वाह, बधाई हो बधाई। कब?
0: मेरी 16 जून को और उसकी 9 सितंबर को।
2: क्या?

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: किसी ने सच ही कहा था यार कि वक्त जो है वो सच में रेत में बिल्कुल मुट्ठी में जैसे रेत बंद होती है ना, उसी तरह से उसी अंदाज में गिरता है, कितना भी रोकना चाहो निकलता जा रहा है। आज न जाने क्यों हमें किन चीज़ों की लड़ाई है, न जाने किन चीज़ों की खुन्नस है, न जाने किन बातों पर आज हम खफा हैं, लेकिन सच में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल तक किन लोगों की लाइफ है, परसों तक ये नहीं पता, बट कि जितनी भी लाइफ है, जितने भी साल की है, दौर गुजरता जाएगा, बीमारियाँ आएंगी, हेल्थ रहेगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, रिश्ते नए बनेंगे टूटेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया से चले जा चुके होंगे और दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही होगी जैसे आज चल रही है, और आज के दिन भी न जाने कितने लोगों का एंड हो चुका होगा इस वक्त तक। तो आखिर किस चीज़ की ईगो है हमारे अंदर, किस चीज़ को इतना ज़्यादा हम एंटरटेन कर रहे हैं, किन चीज़ों की परवाह है इस लाइफ के अंदर, जिस चीज़ का भरोसा ही नहीं है, जिस चीज़ का पता ही नहीं, उसको लेकर के हम बैठे हैं और हम उन चीज़ों में वक्त गुजार रहे हैं, किसी को कोसते हुए, किसी को डांटते हुए, किसी के लिए नफ़रत रखते हुए, किसी को बुरा समझते हुए, आखिर कब तक? ये वक्त बेहतर में भी तो जा सकता था, ये वक्त किसी के साथ मिल करके हंस के भी तो गुजारा जा सकता था, ये किसी की याद में होता तो कुछ अच्छी मेमोरीज भी साथ में होती, लेकिन न जाने क्यों हमने खुद को इन चीज़ों में फंसा लिया है जिनका कोई मायने नहीं है। एक सर्टेन टाइम ऑफ लाइफ है, इसके बाद सब कुछ ख़त्म सा हो जाएगा, लेकिन दुनिया फ़िलहाल आगे चलती रहेगी, सो दुनिया को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ आगे बढ़ेगा। फ़र्क पड़ता है तो बस आपको और मुझे अपनी लाइफ को लेकर के, कि आखिर हमारी जो ख़ुद की लाइफ है वो कैसी है और हम उसको किस तरह गुजार रहे हैं, किन लोगों के साथ जा रही है और किन चीज़ों के साथ गुजर रही है। क्या हमने अपने आसपास ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है जिनका सच में कोई मायने ही नहीं है, जो सच में कोई मायने ही नहीं रखते, या हमारी लाइफ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ रही है जो हम हमेशा से करना चाहते थे, जो हमको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां अपार दे देती है। क्या हम सच में हर लम्हा जी लेते हैं या सिर्फ काटने पर आ गए हैं इसलिए कि भाई न जाने क्यों कुछ बेहतर दिख नहीं रहा है लाइफ में। किसी ने बोला था वो नहीं किया, किसी ने वक्त दिया था उस पर कोई नहीं आया, किसी ने वादा किया वो नहीं निभाया, कोई आया था वो लौट गया, कुछ कहा कुछ हुआ कुछ सुना, ये सब का सब रह जाता है। बस रहता है तो एक अच्छी यादें जो आपने अपने लोगों के साथ में गुजारी होती है। अपने की कोई फ़िलहाल परिभाषा नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, जो भी बस दिल से लगे वो अपना है, और जो काम, जो उम्मीदें, जो खुशियाँ आपको दिल से महसूस हो, वो आपकी अपनी खुशियाँ हैं, वो आपकी अपनी उम्मीदें हैं, और ये अनवरत जो है वो जारी रहने वाला है, ये सब कुछ ऐसा ही चलने वाला है। बस बदलना है तो हमको इस बात को कि यार जिन चीज़ों को लेकर के हम बैठे हैं, एक वक्त गुजार देने के बाद, एक उम्र गुजार देने के बाद, क्या सच में इससे कुछ हासिल होने वाला है? क्या किसी को बुरा कह देने से हमारी चीज़ें बेहतर होने वाली है? क्या किसी के चले जाने से सब कुछ क्या सच में ख़त्म हो गया है? क्या किसी के आने से, क्या जाने का डर हमको सता रहा है? बहुत कुछ है जो इस लाइफ में हमारे जहन में चलता ही रहता है, लेकिन अगर उठाकर देखते हैं, गौर करते हैं, तो हमको बहुत चुनिंदा चीज़ें मिलती हैं। जहाँ है आपकी खुशी, जहाँ है आपका मन, जहाँ है आप खुद, बस यही चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि इतनी ही सी लाइफ है और इतने ही वक्त के लिए है। अब कैसे गुजारना है और क्या लेकर जाना है और क्या छोड़ जाना है, ये सब कुछ हम पर ही डिपेंडेंट करता है। आई होप कि हम इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इस बात को समझ लिया तो शायद आगे समझ पाना थोड़ा सा आसान होगा कि ये लाइफ जो है ये हमारे लिए क्या है, और हमें खुद पर्सनली आखिर समझते हुए किस तरह से इस लाइफ को गुजारना है। फिलहाल ये कुछ बातें जो थी वो बस मुझे कहने का मन कर रहा था और मैंने कह दिया। आई होप कि ये बातें आपको शायद कभी मन में आपके भी आई हो, अगर आई है तो आप इससे ज़रूर ख़ुद को जोड़ करके भी देख पा रहे होंगे। फ़िलहाल वक्त हो गया है आपके कुछ मैसेजेस को पढ़ने का, तो आइए चलते हैं लेकर के आपको आपके मैसेजेस की तरफ और बताते हैं किसने क्या कुछ लिखा है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो सबसे पहले जो लास्ट में मैसेजेस आए हैं वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। शमा जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। मिश्र ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी हैं, आपने भी शुभकामनाएं प्रेषित की है जन्माष्टमी की, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया तिवारी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। और रेखा कुशवाहा जी भी मौजूद हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज का मॉर्निंग वाला शो ये कैसा था हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह आप कहीं ना कहीं हर दिन को जीना चाहते हैं, ये सच में हर दिन आपका ही है और आपका पूरा अधिकार है, आपका पूरा हक है कि इसको आप अपने ही अंदाज में जिए और अपनी ही तरह जिए। और हर बार यही कहता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी कोई और नहीं लेने वाला है, इसकी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदाज में। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि ये सब कुछ आपको अपने लिए करना है और खुद से ही करना है। फिलहाल बने रहिए अपने 89.6 FM के स्टूडियो पर और सुनते रहिए अपने बेहतरीन शो गोंडा FM पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: इस बार गांव की गूंज की टीम चल पड़ी है एक नए राज्य में, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के गांव में यहां रेत भी गाती है और परंपराएं सांस लेती हैं। यहां पर हर आंगन में गीत है, हर चौपाल में संगीत है।
6: सच में यह रंग, यह परंपरा और ऐसा सुंदर स्वागत तो कहीं और नहीं देखा।
7: राजस्थान की धरती पर अतिथि का स्वागत गीत से होता है। देखो, सुंदर घाघरा चोली पहने, आरती की थाल सजाए लिए औरतें कितनी सुंदर लग रही हैं, और वो सब इधर ही आ रही हैं।
8: और पीछे से मधुर लोक धुन सुनाई दे रही है। या सिर्फ इनकी परंपरा नहीं बल्कि भावना भी है।

0: गीत ने मन को छू लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बुला रहा है।
1: सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देखकर। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं और राजस्थान के लोगों के रीति रिवाज को समझने की कोशिश करते हैं।
2: गांव की पगडंडी पर चलते हुए कितना मजा आ रहा है।
3: दूर से ही घाघरा चोली में सजी महिलाएं, ढोलक की थाप, घुंघरुओं की छनक सुनकर तो मजा आ गया।
0: और देखो ना, सब कैसे गोल घेरा बनाकर नृत्य कर रही हैं और उनके घाघरे घूमते ही फूलों की आकृति बना रहे हैं। ढोलक की थाप से पूरा आंगन झूम रहा है।
2: ये तो विवाह का लोकगीत है। इनके हाथों की मुद्राएं और लय कितनी सुंदर हैं। और गोल घेरा बनाकर जो नृत्य कर रही हैं, इसे रंगों की एक जीवित माला सी बन गई है। उनके लाल, पीले, हरे, केसरिया घाघरे सूर्यास्त की रोशनी में कितने सुंदर चमक रहे हैं। और चुनरी पे लगी कांच की कढ़ाई हर चक्कर में झिलमिला उठती है।
3: यह घूमर नृत्य है जो हमारे यहाँ हर शुभ अवसर पर किया जाता है। शादी, तीज, गंगौर, जब भी घर में कोई खुशी होती है। और जानती हैं इसका नाम घूमर क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें स्त्रियां घूम घूम कर नृत्य करती हैं। ये हमारी मर्यादा, एकता और स्त्री एकता का प्रतीक।
1: हाँ, हमने भी सुना है राजस्थान की धरती पर स्त्रियां केवल घूमर नहीं करती हैं, उनमें होता है इतिहास, वो घूमता है, परंपरा जीवित होती है और संस्कृति भी मुस्कुराती है।

0: आओ चलो अब साथ चलते हैं, थोड़ा सा गांव भी घूम कर आते हैं।
1: हाँ, चलो। देखो यहाँ की कच्ची दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर कलाकृति बनी है। यह दीवार रंगों से जीवित हो उठी है। हर घर एक कैनवास है, हर दीवार पर एक लोक गाथा।
2: हर घर की दीवार सजी हुई है और सतह उभरी लग रही है।
3: बाईसा या गोबर और मिट्टी का लेप है, उस पर हम चित्र बनाते हैं और बिना ब्रश के उंगलियों और खजूर की टहनियों से इसमें रंग भरते हैं।
4: देखो दीवारों पे कितने सुंदर चित्र बने हैं, ऊँटों की कतार है। अरे ये देखो पंख फैलाए मोर कितने सुंदर लग रहे हैं। राजस्थानी दूल्हा दुल्हन भी हैं। और ये देखो सूरज चांद के भी चित्र बने हैं। अरे ये तो पूरा का पूरा विवाह का दृश्य है।
3: हाँ भाई साहब, यहाँ शादी से पहले दीवारों पर चित्र जरूर बनाते हैं। हर रंग किसी को दर्शाता है। केरुआ रंग मरुस्थल की गरिमा को, हल्दी पीले रंग को और सूर्य के तेज को, और नीला रंग आकाश को, और हरा रंग सावन को दर्शाता है।
0: अच्छा आप सब ये बताइए कि यह सीखती कहाँ से है?
3: अरे अपनी माँ से, दादी नानी से, यह कला हमको परंपरा से मिलती है।
1: अरे ये दो छोटी लड़कियाँ दीवार पर बिंदु लगा रही हैं,
3: या मांडना बना रही हैं। यह राजस्थानी कला है और शुभता का प्रतीक है। ये दीवारों पर रंगोली की तरह बनते हैं। त्योहार करवा चौथ दीपावली सब पर बनते हैं।
5: यह केवल सजावट नहीं जीवन है। हर रंग एक भावना है और हर दीवार एक कहानी।

0: सांझ ढल रही है, गलियां फिर से सज उठी हैं। रंग बिरंगी ओढ़नियों में सजी महिलाएं हाथों में कलश और मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं लिए चौक की ओर बढ़ रही हैं। वो देखो सामने।
1: अरे ये कौन सा उत्सव है, सबके हाथ में छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं।
2: बाईसा या गंगौर है माता गौरी और भगवान शिव की पूजा। यह राजस्थान का प्रमुख स्त्री उत्सव है। गढ़ यानी शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह सौभाग्य प्रेम और समृद्धि का पर्व है।
3: और इस पर्व पर विवाहित महिलाएं और अविवाहित कन्याएं पूजा करती हैं और सुखी जीवन की कामना करती हैं।
0: सुना है प्राचीन काल में ये राजपूत रानियां जो होती थी इसको बड़े हर्ष से मनाती थी। जयपुर और उदयपुर में आज भी गणगौर की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। ये बसंत ऋतु में आता है जब प्रकृति नवजीवन से भर उठती है।
1: यही है राजस्थान जहां उत्सव जीवन है और जीवन उत्सव है।

0: आज हमने केवल एक गांव ही नहीं देखा, हमने एक जीवित संस्कृति को महसूस किया।
1: दीवारों की मांडना, कला, घूमर की लय, गणगौर की श्रद्धा सब मन में बस सा गया है।
2: यहाँ की सादगी और लोगों के अपनेपन ने हमारे दिल को छू लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर परंपरा में एकता, प्रेम और गर्व है। और अब समय है आगे बढ़ने का।
3: धन्यवाद राजस्थान, तुम्हारे गीत हम अपने साथ ले जा रहे हैं, पर यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। हम जल्द ही आएंगे किसी और गांव, राज्य, नई संस्कृति और नई लोक धुनों के साथ।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944-999।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
11: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
9: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
11: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
9: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
12: हुकई से खेलन जईबो सावन मा कजेरिया, बदरिया घेरिया इलना नदी।

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम वेलकम वेलकम और वार्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई, घड़ी ने कर लिया है इशारा क्योंकि बज गए हैं 12, और 12 बजे होता है हमारा बहुत ही प्यारा सा शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और जो लेकर के आती है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो फटाफट से बताएं कैसे हैं आप सब, क्या है आप सभी का हाल चाल। और भाई आज तो मूड होगा ज़बरदस्त, और मूड क्यों होगा ज़बरदस्त, क्योंकि आज है बहुत ही प्यारा सा दिन। सो आज के दिन तो भाई आप सभी को भी आज के दिन की बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की, क्योंकि आज है हमारे नंदलाल का हैप्पी वाला बर्थडे। यस, हैप्पी वाला बर्थडे है आज, और श्री कृष्ण जी का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है आज के दिन। सभी घरों में कहीं ना कहीं कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है, दही हांडियाँ फोड़ी जाती हैं, और श्री कृष्ण का ये जन्म उत्सव हर किसी के लिए खुशी, उत्साह, उमंग, एक नई राह, बहुत कुछ लेकर के आता है। तो आज का ये दिन बहुत प्यारा है। अगर आप मतलब हम सभी कहीं ना कहीं मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि जो एक रौनक है मार्केट की, उसका क्या ही कहना। कहीं कृष्ण जी के पालने खरीदे जा रहे हैं, कहीं उनके पीले वस्त्र खरीदे जा रहे हैं, कहीं माला, फूल, सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, और साथ ही साथ और भी जो भी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं सभी बिक रहे हैं, और मार्केट में बिल्कुल धूम मची हुई है। यही लग रहा है कि हर कोई बेकरार है, हर कोई बस यही सोच रहा है कि जल्दी जल्दी रात हो और जल्दी हमारे कृष्ण कन्हैया जी का हैप्पी बर्थडे हो, और सब अपने घर पे पूजा करें और उनका जन्मोत्सव मनाएं। बिल्कुल आज हम भी उनका जन्मोत्सव ज्ञान असली लाइव में मनाएंगे अपने लिसनर्स के साथ मिल करके, क्योंकि आज के पूरे शो में होगा जन्माष्टमी स्पेशल। हम बात करेंगे श्री कृष्ण कन्हैया के बारे में, वो जो बंसी बजाते हैं, वो रास रचाते हैं, वो पूरी दुनिया को अपनी बंसी की धुन पर नचाते हैं, और साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक बहुत ही अच्छी सी सीख भी दे जाते हैं। तो आज के दिन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान असली लाइव जो है वो स्टूडेंट्स का शो है, यानी कि हम स्टूडेंट्स को, यूथ्स को स्पेशली कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ें उन्हीं के लिए बताई जाती हैं, तो आज भी उन्हीं के लिए बताया जाएगा, लेकिन लेकिन लेकिन कुछ नए अंदाज में। तो भाई कहते हैं ना कि बर्थडे के दिन जब हमारा बर्थडे होता है तो हमारी पूरी की पूरी जो अटेंशन होती है वो किसे मिलती है, वो हमें ही मिलती है। तो आज के दिन भी हमारी पूरी पूरी अटेंशन हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल को मिलेगी कि आज उनका बर्थडे है। तो भाई ये कहना तो बनता है कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं, और इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो भी हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, सभी का स्वागत स्वागत स्वागत, तहे दिल से है स्वागत। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं सीधे, और पोएम क्या कहें, कुछ लाइंस के थ्रू आज बताते हैं।

हैं कि आखिर हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी जो हैं, वो कहते हैं ना कि व्यक्तित्व इंसान का ऐसा होता है कि उसे लाइनों में और कुछ पंक्तियों में ढाल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हमने कोशिश की है ढालने की और देखते हैं कि कोशिश कहाँ तक सफल रहती है। तो आज ये प्यारी सी पोएम श्री कृष्ण कन्हैया लाल के लिए है, हमारे गिरधर गोपाल के लिए है। तो आप सभी भी सुने और सोचें समझें कि जो हमारे कन्हैया लाल हैं, उनकी नटखट मुस्कान, उनकी नटखट अदाओं के पीछे आखिर है क्या। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी पोयम को श्री कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर के। और आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को फिर एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं। वो कोई आम गार्ड नहीं, वो तो लाइफ का सबसे बड़ा मेंटर है। हमारी हर उलझन हर प्रॉब्लम का वो एकलौता इन्वेंटर है। उंगलियों पर सुदर्शन भी घूमे और होंठों पर बांसुरी की तान है। वो इतिहास के सबसे पहले और आखिरी सुपर कूल भगवान है। न कोई दिखावा न कोई वीआईपी कल्चर, वो तो बस सुदामा का यार है। अगर दिल से पुकारे उसे तो वो आज भी तुम्हारी मदद को तैयार है। अगर दिल से पुकारो उसे तो वो आज भी तुम्हारी मदद को तैयार है। वो सिखाते हैं कि जब लाइफ कुरुक्षेत्र बने तो रोना नहीं दहाड़ना है। परिणाम की चिंता छोड़ो दोस्त, तुझे तो अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। साधन कम हो या रास्ते मुश्किल, बहानों के पीछे मत छुपना तुम। जब सारथी खुद द्वारकाधीश हो तो दुनिया के आगे मत झुकना तुम। वो किताबी ज्ञान नहीं देते, वो तो सीधे माइंडसेट को रिबूट करते हैं। जो अपनी राह पर डटा रहे, कान्हा भी उस बंदे को सैल्यूट करते हैं। तो इस जन्माष्टमी सिर्फ मंदिर के आगे सिर झुकाना छोड़ो अपने तो इस जन्माष्टमी सिर्फ मंदिर के आगे सिर झुकाना छोड़ो उनके एटीट्यूड को अपनाओ और डिप्रेशन के सारे रिकॉर्ड्स को तुम तोड़ आओ। तो इस जन्माष्टमी वो माखन चोर भी हैं, वो रणछोड़ भी हैं और पूरी सृष्टि का वो सूत्रधार भी है। जिसके पास कृष्ण हैं उसे इस दुनिया की क्या है चिंता। जिसके पास कृष्ण जैसी सोच हो उसी को तो हर फील्ड में विनिंग होना है। भीड़ से अलग निकलो, अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ तुम। उठाओ अपनी मेहनत का गांडीव, उठाओ अपनी मेहनत का गांडीव और दुनिया पर छा जाओ तुम। तो ये थी कुछ लाइंस जिनके की थ्रू आज हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया हैं उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पूरी दुनिया को जो ये सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं प्यार, दोस्ती, परवाह, दूसरों के लिए मदद करना, दोस्ती निभाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम श्री कृष्ण कन्हैया की हमारे जो हैं उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, अपनी मेहनत का गांडीव। और हमारे अंदर जो कहते हैं ना कि अर्जुन को खोजने के लिए कहीं कुरुक्षेत्र में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप अपने अंदर के अर्जुन को खुद ढूंढ सकते हैं और वो आपको खुद आपके अंदर मिलेगा। आपका जो भी गोल है उसे आप मेहनत से जीत सकते हैं। अर्जुन जो थे उनके पास स्पेशल उनका जो धनुष बाण वो इस्तेमाल करते थे उसे गांडीव कहा जाता था। और यहाँ इस पोएम में कहने का मतलब है मेहनत का गांडीव, यानी कि अर्जुन की तरह अगर आप भी मेहनत को हथियार बनाएंगे तो दुनिया पे छा जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही है कि मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कोशिश करता है उसे तो सारा जहाँ मिलता है, जो कोशिश छोड़ देते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम कोशिश करें। अब आते हैं कि आज सभी को पता है कि जैसे आज के दिन की अगर हम बात करें श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, तो आज के दिन की कई सारी कहानियां हैं, कई सारी कथाएं हैं बहुत। लेकिन आज के दिन की जो सबसे चर्चित कथा मानी जाती है वो श्री कृष्ण जन्म की कथा मानी जाती है।
जो कि हम आपको ज्ञान असली लाइव में आज सुनाएंगे और थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं और सुनते हैं श्री कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर के एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और इन्जॉय करते हैं आज श्री कृष्ण की भक्ति में। तो आज भक्ति रस में खोते हैं और नंदलाल को याद करते हैं और इस प्यारे से गाने को सुनते हैं। आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार लेकर के आज के दिन की कहानियों के साथ कुछ और भी बातें जो होंगी हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल के बारे में। तो आप सभी भी वही जहाँ बैठे हैं वहीं से श्री कृष्ण कन्हैया को याद करें और आज के दिन उनसे अपनी विशेष को ज़रूर मांगें, क्योंकि कहते हैं ना कि वैसे तो हम जब भी मांगते हैं तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हमारी मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं, लेकिन आज के दिन आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए कुछ इच्छा मांग कर देखें, ज़रूर पूरी होगी। तो आइए लिसनर्स ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही पसंदीदा और प्यारा वाला शो ज्ञान असली लाइव मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा आ गया है। बहुत ही प्यारा, और कहीं ना कहीं दोस्ती, प्यार, रिश्ते, ये सभी बहुत ही खूबसूरती से जब हम देखते हैं तो हमें हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के जीवन में मिलते हैं। तो आइए अब चलते हैं और बताते हैं आपको कि आज के दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा की माने तो मथुरा का राजा कंस बेहद अत्याचारी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन को हथिया लिया था। कंस अपनी छोटी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो विदाई के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी की आठवीं संतान तेरा काल बनेगी। ये सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। उसने एक एक कर देवकी की पहली 6 संतानों को मार डाला। सातवें पुत्र थे बलराम और आठवें पुत्र जो थे वो थे श्री कृष्ण। तो सातवें पुत्र जो यानी कि बलराम, वो चले गए थे रोहिणी यानी कि वासुदेव जी की पहली पत्नी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और इसी के साथ उनका हस्तांतरण जो था यानी कि बलराम जी का यानी देवकी के सातवें पुत्र का, वो वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी जी के गर्भ द्वारा हुए, और इसी के साथ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ हमारी देवकी मैया की गोद से उनका जन्म हुआ। वो रात जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा घनी अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, खुद ब खुद जेल के सारे ताले अपने आप टूट गए। सारे पहरेदार जो भी वहाँ थे वो गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने नन्हे कन्हैया को टोकरी में रखा और उफनती हुई यमुना नदी को पार कर वो गोकुल अपने मित्र यानी कि नंद बाबा के घर पहुंच गए, और वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा मैया वहां सो रही थी, और उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया। और जो नंद बाबा थे यानी कि यशोदा मैया और नंद बाबा की बेटी को लेकर वापस आ गए। श्री कृष्ण बचपन से गोकुल और वृंदावन में सुरक्षित रहे। जैसे कि कहा जाता है और बहुत सारी पौराणिक कथाओं की भी माने तो बहुत राक्षसों को भेजा गया। कंस ने भेजा कि जाओ पता लगाओ कि देवकी का आठवां पुत्र कौन है, उसका वध करो, लेकिन कोई भी जो भी आता था वो हार कर चला जाता था। कोई भी श्री कृष्ण को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा पाया। तो इसी तरह हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया लाल थे वो अपनी माँ यशोदा के पास सुरक्षित रहे और वहीं बड़े हुए, और फिर उन्होंने बड़े होकर अपने मामा यानी कि कंस का वध भी किया। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण कन्हैया की जो ये कहानी है वो बहुत सारे कहते हैं ना नटखट नंदलाल हमारे, उनकी बहुत सारी कहानियों से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये सारी कहानियाँ हमें सिखाती भी हैं। श्री कृष्ण कन्हैया का जब जन्म हुआ और उनसे पहले जो पहली 6 संतानें थीं, जब उनको मार दिया गया तो देवकी मैया जो थी वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा कि मेरी 6 संतानों का बलिदान हुआ है। तब भगवान विष्णु जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आपकी जो 6 संतानें हैं उनका वध नहीं हुआ है बल्कि उनको वीरगति मिली है ताकि आपके 8वें पुत्र का जन्म हो और कंस के अत्याचारों से कहीं ना कहीं इस धरती को मुक्ति मिले। और वैसा ही हुआ, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने इस धरती को हर दुख हर तकलीफ से मुक्ति दिलाई। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि देखिए देवकी मैया के ऊपर कितनी सारी तकलीफें आई, उनके 6 पुत्र कहीं ना कहीं मारे गए। ठीक इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है ना कि जब बहुत सारी तकलीफें आती हैं तो हमें लगता है कि अब क्या होगा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रोशनी होती ही होती है। और देवकी मैया की हमारी देवकी मैया जो थी उनकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आए हमारे श्री कृष्ण कन्हैया, उनके 8वें पुत्र, ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेकर के कहते हैं ना कोई आता नहीं, कहीं ना कहीं आपको ही आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है और एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। जब आप एफ़र्ट्स करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो वो यूँ भाग जाएंगी जब हम एफ़र्ट करते हैं। इसलिए एफ़र्ट करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है।
आइए लिसनर्स चलते हैं और अब आपको लिए चलते हैं भाई, जब हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की और उसमें अगर मथुरा, वृंदावन और बरसाने का की बात हम ना करें तो फिर क्या हमने कोई बात की कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? बिल्कुल नहीं। तो अब आपको लिए चलते हैं बरसाना, वृंदावन और बाकी जगहों पर जहाँ भी श्री कृष्ण कन्हैया का जो जन्मदिन है वो बड़े प्यार से मनाया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं श्री कृष्ण कन्हैया की भूमि यानी कि ब्रज भूमि। तो ब्रज भूमि की अगर बात करें तो ब्रज भूमि के वृंदावन में और बरसाने में आज के दिन श्री कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत ही धूम मची होती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। जहाँ पूरे वृंदावन में रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म पे शंखनाद और घंटियों की गूंज के साथ भय प्रकट कृपाला की गूंज होती है। भय प्रकट कृपाला यानी कि श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म की गूंज होती है। वहीं बांके बिहारी मंदिर में हर साल इसी रात लगभग 1:30 बजे मंगल आरती होती है, जिसे देखने के लिए ये माना जाता है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है अगर आप बांके बिहारी मंदिर की ये आरती, मंगला आरती को देख पाएं। वहीं श्री कृष्ण की नगरी यानी कि बरसाना, बरसाना में भी ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बरसाना के लिए ये बहुत भावुक होता है क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया वहाँ के लिए केवल भगवान नहीं है, श्री कृष्ण कन्हैया को बरसाने में कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दिया जाता है। कहते हैं ना कि भाई हमारे जो नंदलाल हैं वो इतने मनमोहक हैं कि उनकी जो भी सूरत देखता है वो बस मोह जाता है और उन्हें लाड करने लगता है। बरसाने से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी भी मानी जाती है कि श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म तो रात में हुआ था, लेकिन बरसाना की लाडली जो थी यानी कि हमारी राधा जी, उनका जन्म जो है वो दिन को हुआ था। इसीलिए लाडली जी मंदिर में जन्माष्टमी का जो मुख्य अभिषेक होता है वो अगले दिन सुबह किया जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि रात के अंधेरे में हमारे छोटे से सुकुमार यानी कि नंदलाल जी नींद ख़राब ना हो, जो वहाँ नंदलाल हैं उनकी नींद ख़राब ना हो, इसलिए उन्हें रात भर आराम मिल सके। इसके साथ ही वृंदावन के निधिवन से जुड़ी हुई मान्यता आज के दिन की ये मानी जाती है और भी गहरी हो जाती है, जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण कन्हैया अपने जन्मोत्सव के बाद आज की रात भी वहाँ आकर राधा रानी और गोपियों संग रास रचाते हैं, ऐसी वहाँ की मान्यता है। यही कारण है कि वहाँ के सारे जो पशु पक्षी होते हैं, लोग होते हैं, वो शाम होते ही मंदिर का जो परिसर होता है उसे खाली कर देते हैं और पूरे ब्रिज में नंद के नंद भय और जय कन्हैया लाल की जयकारों के बीच पंचामृत, माखन मिश्री और 56 भोग का वितरण किया जाता है, यानी कि 56 भोग जो हैं वो श्री कृष्ण कन्हैया को दिए जाते हैं और पूरी धरा पे भक्ति का रस जो है वो सराबोर रहता है। चाहे बात कर लें बरसाना की, बांके बिहारी, बरसाना की, वृंदावन की, गोकुल की, मथुरा की, सभी जगहों पे आज के दिन धूम होती है। माखन मिश्री का भोग लगता है, श्री कृष्ण कन्हैया को भोग चढ़ाया जाता है, 56 भोग चढ़ाया जाता है, रास होता है, भजन गाए जाते हैं, पूरी पूरी रात भजन किया जाता है और याद किया जाता है नंद के लाल नंदलाल को और बहुत धूम से श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म जो है वो मनाया जाता है। तो भाई यहीं बैठे बैठे हम वृंदावन, गोकुल, बरसाना सब कुछ घूम आए हैं और वहाँ के मंदिरों में क्या होता है ये भी हमने जान लिया। तो आइए अब चलते हैं, सुनते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल का ये प्यारा सा भजन और बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और एक बार फिर से वापस आ गए हैं श्री कृष्ण कन्हैया की गूंज के साथ बात करने। तो अब बात करते हैं कि होता है ना कि हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण कन्हैया जो है भाई वो तो भगवान है, हम उनके जैसे तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो मतलब उनके पास तो वो तो भगवान है, उनके पास तो सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो आज बताएंगे हम कि श्री कृष्ण कन्हैया की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातों को आप कैसे अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की। तो हमेशा जो कहा जाता है कर्म करो फल की चिंता मत करो, श्री कृष्ण ने ये ज्ञान भी दिया है ना, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं ना कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए। लेकिन लेकिन लेकिन भाई हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए तो फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन रिजल्ट वाला सिस्टम होता है। यानी कि अगर मेरा जैसे अगर स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं तो उनके मन में सवाल होता है अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एग्जाम में कम मार्क आए तो क्या होगा। यानी एग्जाम से ज़्यादा डर उसके रिजल्ट का होता है। और इसी पर हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया हैं वो कहते हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ आपकी मेहनत पर यानी कि आपके एक्शन पे होता है, आपके रिजल्ट पे नहीं। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे, केवल अपनी पढ़ाई को प्रोसेस करेंगे और इन्जॉय करेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो 90% कम हो जाएगा। ये हमारे श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म करो यानी कि काम करो और फल की चिंता मत करो। और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए कि हम सिर्फ काम करें, जो हमारा कहते हैं जो आपका काम है आप उस पर 100% देकर मेहनत करिए, केवल ये मत देखिए कि क्या होगा कैसे होगा। कहते हैं ना हमारी कोशिश डिसाइड करती है कि हम लूज़र हैं या नहीं, हमारा रिजल्ट नहीं। इसलिए कोशिश जो होनी चाहिए, अपनी मेहनत जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपनी एक कहते हैं ना डेडिकेशन जो होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। सो अब ये हम नहीं कहेंगे कि भाई श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं जो हैं उनके पास तो सुपर पावर है, लेकिन हमारे पास तो कोई सुपर पावर नहीं है, हम कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ही तरह वो कहते हैं कि हम सभी के पास सुपर पावर्स हैं, बस उसे यूज़ करना है। और आपका जो सुपर पावर है वो आपका एक्शन है यानी कि आपका काम, आप सिर्फ काम करें, ये ना सोचें कि क्या होने वाला है। और दूसरा है कि भाई कंट्रोल योर माइंड। दूसरा हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं वो कहते हैं कि जिसने कहते हैं ना कि जिसने दिमाग और मन दोनों को साथ लिया उसने सब कुछ साथ लिया। आप सभी को पता है कि जब जो अर्जुन थे वो उन्होंने ये सामने जब उन्होंने अपने घर वालों को देखा तो उन्होंने कहा मैं अपने ही पितामह अपने ही घर अपने ही भाइयों के ऊपर बिल्कुल भी हथियार नहीं चलाऊंगा, यानी कि धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। वो जो थे वो पूरी तरह डीमोटिवेट हो गए थे, और तब श्री कृष्ण कन्हैया ने उन्हें समझाया कि अपने दिमाग पर कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम आज के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, रील्स, फोन्स, दोस्तों का प्रेशर, ये सब आपके मन को पूरी तरीके से हमारे मन को क्या करता है कि भटका देता है। हमें लगता है अरे यार उसने तो इतने नंबर पाए हैं, अरे यार देखो उसे जॉब मिल गई, देखा वो पढ़ने में कितना अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमें हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो वहाँ आपका माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि हम दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और वहीं हमारी प्रोग्रेस जो होती है वो रुक जाती है। इसलिए कभी भी अपनी प्रोग्रेस रोकनी नहीं है, 100% में 200% ध्यान सिर्फ अपनी तरफ दीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करिए और उसमें इधर उधर की कोई भी बातें आने मत दीजिए। यह है हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के आज के दिन का दूसरा कहीं ना कहीं कह लें कि जो उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं और आते हैं सॉन्ग के उस पार लेकर के कुछ और आपसे और भी बातें करेंगे और बताएंगे कि कृष्ण कन्हैया जो हैं उनकी सारी बातें किस तरह हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं, बस हमें समझना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे नंद गोपाल, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी सॉन्ग के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा वाले प्यारे वाले शो में, जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई, हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण कन्हैया हमारे जो हैं, वो जो भी बातें कहते हैं उनका कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन हमारी लाइफ से होता है, हमारी डेली लाइफ से होता है। डेली लाइफ में जो हमें परेशानियां होती हैं, जो बातें आती हैं, हम जो स्ट्रगल फेस करते हैं, उन सभी से होता है। बस हमें समझने की और मोटिवेट होने की ज़रूरत है। वो सही बात सही है कि श्री कृष्ण कन्हैया हमारे जो हैं वो भगवान हैं, लेकिन उनकी कही हुई जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होती हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम भी आती हैं। बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर बात करें अब क्या बात हम करने वाले हैं, तो अब जो श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं लाइफ में चीज़ें नहीं, सुविधाएँ नहीं, बल्कि आपकी जो स्ट्रेटजी होती है और आपका दिमाग होता है, कहीं ना कहीं वो आपके काम आता है। सॉरी, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी स्किल, कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स नहीं, अपनी स्किल और स्ट्रेटजी पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। जैसे कि अगर हम आज बात करें तो सभी नहीं, बट कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं, अरे मेरे पास वो चीज़ नहीं थी ना, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं तो उस एग्ज़ाम में बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आते। मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं कोचिंग नहीं कर पाई, वरना मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते। या फिर हम कह देते हैं, अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, वरना मेरे साथ ये हो जाता, मतलब मैं क्वालिफाइड हो जाती। या मैं, पता है, अगर टाइम से मैं वहाँ पहुँच गई होती तो मैंने सब कुछ कर लिया होता। लेकिन श्री कृष्ण हमारे जो हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क साधन से नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी रणनीति से। और इसे साबित करता है महाभारत की अगर हम बात करें, गीता की बात करें, तो उसका एक अंश है जो इस बात को साबित भी करता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी, आधुनिक हथियार थे और श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी थी। दूसरी तरफ पांडवों के पास सीमित साधन थे, लेकिन पांडवों के पास श्री कृष्ण थे जिन्होंने ऐसी रणनीति बनाई और अपनी, ये कहते हैं ना कि जो गाइडेंस थी उनकी वो ऐसी थी कि कृष्ण के बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से पांडवों को जिता दिया। और ये हमें ये सिखाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी सुख सुविधाएं हों, तभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। नहीं, हम सीमित चीज़ों में, कम सुख सुविधाओं में भी अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं, बस हमारे पास सही स्ट्रेटजी और सही स्किल होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अपनी असफलताओं के लिए बहानों की लिस्ट बनाना हमें बंद कर देना चाहिए कि ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो वो जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहिए। आप मेहनत करिए, अपनी लगन को रखिए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरह आप किन चीज़ों को, जो आपके पास नहीं है उन्हें आप गेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम पर नहीं, उसकी सॉल्व करने की स्किल पर फोकस करिए और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करिए। आपके पास जो है उसी से शुरुआत करें। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी है, ट्यूशन करना है, लेकिन हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास फ़ोन नहीं है ना, आपके किसी दोस्त के पास तो होगा, आप उससे नोट्स लेकर के, हेल्प लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो बजाय इसको कोसने के कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो ये हो जाता, मेरे पास वो होता तो वो हो जाता, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस कीजिए और सीमित साधनों में ही अपने उस गोल को अचीव करिए जिसको कि आप अचीव करना चाहते हैं। ये सिखाते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, बस सीखने की, पढ़ने की, देखने की और समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सो लिसनर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई, मतलब ऑफकोर्स समझ में तो आप सभी को ये कहीं ना कहीं आया ही होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे और कहीं ना कहीं हम इसे हमारी डेली लाइफ में लाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि चीज़ें जो भी आपने सुनी या पढ़ी उनका फ़ायदा तभी होता है जब हम उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उतारते हैं, तभी फ़ायदा होता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं, जो कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल का है। सुनते हैं और भक्ति रस में खोते हैं, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

पास से सब काम हो रहा है। तो दोस्तों इसी काम के साथ में हमारा भी जो टाइम है वो हो गया है आपसे बाय-बाय करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और हाँ, आज के दिन हमने जो भी बताया तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ कन्हैया की मूर्ति को झूला नहीं झुलाना है, बल्कि उनकी दी हुई सीख को भी अपने दिमाग में बिठाना है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान हो या आपकी परीक्षा का हॉल हो यानी कि एग्ज़ाम हॉल हो, जीत उसी की होती है जिसका अपने मन पे कंट्रोल होता है। सो सारी ही बातों को याद रखिएगा, श्री कृष्ण कन्हैया की सीख को याद रखिएगा। और इसी के साथ विश यू ऑल हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी वाली जन्माष्टमी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।

0: अपना परिवार रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं अपने चहिते आरजेस को। मैं हूँ आरजे अदनान और मेरे साथ हैं
1: आरजे आकांक्षा।
0: जी हाँ, जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ आपके पैसे बचाने के अलग अलग तरीके बताते हैं।
1: जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि हमारी इस कड़ी से जानकारी पाकर आप सभी माला माल हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
0: अजी बिल्कुल सही कहा, स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, एनर्जी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में आमदनी भी। तो श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी। सेहतिया भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। हमें तो कम से कम 25 कॉल आई थी स्टेशन के फोन से, और सभी ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी सेहतिया सिंह जी की जिंदगी से मिलती जुलती थी। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपने अपनों और अपनी जमा पूंजी को खोया।
0: लेकिन एक हादसे ने सेहतिया सिंह जी की जिंदगी को बदल दिया, उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। इनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर बदर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए। सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे, ये तो सही नहीं होगा ना।
1: आज तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आरजे अदनान।
0: मतलब अरे मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ, पर तुम मुझे बोलने दो तब ना।
1: हाँ हाँ, जो सही बात है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम यानी सेहत सही लाभ कई से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रहा था तो मैंने ऑटो पर कुछ लाउडस्पीकर चलते हुए देखा। मुझे लगा सेहत से जुड़ी बात हो रही है और श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया है।
1: अच्छा, तो फिर सुनाओ जरा।
0: चलिए तो हम सुनाते हैं आपको ये सेहत की अनोखी बात।
2: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गाँव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
3: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अब तुम बोलोगी कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसीलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में अच्छे से बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी की वजह से होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं। तो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसीलिए सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुनिए, जो भी काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो या बच्चे का होमवर्क करा रहे हो या फिर रसोई में खाना बना रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी।

0: आठी जी के जरिए बहुत ही जरूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट फिर से करेंगे। कब करेंगे ये बताएंगी आरजे आकांक्षा।
1: तो हम रिपीट टेलीकास्ट करेंगे अगले शुक्रवार को।
0: जी हाँ, तो सुनिएगा जरूर और घर वालों को भी सुनाइएगा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को।
2: ये एनटीडी है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है। लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसपे एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडेमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रो फाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं। और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूँ, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई है और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, 4 मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकंड कैटेगरी है अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वर नॉट एट होम, तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे। पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं। क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था। हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके। हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रोफाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है,

0: हाँ, जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा एनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जैसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिंस एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको 4 गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही रहेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन।
1: इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी एक बीमारी है जो कि एक पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति उसका वाहक बन सकता है, क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद आते हैं, लोग दवाई लेने से इसकी कतराते हैं।
2: तुम तो भाई वाकई बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या आज सेहतिया भैया नहीं आएंगे?
1: आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब ये 10 अगस्त की तैयारी में लग गए होंगे, भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया जो है वो पुरुषों को कर रहे होंगे।
2: इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी दोनों यानी महिला और पुरुषों को हो सकती है।
1: कभी कभी ना तुम ऐसी बात करती हो जैसे मुझे लगता है कि तुम आरजे कैसे बन गई हो। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि महिला है या पुरुष है, सोचो जरा।
2: तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है, और 10 अगस्त को क्या होगा, अगर सेहतिया भैया आ जाते तो उन्हीं से पूछ लेते।
1: जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था।
3: सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
2: तो आप भी 10 अगस्त में बिजी थे?
3: बिल्कुल ठीक समझे हो आप, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसी निगलेक्टेड बीमारी की चपेट में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिले की तरह मास ड्रग्स MDA राउंड 10 अगस्त को चलेगा। यह NTD में से एक है। ये वो रोग है जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और फाइलेरिया उपेक्षित उष्ण कटबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो यह एक अस्थायी विकृति में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है।
1: अरे हमारे चाचा भी इसी बीमारी के कारण समाज से कटकर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे। लेकिन सेहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं और किसी के संपर्क में आने से कोई खतरा नहीं होता।
2: तो ये बीमारी यानी ये रोग सभी को हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है ना। हमने अभी डॉक्टर साहब को सुना। इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है, तो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है।
3: होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDS का सामना करने वाले समुदाय में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं।
1: लेकिन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। लोग जो हैं वो अंधविश्वासों और भ्रांतियों की वजह से उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और यही वजह है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही है।
2: उन उपायों में से एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है, बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जड़ से खत्म करने में एक उपाय है ये।
3: तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या घट जाती है और LF के फैलने का दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है।
1: और भैया, इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या है?
3: भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTDS में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुकमवर्म संक्रमण, चिकनगुनिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोकोमा, रेबीज और सेक बाइट एनवेशन जैसे रोग शामिल हैं।
1: तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो LF यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए MDA जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही LF जैसी NTDs पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
2: क्या हमारे देश में और भी निग्लेक्टेड रोग हैं?
3: ये बीमारियाँ मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
2: सेहतिया भैया, मेरा एक और सवाल है। वो पिछले एपिसोड में आपने कुछ बताया था ना निक्षय मित्र के बारे में, वो क्या है?
3: एक बार फिर बताता हूँ, निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन TB मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं।
2: तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है?
3: नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके।
1: लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी NFEP के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
3: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग यानी MDA के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयाँ DEC और एल्बेंडाजोल मुक्त में वितरित की जाती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुक्त कराने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुक्त दवाइयाँ, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती है। एक और खास बात है कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके।
2: सेहतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है।
1: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता दोस्त भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें। और तो और, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके फाइलेरिया से जुड़ी योजनाओं की और ज्यादा जानकारी ले लें।
3: और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन
4: आपके जाने से पहले शपथ लेना जरूरी है।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: तो सेहतिया भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखिए, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाइयां जरूर खाइए। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे साझा भी करेंगे।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवा।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता।
6: सांवली सूरत पे दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे दिल दीवाना हो गया, उनकी मुरली की धुन का जमाना हो गया, उनकी मुरली की धुन का जमाना हो गया। जो भी गया एक बार कन्हैया के दर पर, वो इस मतलबी दुनिया का, इस मतलबी दुनिया से बेगाना हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका, और आपका बेहतर से बेहतरीन शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सुन सहेली, और मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो भाई, इस प्यारी सी कविता के साथ में, इस प्यारी सी शायरी के साथ में, आप सभी को पता चल गया होगा कि आज है हमारे बाल गोपाल कन्हैया लाल का जन्मदिन, यानी कि है आज कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को एक साथ हम लोग बोलेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत
7: शुभकामनाएं
6: और बधाई।
7: बिल्कुल शुभकामनाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के दिन जो जो आप सभी को आज के दिन की बधाई हमारी तरफ से। तो और साथ ही साथ आज का दिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही कहते हैं ना भक्ति से भरा हुआ, क्योंकि कभी कभी जैसे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन जब ऐसे कोई त्यौहार या ऐसे दिन आते हैं जो कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़े होते हैं, तो वो हमारे मन को कहीं ना कहीं एक शांति दे जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कितना भी एक कौतूहल क्यों ना मचा हुआ हो, बट कहीं ना कहीं मन शांत हो जाता है।
6: बिल्कुल, तो चले आज की प्यारी सी कविता सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ इन्वेंशन करना चाह रही हूँ, और वो इन्वेंशन मैं आपको बताती हूँ कि वो इन्वेंशन क्या है, लेकिन उसके लिए अंशिका जब तक बोलेंगी और मैं आपको उस इन्वेंशन के साथ में आपकी आपको बताऊंगी।
7: तो देखते हैं कि आज का इन्वेंशन क्या होने वाला है। तो कुछ नया जब भी आता है अपने साथ कुछ नया लाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब भी कुछ नया आप करना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ नया हम सोचते हैं, तो नई चीजों को करने से पहले हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, सही होगा या नहीं, गलत होगा, कैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ नया आप करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। क्यों? क्योंकि हम नई शुरुआत करते हैं और हमेशा नई चीजें हमें बेहतरी की तरफ ही ले जाती हैं। वो आपको महसूस होता होगा कि अरे यार कुछ नया करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं

0: कि चीजें और खराब हो जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आज का दिन तो वाकई बहुत ही प्यारा है कि हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया लाल हैं, उनका आज होता है जन्मदिन। जन्मदिन के दिन होता है ना कि जब हमारा हैप्पी वाला बर्थडे हमारा होता है मैम, तो हमें सारी जो है अटेंशन चाहिए होती है कि भाई आज तो मेरा बर्थडे है तो मुझे तो सारी की सारी तुम्हारी अटेंशन चाहिए।
1: एग्जैक्टली तो वो नया इन्वेंशन अभी अंशिका को मैं जब बताऊंगी ना, सुनाऊंगी ना, तो उसे लगेगा कि हाँ, जब भी हम लोग कुछ पोयम को सुनते हैं, पोयम को बोलते हैं, तो नॉर्मल डेज में हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक ये होती है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज की बैकग्राउंड म्यूजिक हमारी ये हो और उसके बाद आज की पोयम को हम लोग शुरू करें। तो ये था हमारा गुड वाला इन्वेंशन।
0: गुड वाला मतलब जबरदस्त वाला इन्वेंशन।
1: तो चले आज की पोयम को शुरू करते हैं इस प्यारी सी मधुर सी धुन के साथ में।
0: जी मैम,
1: तो मैं शुरू करूं पहले
0: रास्ता।
1: हाँ हाँ, रास्ता आज नहीं, आज कृष्ण का जन्मदिन है, आज रास्ता पास्ता कुछ नहीं।
0: ओके,
1: तो एग्जैक्टली जय कन्हैया लाल की। तो आइए इस प्यारी सी धुन के साथ में आज शुरू करते हैं आज प्यारा सा ये कविता का सेशन। गोपाल की गलियों का वो प्यारा, यशोदा मैया की आंखों का तारा, माखन चुरा कर जो मुख पर लगाता, वो नटखट कन्हैया सबको भाता, सर पर जिसके मोर मुकुट सजता, अंधेरों पर जिसके मधुर अधरों पर जिसके मधुर संगीत बजता, बांसुरी की धुन पर जो सबको नचाता, वो कान्हा ही प्रेम का पाठ सिखाता, राधा के संग जिसने रास रचाया, राधा के संग जिसने रास रचाया, गोवर्धन उठा जिसने लाज को बचाया, दुष्टों का संहार कर धरा को सुधारा, वो दीन दयाल है रक्षक हमारा, कुरुक्षेत्र में जिसने गीता ज्ञान सुनाया, अर्जुन को कर्म का मार्ग दिखाया, सच्ची मित्रता का जिसने धर्म निभाया, ऐसे प्रभु कन्हैया को शीश नवाया, ऐसे प्रभु कन्हैया को शीश नवाया।
0: वाह, बहुत ही प्यारी ये कविता। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जन्मदिन पर आज उन्हें ही सब कुछ समर्पित है, यानी कि हमारा पूरा जो शो है वो उन्हीं को आज के दिन समर्पित है।
1: जी,
0: तो इतनी प्यारी सी लाइन्स सुन के ना मैम, मेरे भी मन में कुछ लाइन्स उमड़ घुमड़ रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो सुना देती हूँ और आई होप कि आप सभी को पसंद आए और मैम को भी।
1: जी,
0: यशोदा के आंगन में जो खेले वो नंदलाल कन्हैया हैं, गोपियों के संग रास रचाए वो नटखट कृष्ण कन्हैया हैं, माखन चोर मुरलीधर देखो मंद मंद मुस्काता है, जिसकी मधुर तान को सुनकर सारा जग खो जाता है, सिर पर मोर मुकुट है साजे, गालों पर वैजंती माला, सांवली सूरत भोली मूरत है वो जग का रखवाला, राधा के संग प्रीत लगाई प्रेम की भरी भाषा सिखाई, राधा के संग प्रीत लगाई प्रेम की परिभाषा सिखाई, जिसने भी पुकारा दिल से दौड़ पड़ा उसका भाई, कालिया नाग को नाथ लिया गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया, इंद्र का अभिमान चूर कर गोकुल वासियों को बचा लिया, दीन दुखियों का वो संकट करता सुदामा का वो यार है, भक्तों की नैया पार लगाए ऐसा उसका प्यार है, कर्म करो फल की चिंता मत करो जिसने हमें सिखाया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो जिसने हमें सिखाया है, वही है हमारा श्री कृष्ण कन्हैया जिसने सारा जग महकाया है।
1: वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आज की पोयम, यानी आज बोनस मिल गया एक पोयम के साथ एक पोयम और। तो अंशिका, मैं चाहती हूँ कि आज फटाफट हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति की ओर हम चलेंगे और कृष्ण भक्ति की ही बातें करेंगे। एंड हमारी ये बैकग्राउंड म्यूजिक को अभी करते हैं यहाँ पर स्टॉप। और बहुत कुछ आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, यानी कि आज कृष्ण जी को समर्पित, आज हमारे नन्हे कान्हा को समर्पित आज का पूरा शो होने वाला है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और हम बस यूं गए और यूं आए क्योंकि आज हमारे पास है बहुत कुछ। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी कि मैं हूँ आपकी आज समता
6: और मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है आज भाई मित्रता का दिन। मित्रता की पहचान, यानी कि कान्हा और सुदामा की मित्रता की पहचान। हमेशा से सुनते आ रहे हैं हम लोग बचपन से कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। तो कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती के लिए भी मुझे लग रहा है दोस्त भी वैसे सुदामा जैसे होने चाहिए, और या तो फिर कृष्ण जैसे होने चाहिए। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसे ये एक कहावत जो कही जाती है मैम कि जैसा संग वैसा रंग, ये ऐसे ही नहीं कही जाती है। ये वास्तव में होता है कि जिसके साथ आप रहते हैं वैसे, जैसे कहते हैं ना कि अगर सफेद कपड़ों के साथ आप रंगीन कपड़े रखेंगे तो सफेद पे उसका रंग चढ़ ही जाएगा। ठीक उसी तरह हम जिसके साथ रहते हैं उसका रंग हम पे चढ़ ही जाता है।
5: तो तुम मेरे साथ रहती हो तो इसका मतलब है तुम पे मेरा रंग चढ़ा है। कौन सा वाला?
6: अच्छा वाला, आप पे मेरा और थोड़ा सा आप पे मेरा भी शायद। शायद
5: मतलब मेरे पे तुम्हारा बहुत चढ़ा है और तुम पे मेरा थोड़ा सा चढ़ा है।
6: नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आपका जो रंग है वो मुझ पे तो पूरा चढ़ा हुआ है।
5: और
6: मैंने
5: नहीं, ये तुमने ये अभी बना के बोला है।
6: नहीं, बना के नहीं बोला है मैम, वही बोला है जो मुझे बोलना था।
5: और पहले?
6: पहले भी वही बोला।
5: अच्छा, पहले भी बोला था। तो आइए आज बात करते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में, कि कैसे कैसे वो एक साधारण सा इंसान, एक साधारण सा जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा असहाय एक परिवार में पला और जन्मा, और कृष्ण की दोस्ती, कृष्ण ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। तो भाई दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए मुझे लगता है, खास हम दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक दोस्त बहुत ज्यादा संपन्न है और एक दोस्त के पास अगर कुछ नहीं है तो वो उसकी सारी फीलिंग्स को समझे और फिर उसको उसके मन मुताबिक उसे वो सब कुछ दे। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी बताया कि श्री कृष्ण और सुदामा, तो श्री कृष्ण ने ये समझा, जैसे कि एक होता है ना कि दोस्ती में उन्होंने समझा कि उनके पास वो नहीं है और मेरे पास वो है, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके साथ करना चाहिए।
5: Exactly.
6: और उसी तरह उन्होंने उनके साथ पूरा पूरा किया,
5: निभाया भी।
6: निभाया, और इसीलिए उनकी दोस्ती की आज मिसाल दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती में समझना और निभाना चाहिए, न कि और चीजें होनी चाहिए।
5: बिल्कुल। तो एक छोटी सी स्टोरी मुझे मिली है। स्टोरी क्या है, मतलब उनके बारे में ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बताऊँ, आप सभी तक भी वो बातें पहुँचे। निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल जो है ये दोस्ती है, और ये दोस्ती किसकी है? ये है दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा की। दोनों की बचपन की दोस्ती सांदीपनि मुनि के आश्रम में हुई थी, जहां अमीर गरीब का भेद भूलकर वे गहरे मित्र बने थे, जहां पर वो पढ़ने गए थे। समय बीतने पर श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, जबकि सुदामा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगा। सुदामा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके बच्चों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनकी पत्नी सुशीला के बार बार आग्रह करने पर सुदामा बिना किसी स्वार्थ या याचना के अपने मित्र सखा कृष्ण से मिलने द्वारका के लिए निकल पड़े। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इतने बड़े राजा के पास अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं, क्या लेकर के जाऊं। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि एक मुट्ठी चावल है हमारे पास, यही तुम अपने कृष्ण जी के पास लेके जाओ, मैं तुम्हें पोटली में बांध के दे देती हूँ। और वही पोटली बांध कर वो चले गए उनसे मिलने। जब फटे पुराने कपड़ों में सुदामा द्वारका के विशाल महल के द्वार पर पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके बाल सखा सुदामा आए हैं, वे नंगे पैर ही दौड़ते हुए द्वार पर आ गए और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने और उनके पैरों से वो कांटे चुभने जो कांटे उनके पैर में लगे थे वो उन्हें निकालने लगे और अपने आंसुओं से उनके पैर को धोया। जब कृष्ण ने सुदामा के संकोच को भाप कर उनके पास छिपाई हुई चावल की पोटली छीन ली तो प्रेम से उन चावलों को खाया तो उन्होंने सुदामा की दरिद्रता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुदामा ने बिना कुछ मांगे ही अपने सखा का अगाध प्रेम पा लिया था और जब वे अपने गांव वापस लौटे तो उनकी टूटी चोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल था।
6: बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई मैम ने अभी, और मैं जब सुन रही थी तो जैसे कहते हैं ना लूज बम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं रोएं खड़े हो रहे थे। जैसे आजकल की अगर हम बात करें, पुराने टाइम की तो नहीं, पुराने टाइम में तो बिल्कुल बहुत वैल्यूज होती थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं आज वो वैल्यूज कम हो गई। आज बस ये लगता है कि अरे उसके पास बहुत कुछ है ना, गाड़ी
5: और
6: है।
5: हम जाएंगे तो हमें हाँ। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारे से प्रश्न आते हैं
6: जी मैम
5: कि मेरी फीलिंग्स को वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, एक दोस्त एक अपना मित्र जो भी हो।
6: बिल्कुल,
5: पर आज के दिनों में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई है जो कृष्ण की तरह सुदामा की दरिद्रता और उनकी गरीबीपन को भांप सके और उनकी दिल से मदद कर सके, मतलब मुझे ऐसा लगता है।
6: ऐसा नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं, जैसे एक वर्ड हम कहते हैं कि अच्छे लोग हैं इसीलिए धरती टिकी हुई होती है, ठीक उसी तरीके से आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो दूसरों की तकलीफें उनका दर्द उनकी मुश्किल समझते हैं और उनकी पूरी पूरी मदद भी करते हैं। और हमें भी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें समझते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना मैम कि नजरिया चाहिए, किस नजरिए से किसी को देखा जा रहा है। अगर एक नजरिए से हम देखें तो सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे, अगर श्री कृष्ण का नजरिया होता तो वो भी सोचते कि अरे मैं राजा हूँ ना, द्वारकाधीश हूँ और ये क्या है, होगा दोस्त मेरा और मेरी इसकी क्या बराबरी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने तो ये सोचा कि मेरे बचपन का वो मित्र है, वो उनका नजरिया था।
5: बिल्कुल,
6: सुदामा ने श्री कृष्ण को किस नजरिए से देखा कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके मन में संकोच था कि मैं कैसे कहूंगा, भले मेरा दोस्त सही लेकिन मैं मदद कैसे मांगूंगा।
5: बिल्कुल,
6: लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी बहुत अपने के पास, जैसे कि हम किसी बहुत अपने के साथ जब बैठते हैं तो कहते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।
5: हाँ।
6: वो आपकी आंखों के
5: संकोच हम कुछ भी कह सकते हैं,
6: वो आपकी आंखों के आंसू देखकर समझ जाते हैं। और कई बार तो हमारे अपने हमारी खामोशी भी पढ़ लेते हैं कि क्या बात है आज। जैसे कई बार होता है मैम कि हम किसी के सामने सिर्फ जाके बैठते हैं और अगला इंसान तुरंत पूछ लेता है क्या बात है आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, तो इसका मतलब है वो हमारे इतने करीब है कि उसने सिर्फ चेहरा देखकर समझ लिया, हमें तो कहना ही नहीं पड़ा। तो वैसा ही रिश्ता आज भी है धरती पे, लोग एक दूसरे के लिए आज भी उतना ही प्यार से रहते हैं। बस हाँ ये कहते हैं ना कि अगर रोशनी होती है तो अंधेरा होता है, तो वैसे ही है कि जहाँ एक तरफ अंधेरा है वहाँ एक तरफ रोशनी है।
5: Exactly.

0: भी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है RJ अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के बहुत ही प्यारे से, यानी कि दूसरे सेगमेंट की ओर।
4: तो दूसरा सेगमेंट जो हमारा है वो आज उन लोगों के लिए है जिन्होंने व्रत रखा है। जिनके भी घर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है।
3: पहले मुझे ये बताओ कि ये जो बैकग्राउंड चल रहा है ये तुमने सुना? पहले बताओ।
4: जी मैम।
3: सुना? अच्छा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा।
3: अब बोलिए।
4: भाई वो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
3: हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलो
4: तो चलिए करते हैं शुरुआत की। भाई जिनके भी घर आज कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होती है तो उसके कुछ खास कहते हैं ना, जैसे विधि विधान भी होते हैं। सभी को ये तो पता है कि श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वो रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि आधी रात को होता है। और इसलिए इसकी तैयारियां आपको सुबह से ही करनी होती हैं।
3: हाँ।
4: तो सबसे पहले
3: तुम व्रत हो अंशिका?
4: नो मैम। तो सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आज सुबह, जैसे आपको रात में पूजा करनी है ना, तो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी होता है।
3: अच्छा।
4: अगर आप उठ सकते हैं
3: मतलब
4: तो,
3: जो बीत गया।
4: हाँ।
3: ओके।
4: यानी कि अगर जैसे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है या कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। और अगर कोई इश्यू है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा तो कहते नहीं है कि अपने को
3: कष्ट दे करके हाँ, कोई भी काम करो,
4: पूजा करें
3: हाँ।
4: लेकिन अगर हो सके तो उठना चाहिए सुबह। उठ के आप मतलब फ्रेश हो लीजिए, नहा लीजिए, उसके बाद जहाँ तक हो सके आज के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए।
3: हाँ, इसीलिए तो मैंने अभी एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर आज हम लोगों के यहाँ प्रोग्राम है, तो मैंने सबको पीले वस्त्र ही बोले हैं।
4: देखा, इसीलिए कहते हैं
3: नंद भयो जय कन्हैया लाल
4: की, हमारी मैम बहुत समझदार है।
3: जी
4: जी, तो आगे बढ़ते हैं। और आज के दिन जो थाल आप सजाते हैं, यानी श्री कृष्ण जी की आरती की थाली जो हम सजाते हैं, उसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि उसमें अक्षत होना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है कि खड़े हुए चावल, यानी कि बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं वो होने चाहिए। दूसरी चीज होती है कि फूल होना चाहिए, और आज के दिन फूल जो होते हैं वो पीले ही होने चाहिए।
3: ओके।
4: और
3: ऑरेंज वाले?
4: हाँ, ऑरेंज वाले,
3: या जो बिल्कुल पीले होते हैं,
4: पीले वाले होते हैं, जैसे होता है पीला फूल।
3: गेंदे में पीले भी तो आते हैं।
4: जी मैम, पीले फूल होने चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस भी, जैसे कहते हैं ना, भगवान का जो आसन होता है जिस पर हम उन्हें विराजमान करते हैं,
3: वो भी पीला होना,
4: वो भी पीला होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि रोली जरूर रखिए टीका करने के लिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कृष्ण जी को बहुत पसंद होती है, यानी कि फूलों की माला। अब जहाँ तक हो सकता है तो ऐसा कहा जाता है कि वैजंती के फूलों की माला होनी चाहिए
3: हाँ।
4: लेकिन मोस्ट टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि आसानी से वो मिल नहीं पाते
3: हाँ।
4: तो अगर आपके पास वैजंती के फूल नहीं है तो आप चमेली के फूल ले सकते हैं। चमेली के फूल की माला भी श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद होती है। और वो जो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के मस्तक पर विराजमान होता है वो तो जरूर होना चाहिए। उसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, जो कि होता है मोरपंख। मोरपंख जरूर होना चाहिए। मोरपंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि मोरपंख की एक कहानी भी है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या है। क्यों श्री कृष्ण के मस्तक पे मोरपंख होता है ये भी बताते हैं, लेकिन मोरपंख जरूर होना चाहिए। और सबसे मेन, जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है, आपके मन की शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा करने तो हम मतलब मंदिर पे बैठे हुए हैं और मन में चल रहा हो आज उनके घर खाने में क्या बना होगा, आज उनके घर ये हुआ है, अरे तुमको मालूम है कि क्या हुआ, तो ऐसा नहीं, पूरे मन से पूजा करनी है
3: जी।
4: दूसरी चीज होती है कि आज के दिन मंदिर को साफ करना चाहिए, और हाँ गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, मतलब मंदिर पे अगर आपके पास है तो। और दूसरी चीज ये कि जो भी जिस पर भी आप विराजमान करने वाले हैं आज के दिन श्री कृष्ण को, जैसे बहुत लोग चौकी होती है उस पे आसन बिछा के उनको विराजमान करते हैं, तो वो चौकी आपको साफ जरूर कर लेनी है आज के दिन
3: जी।
4: दूसरी चीज ये है कि जो भी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति आपके पास हो, उनका पालना हो, उसे साफ कर लीजिए। और आज के दिन अपने घर के मंदिर को गुब्बारों और फूलों से सजाना चाहिए, और श्री कृष्ण का पालना जरूर से आज के दिन अगर हो सके तो नया खरीदना चाहिए। अगर आप नया नहीं खरीद सकते मान लीजिए, तो जो पुराना है आपके पास उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। ये हो गया। दूसरा आता है कि आज के दिन दो से चार मतलब या एक भजन गाइए या चार भजन गाइए, पूजा से पहले जरूर गाना चाहिए।
3: अच्छा,
4: अगर हो सके तो आप अपने आस पड़ोस के दो चार पांच लोगों को ले लीजिए और कीर्तन टाइप का छोटा सा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर जन्म से पहले भजन गाया जाता है तो कृष्ण भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आज के दिन जहाँ तक हो सके तो आज श्रीमद् भगवद गीता का एक अंश जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ में रात को शंख जरूर बजाना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए। और हाँ, भगवान को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी और शहद और गंगा जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। फिर एक बार बता दूं, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इन पांचों से अगर आपने अभिषेक नहीं कराया तो पूजा जो होती है वो अधूरी
3: मानी जाती है।
4: और इसी के साथ में कुछ और चीजें भी होनी चाहिए, जैसे कि मुकुट, बांसुरी और वैजयंती माला और मोरपंख, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये भी बताया कि अगर आपके पास वैजयंती माला नहीं है तो आप चमेली के फूलों की माला ले सकते हैं।
3: चमेली के फूल, वो सफेद वाले?
4: जी मैम।
3: ओके।
4: और इसका एक ये भी है कि पता है क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया की जो हमारी प्यारी सी है यानी कि राधा, उन्हें फूल बहुत पसंद है
3: चमेली के,
4: इसीलिए श्री कृष्ण कन्हैया को चमेली की माला जरूर चढ़ाई जाती है। और इसी के साथ छप्पन भोग की बारी भी आती है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि छप्पन भोग सिर्फ कहा जाता है। आप माखन, मिश्री और धनिया की पंजीरी जो होती है वो जरूर है, ये दो जरूर रखने चाहिए। और पंचामृत, बाकी तो श्रद्धा है, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं। अब बता देते हैं कि आज के दिन जो व्रत रहते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए। तो सबसे मेन कि फल ज़रूर लेना चाहिए, केला, सेब, अमरूद, जो भी आपको पसंद हो, और नारियल पानी, इससे एनर्जी रहती है, क्योंकि बहुत लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत निर्जला भी रहते हैं। अगर निर्जला रहते हैं तो जैसे ठीक है, आप उसमें भी पानी नहीं पीना होता है, लेकिन ये होता है कि हम नारियल पानी दिन में एक बार,
3: हाँ जी,
4: जैसे हमने कहा ना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठे तो दिन में एक बार फल और नारियल पानी आप ले सकते हैं सुबह के टाइम। दूसरा होता है कि जिन्होंने निर्जला नहीं रखा है, नॉर्मल मतलब व्रत रखा है, वो दही, छाछ दिन में एक बार लेके आप ले सकते हैं। और उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स में मखाने की खीर, काजू, बादाम, किशमिश, ये भी ले सकते हैं। और हाँ, सेंधा नमक ले सकते हैं आप, वैसे नमक का बराव होता है लेकिन सेंधा नमक आप ले सकते हैं।
3: ओके।
4: और इसी पे अब आते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर न खाने की बात करें तो आज के दिन जहाँ तक हो सके घर में लहसुन प्याज और बहुत ज्यादा तीखे मसाले वाला खाना नहीं बनना
3: चाहिए। मैंने प्याज को अवॉइड किया है आज।
4: जी मैम। और दूसरी चीज होती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे परहेज करना चाहिए अगर आप व्रत हैं तो, जिसमें आता है बैगन और मूली।
3: आज
4: के दिन जो लोग भी फास्ट रखते हैं उनके घर ना बैगन बनना चाहिए न मूली।
3: वैसे भी नहीं खाना चाहिए आज के दिन, मतलब ऐसा कहा सुना जाता है कि आज के दिन वैसे भी बैगन नहीं खाना चाहिए और मूली नहीं खानी चाहिए, और खीरा वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
4: हाँ, खीरा नहीं खाया जाता। और दूसरा ये कि सफेद नमक नहीं खाना चाहिए आज के दिन, अगर पूजा होती है तो भी, और वैसे अगर आप मतलब उसको नहीं खा सकते हैं तो भी आपको नहीं खाना चाहिए। और हाँ, आज के दिन जहाँ तक हो सके व्रत के दिन अगर जैसे एक टाइम होता है ना कि एक टाइम खाना चाहिए, तो बहुत लोगों को होता है कि लाओ एक टाइम चाय भी पी लें, लेकिन जहाँ तक हो सके चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। उसका एक ये होता है कि हमारा पेट सुबह से खाली होता है ना, हम व्रत होते हैं, आपने हल्का कुछ खाया तो अगर आप चाय पियेंगे तो वो गैस हो जाएगी और आपको पेट में दर्द भी होगा, इसलिए चाय और कॉफ़ी आज के दिन नहीं लेनी चाहिए
3: जी।
4: तो ये थी व्रत को लेकर के कुछ बातें हमने आपको बताया कि अगर आप व्रत हैं तो किस तरह उसको आपको करना है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं और जय कन्हैया लाल की करते हुए एक प्यारा सा सॉन्ग हम सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: और जय हो नंदलाल की। और आज नंदलाल की जय होना जो है वो कहीं ना कहीं बनता भी है, क्योंकि आज हमारे नंद किशोर, हमारे नंदलाल का जन्मदिन है। और जब हमारे नंदलाल का होता है जन्मदिन, तो भाई नंद गेरा नंद भय और जय कन्हैया लाल की। और जब बात हो श्री कृष्ण कन्हैया की, और अगर हम बात ना करें मथुरा वृंदावन और कि वहाँ कैसे मनाया जाता है, तो फिर बात जो होती है वो कुछ अधूरी रह जाती है। तो आज भी आपको लेकर चलते हैं मथुरा वृंदावन और बरसाना। कहते हैं ना, मथुरा वृंदावन और बरसाने में तीनों जगह ही कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से, नहीं बहुत एक वहाँ का जो देखना होता है, मतलब वहाँ जो भी श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने, उनका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। स्पेशली आज के दिन, आज के दिन यानी कि आज के दिन जो माना जाता है जन्माष्टमी। तो मैं बता दूं कि आज के दिन श्री कृष्ण कन्हैया का वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे रात में ही पूरा मंदिर सजाया जाता है, पूजा की जाती है, और लाखों श्रद्धालु दूर दूर से बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण कन्हैया के पूजन दर्शन करने आते हैं। और आज के दिन वहाँ पे शंखनाद होता है, उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और मैं बता दूं कि ये 56 भोग सिर्फ कहे नहीं जाते, सच में वहाँ पे 56 भोग बनते हैं, और 56 भोग का प्रसाद श्री कृष्ण कन्हैया लाल को चढ़ाया जाता है, उन्हें पालकी में झुलाया जाता है, माखन का भोग लगाया जाता है। और क्या आपको पता है कि बांके बिहारी मंदिर में आज के दिन श्री कृष्ण कन्हैया को जो माखन भोग लगता है, वो जो माखन होता है वो बिल्कुल फ्रेश जो है निकाला जाता है और उनको भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि आज के दिन वहीं की कोई भी, मतलब जो होते हैं मंदिर के, वो लोग में से ही माखन जो है वो लोग निकालते हैं और श्री कृष्ण कन्हैया को भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया को माखन कितना पसंद है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसी माखन से जुड़ी हुई एक कहानी भी है जो कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सुनी और समझी जाती है, लोगों में बहुत प्रचलित भी है। तो ये क्या है ये भी बताते हैं आपको। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे जो नटखट नंदलाल हैं वो बहुत ही नटखट थे, और उनके नटखट स्वभाव से हमारी यशोदा मैया हमेशा थोड़ा परेशान रहती थी, वो उन्हें बहुत परेशान करते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि श्री कृष्ण कन्हैया जो हैं वो, उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया मैया मुझे माखन खाने हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, ठीक है कान्हा, मैं तुम्हें माखन दूंगी, लेकिन थोड़ा तुम रुको, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ और फिर मैं आपको माखन खाने के लिए दूंगी। लेकिन हमारे जो नंदलाल थे भाई, उन्हें तो तुरंत चाहिए था, और वो अपनी मैया से रूठ गए। उन्होंने कहा, ठीक है मैया, आप मुझे माखन नहीं दोगी, तो वो रूठ गए। अब जब वो रूठ गए, तो जब थोड़ी देर बाद यशोदा मैया माखन लेकर के गई और उन्होंने कहा, लो लल्ला माखन खाओ, तो श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। और उनका यही चलता रहा कि काफ़ी देर तक कि मुझे नहीं खाना है। तो उन्होंने, यशोदा मैया ने क्या किया, उन्होंने कहा, ठीक है तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाओ, मैं एक काम करती हूँ कि मैं बलराम को खिला देती हूँ, तुम्हें नहीं खाना है तो मैं बलराम को खिला देती हूँ। श्री कृष्ण कन्हैया को लगा कि नहीं, ऐसा मैया नहीं करेंगी, और वो दाऊ को नहीं खिलाएंगी, मुझे खिलाएंगी। वो शांत बैठे रहे, मतलब रूठे रहे अपनी मैया से। उन्होंने कहा, ठीक है आप दाऊ को खिला दीजिए। कुछ देर बैठे रहे, फिर उसके बाद जब यशोदा मैया गई और उन्होंने बलराम को बुलाया और उनके हाथों में वो कटोरा पूरा उन्होंने दे दिया और कहा, कन्हैया तो नहीं खाएगा, लो दाऊ बलराम तुम इसको खा लो। तो जैसे ही, कहते हैं कि जैसे ही बलराम ने पहला मतलब वो उठाया निवाला खाने के लिए, वैसे ही श्री कृष्ण कन्हैया ने तुरंत उनके हाथ से वो ले लिया और कहा कि नहीं, मेरी मैया ने माखन मेरे लिए बनाया है,
1: तुम कैसे खा सकते हो,
0: मैं ही खाऊंगा। इसीलिए आज के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण कन्हैया को माखन का भोग जरूर लगता है, चाहे मतलब जैसे कहते हैं कि माखन का भोग मस्ट है। और वही माखन जो होता है वो सभी में, यानी कि वहाँ जो भी भक्त आते हैं दर्शन करने, उनमें बांटा भी जाता है। और कहते हैं कि बहुत बड़ी हांडी होती है मतलब, और उसमें उन्हें भोग लगाया जाता है। और वृंदावन में आज के दिन के दूसरे दिन यानी कि कल दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है।
1: हाँ जी, यहाँ पर हमारे गोंडा में कुछ स्कूलों में भी जो हांडी प्रतियोगिता होती है ना, कि कौन जल्दी से अपना एक पूरा पिरामिड बना करके तोड़ लेता है, तो वो भी यहाँ पर किया गया है और बहुत ही बढ़िया से धूमधाम से मनाया गया है।
0: बिल्कुल। और क्या आपको बताए कि दही हांडी के पीछे भी एक कहानी है। दही हांडी के पीछे की कहानी ये है कि जैसे कहते हैं ना कि दही हांडी में कैसे हम जोड़कर एक पूरा पिरामिड बनाते हैं और फिर दही हांडी फोड़ते
1: वहां तक पहुंचते
0: हैं तो हुआ यूं एक दिन कि सभी को था कि माखन पहले जो होता था पहले के घरों में वो ऊपर ऐसे छतों पे हांडी में करके
1: छत पे वो
0: रस्सी बांध करके
1: का वो केव बना करके और उसमें वो हांडी रखते थे
0: जी।
1: कारण सिर्फ यही था, वो भी हमारे कान्हा के कारण था ये कि उनसे दूरी मतलब करके उनसे छिपा करके उसे बहुत दूर टांगा जाता था। और कान्हा तो कान्हा है भाई, तो वो क्या करते थे, वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक दूसरे पे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ चढ़ करके वो वहाँ की मटकी को फोड़ते थे और वो पूरा माखन सबके ऊपर गिरता था और वो आराम से उनका खाते थे।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि गोकुल के जो भी लोग थे या वृंदावन के, वो जो माखन और दूध उनका होता था मैम, वो सारा कर के रूप में कंस को दिया जाता था। जब श्री कृष्ण कन्हैया जी को ये बात पता चली तो वो जान पूछ कर सारा जो माखन होता था और दही होती थी उनकी मटकियां फोड़ देते थे, खुद भी खाते थे और अपने दोस्तों
1: सभी
0: को भी
1: खिलाते थे।
0: ताकि उनका कहना ये था कि जब कंस की वजह से हमें ये मिलता नहीं है, किस वजह से मिलता है, हमारी गायों की वजह से, हमारी सेवा की वजह से, तो अगर ये हमें उसकी वजह से मिलता नहीं है तो फिर अपने परिश्रम का फल हम उसे क्यों देते हैं, क्यों कर देते हैं, हमें कर नहीं देना चाहिए। और धीरे धीरे श्री कृष्ण कन्हैया की जैसे कहते हैं ना जो नटखट लीलाएं थी, उन्होंने गोकुल और वृंदावन वासियों का मन भी बदल दिया और धीरे धीरे उन्होंने माखन और दूध को कर के रूप में देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये एक बात समझ में आई। और श्री कृष्ण भी हमेशा कहते हैं कि अपने परिश्रम का फल कभी भी आपको किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ये गलत होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारे हक का है वो हमें दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भी नाराज होते हैं कि वो आपने परिश्रम किया ना, वो आपका हक है,
1: वो आपका हक है,
0: आप दूसरे को क्यों दे रहे हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: और फिर अगर हम भूखे रह जाते हैं तो फिर हमें शिकायत भी नहीं करनी चाहिए कि हम भूखे रह गए, क्योंकि वो तो आपने ही किया ना, इसलिए सोच समझ कर करना चाहिए।
1: एग्जैक्टली, मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत ही प्यारा सा मुझे भजन दिख गया है अंशिका
0: जी मैम,
1: उसको सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज का पूरा हमारा शो ही, जो कि हमारे कान्हा जी को समर्पित है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिक।
0: पता है मैं और क्यों बोला मैंने? क्यों? मैंने और इसलिए बोला कि इतना गजब का मौसम है यार बाहर कि मन कर रहा है कि बस इस समय, और आज तो बारिश होनी ही होनी है, मतलब वैसे ही हो रही है, नेचर ने तो बना ही लिया है, तो आज तो बारिश होनी ही होनी है, कोई भी दो राय नहीं है। आज तो मौसम इतना
1: मौसम है आशिकाना आपका कब होगा
0: जाना
1: आना।
0: अच्छा
1: कोई आ भी सकता है, हम जाने की क्यों सोचे, किसी के आने की भी तो सोच सकते हैं, आगमन शुभ आगमन ऐसा भी तो सोच
0: से काबू जो ये खता हमको मिली।
1: अच्छा मुझे लगा मैम कहने वाली थी कि हमसे क्या भूल हुई जो आपका शुभ आगमन, ऐसा तो नहीं कहने वाली, हमको ऐसा लगा। चलिए चलिए
0: नहीं, उनके आगमन के लिए तो मेरी आंखें बेताब है, मेरा आंचल पसरा हुआ है और बहुत उम्मीदें मेरी जगी हुई हैं। एंड प्लीज चलो आगे बढ़े।
1: जी मैम,
0: तो आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण प्रसाद की बारी, जिसके बिना आज का व्रत तोड़ना और पूरा होना असंभव है। एनी गेस?
1: यस। अच्छा मुझे लगा
0: यस तुम से नहीं पूछ रहे, मैं अपने लिसनर्स फ्रेंड से पूछ रही हूँ कि लिसनर्स आप बताएं, जो कि अभी तक सब लोग सो रहे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ मुझे सबलू जी दिखाई दे रहे हैं एंड प्रीति जी दिखाई दे रही हैं कि जय हो हमारे कन्हैया लाल की। एंड सबलू जी लिख रहे हैं कि शुभ दोपहरिया आज संता जी, अंशिका जी, विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कृष्ण जन्माष्टमी फिल्ड विथ अपली पीस लव एंड डिवोशन। थैंक यू सो मच एंड
1: थैंक यू, सेम टू यू।
0: और मोहित मालवीय नगर, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी मोहित जी। तो अब बढ़ते हैं प्रसाद की तरफ, क्योंकि
0: तो वो प्रसाद कौन सा है?
1: कौन सा
0: मैं बताऊं?
1: बताइए।
0: चलो सर तुमको दे देते हैं, बताओ।
1: जहाँ तक मुझे, मैं गेस करती हूँ, हो सकता है मेरा गेस गलत भी हो और सही भी हो, कि जो धनिया वाली पंजीरी बनती है प्रसाद में, आई थिंक सो
0: यस, ये प्रसाद वो प्रसाद है जो कि, मैं बताऊँ एक बात और, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पंजीरी वाला प्रसाद, तो मैं रोज खाना खाने के बाद खाती हूँ, क्योंकि जो धनिया और पिसी वो होती है ना मिश्री, उसको मैंने बना के रख लिया है और मैं खाना खाने के बाद रोज खाती हूँ। ये मुझे नहीं पता था कि इसको पंजीरी का प्रसाद कहते हैं, बट वो तो एक हाजमे के लिए होती है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे हैं, आइए बता देते हैं, जो कि है साबुत धनिया या धनिया पाउडर 1 कप, मतलब आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप लीजिएगा, आपके घर जितने लोग मेहमान हैं या फिर आप कहीं अगर मंदिर में ले जा रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। और देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच, मखाने 1 कप छोटे टुकड़ों में कटे हुए, काजू और बादाम 10 से 12 बारीक कटे हुए, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, एक खोपरा मतलब एक बड़ा सा यानी आधा
1: पूरा कप, एक जो मिलता है
0: एक आधा कप, ठीक है। किशमिश 1 बड़ा चम्मच, भूरा चीनी या पीसी हुई चीनी स्वादानुसार, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एंड तुलसी के पत्ते 4 से 5 भोग लगाने के लिए अत्यंत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम बनाते हैं पंजीरी का प्रसाद, ठीक है। तो अब मैं जानती हूँ कि इसको, अब तो मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अब जो इसकी विधि है वो भी सुन लें, विधि बताना जरूरी है।
1: यस मैम, विधि नहीं बताएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे?
0: चलिए, तो विधि ये है कि अगर आप साबुत धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बिना उसे थोड़े से घी में ड्राई रोस्ट कर लें और धीमी आंच पर भूनिएगा, ताकि उसकी खुशबू ना मतलब पूरी खुशबू उसकी ना खत्म हो, ठीक है। ठंडा होने पर उसे मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लें, और अगर रेडीमेड ले रहे हैं तो और ही अच्छी बात है, उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लें। एंड देन इसमें एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी गर्म करें, उसमें काजू बादाम हल्का होने तक उसको रोस्ट कर लें और उसको भी भून लें, और फिर उसके बाद आप मखाने को भी क्रिप्स करने के लिए भून लें। अब बारी आती है नारियल की और किशमिश की, तो बचे हुए घी में कद्दूकस किया हुआ नारियल, किशमिश डालकर धीमी आंच पर बस आधा मिनट तक भूने, और क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है तो उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी डालें और दरदरा पीसा हुआ धनिया डालें, बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए उसे 2 से 3 मिनट तक भूनें। जब धनिया का रंग हल्का सा बदलने लगे तो सौंधी खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर दें। अब भुने हुए धनिये में एक बड़े से बर्तन में निकाल लें, उसे ठंडा करें। गुनगुना रहने पर ही उसमें मखाने, काजू, नारियल, किशमिश, इलायची पाउडर और पीसी हुई चीनी मिला करके उसे अच्छी तरह मिला लें।
1: वाह, ये तो टेस्टी और प्रोटीन वाला प्रसाद हो गया।
0: बढ़िया लग रहा है ना, मन कर रहा है एक चम्मच ले जाता। नहीं,
1: हाँ मैम,
0: तो कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं, आज ट्राई करते हैं।
1: हाँ ठीक, आज बनाते हैं, ट्राई करते हैं। और ये प्रसाद आप सभी अगर मंदिरों में जा रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन काफ़ी मंदिरों में जहाँ भी जन्मोत्सव मनाया जाता है वहाँ ये प्रसाद ज़रूर मिलता है। और साथ ही साथ में अगर घर पे बना रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है।
0: जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमारे जाने का टाइम हो गया है, और जाते जाते आज हम चलते चलते नहीं सुनाएंगे, आज हम आते आते सुनाएंगे, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ये गाना ना सुनाऊं और गाना सुनाऊं आपको बहुत ही प्यारा सा कृष्ण जी का। तो हम आएंगे आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए, तब तक आप इस प्यारे से गीत को सुने।
2: अच्छा खाओ खाओ।
3: मां कल क्या खाएंगा?

0: भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनको भाव से बताने की आवश्यकता होती है, उन्हें भाव से खाना खिलाने और सुलाने की आवश्यकता होती है। तो भाई चलिए आज के दिन को एंजॉय करेंगे हम सभी लोग मिल करके रात को 12 बजे तक, और फिर होता है हमारे कान्हा जी का जन्म। तो आज के दिन की आप सभी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, सॉरी बधाई बधाई बधाई। और अब हम दोनों को दें जाने की घर विदाई, क्योंकि हमको हमारा इंतजार कर रही है फ्रिज में एक प्यारी सी मीठी सी मिठाई।
1: वाह जबरदस्त, बहुत प्यारा, बिल्कुल मिठाई, और मिठाई के साथ घर पे थोड़ा सा काम भी, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से फिर एक बार बधाई, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते और हम दोनों को दे विदाई, और इसी के साथ
0: कल मिलेंगे, आज की विदाई है, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

नमस्कार आदा, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका हम आपके अपने वाले कार्यक्रम कॉलोट्यून गुना में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरशे उन्नति और घड़ी में वक्त हो चला है 3:04 बाद स्टूडियो क्लॉक। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। यानी कि वक्त है अब आपके अपने फरमाइशों के कार्यक्रम का। तो आइए अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393316429 पर। और इससे पहले कि आपकी पहली फरमाइश को प्ले करें, आपको मेरी तरफ से आज के इस खास दिन के यानी कि आपके जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप अपनी जन्माष्टमी को एंजॉय कर रहे होंगे। और अमित कुमार जी की पहली फरमाइश से आज हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। और पहली ही फरमाइश हमारे जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने के लिए आई है कृष्णा जी का एक प्यारा सा भजन यशोमती मैया से बोले ना दलाला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

अंजी, तो आप एंजॉय कर रहे थे अमित कुमार जी की फरमाइश और जन्माष्टमी की इस खूबसूरत पावन दिन पर जिस गाने से शुरुआत हुई वो बेहद ही प्यारा था। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे लता जी की आवाज में। पंडित नरेंद्र शर्मा इनके बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था संगीत। और इसी के साथ आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को लेने और उसके बाद हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। तो भैया, हमारे पास जो सबसे पहले आज का मैसेज आया है वो आया है नवीन राजपूत जी का, जो लिख रहे हैं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में, एंड आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून रति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। और आपने भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हैं, हेलो मैम प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। बिल्कुल करेंगे हम आपका गाने को प्ले, लेकिन आपको करना पड़ेगा उससे पहले कॉल, क्योंकि कॉलिंग नंबर है 6393316429। एंड आज है फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे मतलब दो घंटे का स्पेशल कॉलर ट्यून गोडा, 3 से 5 लगातार आपकी आर्जुनती बनी रहेंगी आपके साथ आपकी अपनी फरमाइशों को ट्यून करने के लिए। तो इंतजार मत कीजिए, एंजॉय करते रहिए और आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारे रिजो जी की है। नुसरत फतेह अली खान की आवाज में आप एंजॉय कीजिए मैनू यादें, और इसके बाद हम मिलेंगे अगले फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी हमारे रिजु जी की, जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान की आवाज में बहुत ही प्यारी सी कव्वाली फरमाइश की थी और आप इंजॉय कर रहे थे। एंड हमारे साथ कुछ और प्यारे प्यारे लिसनर्स जुड़ गए हैं। शशि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और आपने हमें अपना गाना भेजा है किशोर दा की आवाज में। बेशक हम आपके गाने को प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको करना पड़ेगा कॉल ट्यून में कॉल, बिकॉज ये है आपका कॉलिंग वाला प्रोग्राम। कॉलिंग नंबर है 6393316429। एंड हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश जी फ्रॉम महाराष्ट्र, आपका भी स्वागत करते हैं और आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए आपका ज्ञानस्थली फैमिली में बहुत बहुत वेलकम है। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं हमारे अगले गाने को। अगला गाना, अगली फरमाइश आई है एहसान जी की और वो सुनना चाहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक, लता जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

अंजी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे जीनत अमान पर फिल्माया गया वो गाना जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाता है, लता जी की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम। इसी के साथ और मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है भैया कि हमारे सबलू जी के घर में हुआ है एक छोटा सा बेबी और वो है बेटा। फिलहाल के लिए मुबारकबाद और मुझे सबलू जी आपकी मिठाई का इंतजार रहेगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, अपनी मोहतरमा का ख्याल रखिए और बहुत जल्द हमको मिठाई भी खिलाइए बिकॉज हमको इंतजार है। एंड बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब्दुल मुजीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नवीन राजपूत जी, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। सबलू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है कॉलर ट्यून गोंडा में। फिलहाल आइए ट्यून करते हैं आपके अगले गाने को। और हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से आज एक नए लिस्नर और उन्होंने फरमाइश कर दी है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, आके तेरी बाहों में सुरमई लगे हर शाम, सिंदूरी लगे हर शाम। सुंदर ये लता जी की आवाज में और बाला सुब्रमण्यम की आवाज में बहुत ही प्यारा सॉन्ग, वंश फिल्म से आनंद मिलन का संगीत है और एंजॉय कीजिए। भेजते रहिए अपनी फरमाइश 6393316429 पर। यह है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा 89.6 FM रेडियो गाना स्लीपर।

दिनेश जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे आपकी तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी, और आप एंजॉय कर रहे थे लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में वंश फिल्म से ये गाना। और अब हम चलेंगे अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। फिलहाल अब मुझे लगता है ना थोड़ा सा हाई बीट एनर्जेटिक सॉन्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से हम एंजॉय कर रहे हैं स्लो मोशन वाले सूथिंग रोमांटिक गाने भजन। तो क्या ख्याल है आपका, थोड़ा सा बीट बढ़ाया जाए, थोड़ा सा हाई बीट की जाए, एनर्जी आपके अंदर लाई जाए? अगर हाँ तो आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी नाजिया अंसारी जी की फरमाइश, बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना छुपा रस्तम से आप एंजॉय करने जा रहे हैं अलका जी की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे बोल। बहुत ही खूबसूरत गाना नाजिया अंसारी जी की फरमाइश, और आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा आपके अपने गोंडा वाले एफएम रेडियो ज्ञान असली पर विद्युराज योनती।

अलका जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे वो बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सचना छुपा रचना फिल्म से आपने एंजॉय किया नाजिया जी की फरमाइश और वक्त है अगली फरमाइश को ट्यून करने का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मेहताब जी की और वो सुनना चाहते हैं हेलो ब्रदर। जी हाँ सलमान खान का गाना एंजॉय करते रहिए हेलो ब्रदर का टाइटल ट्रैक। एंड बहुत सारे इमोजीज मिले हैं मुझे चैट बॉक्स में थैंक यू सो मच। इसी के साथ लिखा है ओहो क्या सॉन्ग पसंद किया है मैंने आपने जी नहीं आपने नहीं किया था नाजिया अंसारी जी ने किया था आपका गाना कुछ होने वाला अरविंद जी फिलहाल इंतजार कीजिए बहुत जल्द आपका भी गाना ट्यून करते हैं तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये थी फरमाइश हमारे मेहताब जी की, सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर की आवाज में आप इंजॉय कर रहे थे हेलो ब्रदर। बहुत ही प्यारा सा गाना था, फैज अनवर साहब ने लिखे थे बोल और साजिद वाजिद का संगीत। फिलहाल आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स में और धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं अमृति जी नमस्ते, यू वेलकम, थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून को, नमस्ते भैया। नाजिया जी ने भेज दिया है आप सभी के लिए चाय और मुझे दे दी है ड्यूटी कि आप चाय बांट दीजिए। भैया ये बताइए गाना बांटते बांटते कि चाय बांटने की नौबत भी आ गई है मेरी। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, अगर आपके पास शकल आका बुम बुम वाली पेंसिल वेंसिल हो या जादू हो आपके पास तो चैट बॉक्स में हाथ डाल के चाय निकालिए, चाय इंजॉय करते रहिए और हम चलेंगे हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला गाना हमारे पास जो आज के प्रोग्राम में आया है वो किसी और का नहीं, जूही जी का आया है और वो सुनना चाहती हैं ये मेहंदी के बूटे। इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। फिलहाल के लिए फ्राइडे स्पेशल दो घंटे का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा आपकी अपनी फरमाइशों का, तो अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

हमको तुमसे प्यार है और इसे फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे ये मेहंदी के बूटे उदित नारायण अलगा जी और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। फिलहाल के लिए आइए जी उनका लेते हैं आपकी अगली फरमाइश को और हमारे अब्दुल मजीम जी बोल रहे हैं मेहताब जी को हेलो जी, आपकी तरफ से हमने उनको सलाम बोल दिया है, एंजॉय करते रहिए। कॉलो जी उनको ना अगली फरमाइश है हमारे पास देवी प्रसाद जी की, एंड देवी प्रसाद जी सुनना चाहते हैं जन्माष्टमी के पर्व पे बहुत ही प्यारा सा गाना जो आप बचपन से एंजॉय करते आ रहे होंगे इस भजन को, कि गाँव की छोरी से राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारा भजन है और अपनी जन्माष्टमी को ऐसे ही खास बनाते रहिए।

अंजी, तो आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे दिव्य प्रसाद जी की फरमाइश राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मंजू जी की, और वो सुनना चाहती कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ऑफकोर्स कौन कहता नहीं आते, आते तो हैं, बस बुलाने का अंदाज होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। इसीलिए इंजॉय करते रहिए कॉल ऑफ चिंगोड़ा, और हम भी आपको बुला रहे हैं जनाब, आप भी आइए इंजॉय कीजिए मेरे साथ मिलकर के। आपका अपना कॉल ऑफ चिंगोड़ा ऑनली ऑन रेडियो 89.6 FM, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

और भाई आज हमारे स्टूडियो का, हमारे कॉलर ट्यून का माहौल बहुत ही ज्यादा सूथिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि भैया किसी को नींद ना भी आ रही हो तो भी वो सो सकता है, बिकॉज इतना प्यारा इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है। मंजू जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे, और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। राजेश जी ने हमें फरमाइश भेजी है अपनी, और मन फिल्म से सुनना चाहते हैं वो कोई सा भी गाना, तो आइए आपके लिए प्ले करते हैं तिनक तिन ताना, थोड़ा सा एनर्जी देते हैं। एंड हमारे साथ महेंद्र दीपन जुड़ गए हैं, राजस्थान से लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आशुति मैम जी, नमस्ते टू यू। और हमारे अरविंद जी ने रोना शुरू कर दिया कि मैम मेरा गाना कहाँ है, आपका गाना है ना मेरे पास ही है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। एंड शमा जी हमारे साथ जुड़ी है लखनऊ से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून उन्नति मैम जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलेज इन गोंडा में। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने का, अगले सॉन्ग को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के। स्टे ट्यून्ड।

राजेश जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे मन फिल्म से तिनक तिनताना, उदित नारायण और अलका जी की आवाज में समीर साहब के बोल थे संजीत दर्शन का संगीत। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है रमेश कुमार फ्रॉम महाराष्ट्र और वो सुनना चाहते हैं यशोमती मैया का गाना यशोदा का नंदलाला। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा और आज की फरमाइशें जन्माष्टमी स्पेशल होने वाली हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के जो अगेन आपके जन्माष्टमी पर चार चांद लगाएगा।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। राजेश सिंह जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं, मालवीय नगर से जो हमें सुन रहे हैं, और उनकी फरमाइश आई है अगेन बहुत ही खूबसूरत लेकिन थोड़ी सी पुरानी। और हम आपको बता दें भैया, पुराने गानों का जो अंदाज होता है वो इतना खूबसूरत होता है, सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है। एंड उन्नति मैम, प्लीज़ अरविंद जी का गाना बजा दीजिए। काहे नहीं बजाएंगे, ज़रूर बजाएंगे, इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हमारे अरविंद जी का गाना हमारे पास आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है हमारे पास। फिलहाल इन्जॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, और आज की फरमाइश 5 बजे तक चलेगी। सोफी का नॉट दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे सब्र का फल आपके लिए हम गाने लेकर आते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉलर ट्यून गोंडा।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है राजेश मीना जी का, जो हमें सुन रहे हैं बैंगलोर से, और उनकी फरमाइश को ट्यून करते हुए हम बढ़ेंगे अगली फरमाइश की ओर, जो कि किसी और की नहीं, हमारे अरविंद कुमार जी की है, जो बहुत देर से भैया आंसू बहा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती उन्होंने पूरी चैट बॉक्स में बहा रखी है, बस ये सोच कर कि क्या उनका गाना नहीं बजेगा। बिल्कुल बजेगा। फिलहाल अगला सॉन्ग आप ही का है। महेंद्र जीपन जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आज का कॉलिंग प्रोग्राम आपका 5 मिनट तक चलने वाला है। सो फिक नॉट, आप उठना कीजिए कॉल 6393316429 पर। एंजॉय करते रहिए राजेश मीना जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

ये थी फरमाइश हमारे राजेश मीना जी की, जो हमें सुन रहे हैं बैंगलोर से अनुराधा पॉडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। आप एंजॉय कर रहे थे मीरा का मोहन फिल्म से तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारी अरविंद जी की है और वो सुनना चाहते हैं बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, लता जी की आवाज है और ये पिक्चर भी मैंने देखी हुई है, आनंद बख्शी की बोल अमर प्रेम फिल्म का नाम है। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड महेंद्र जी भैया आवाज नहीं आएगी तो भी आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रस्म रिवाज यही कहते हैं, रूल्स यही कहते हैं कि कॉल ट्यून गोटा में कॉल तो करना पड़ेगा। सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

अरविंद जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे, बड़ा नटखट है रे कृष्ण का नहीं या, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। गुलफसा जी ने हमें अपनी फरमाइश भेज दी है हेलो ब्रदर से और डेडिकेट किया है मुझे। ओ माय गॉड, मैं शर्मा जाती हूँ ऐसी चीजों पर। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए चांदी की डाल पर सोने का मोर, ताक झाक ताक करे नीचे का चोर। और ये गाना जो है ना वो ये आपकी अपने सलमान खान की आवाज़ में है, सलमान पाजी भी गाना गा लेते हैं, समझ में आई ना आपको। सलमान खान और अलका जी की आवाज़ में सुनते रहिए। हिमेश रेशमिया का दिया संगीत है और सुधाकर शर्मा के लिखे बोल, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग।

और ये गाना था हमारी गुलाबशाह सिद्दीकी जी की फरमाइश हेलो ब्रदर से, चांदी की डाल पर सोने का मोर। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि माई शारदा प्रसाद प्रजापति की है फ्रॉम मथुरा। और वो आज

दिन सुनना चाहते हैं वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसके साथ ही बहुत सारे मोर और बंसी और घोड़े सब मिल चुके हैं मुझे चैट बॉक्स में। अंबर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आपने हमें बहुत सारे पिकॉक्स भेजे, लगता है चैट बॉक्स में सारे मोर नाचेंगे एक साथ। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के। अगला गाना जो हमारा अब्दुल मुजीम जी का है, दिनेश जी का है एंड मोहम्मद रफीक जी का है।

ये फरमाइश थी हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति की फ्रॉम मथुरा। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश को लेकर के। अब्दुल मुजीम जी की फरमाइश हमारे पास आई है, एक बार मदीना दिखला दे। हम सब लोग जी आपकी फरमाइश कोई खा नहीं गया है, फरमाइश खाई नहीं जाती है, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, वो भी स्पेशली अगर फ्राइडे है तो, क्योंकि फ्राइडे को हम आपको वक्त देते हैं आपका गाना इंजॉय करने का, और इसीलिए आपको थोड़ा सा इंतजार की जाए करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, बहुत जल्द आपके गाने को हम प्ले करते हैं। तब तक के लिए स्टूडियो सुनते रहिए आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा।

अब्दुल मुसीम जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे थे और वक्त है अगली फरमाइश की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है वो है दिनेश सिंह जी की और वो सुनना चाहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी। किशोरदा की आवाज में एंजॉय करते रहिए, बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारे पास आया है। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम मिलेंगे मोहम्मद रफीक जी की फरमाइश को लेकर के, जो कि एक कवाली है। इसके बाद सबलू जी की है, राजू सलमानी जी की है, इरशाद जी की, धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना कॉलर ट्यून गुड। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली।

और आप इंजॉय कर रहे थे दिनेश सिंह जी की फरमाइश मेरे महबूब कयामत होगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले सॉन्ग को लेकर के। अगला सॉन्ग हमारे पास एक कवाली है मोहम्मद रफीक खान जी की, तो आप इंजॉय करते रहिए। एंड हमारे पास सूरज चंदा, दिन रात सवेरा अंधेरा सब कुछ हो रहा है, वो भी चैट बॉक्स में आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इंजॉय करते रहे, मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो कि हमारे सबलू जी की है। स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी हमारे मोहम्मद रफीक जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारे सबलू जी की है। सबलू जी, जैसा हमने आपको मुबारकबाद दे ही दी है, मिठाइयों का इंतजार हमें हमेशा रहेगा। फिलहाल एंजॉय करते रहिए और वो सुनना चाहते हैं श्याम तेरी कब से बंसी पुकारे, और एंजॉय कीजिए आप ये गाना। इसके बाद हम मिलेंगे राजू सलमानी जी की फरमाइश को लेकर के, जो कि है रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन आज सारे हमारे पास पुराने गाने आ रहे हैं।

और ये फरमाइश थी हमारे सबलू जी की। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश को लेकर के। राजू सलमानी जी जो हमें सुन रहे हैं आवाज़ विकास से, स्पेशली कुंडा से, तो उन्होंने फरमाइश की है, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। मोहम्मद रफी की आवाज़ में एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले गाने अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

राजू सलमानी जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश पर जो कि हमारे अरशाद जी की है, चुपके से कोई आएगा। एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं चैट बॉक्स में एक और जनाब, नाम है राहुल कुमार जी। फिलहाल राहुल कुमार जी आपको करना पड़ेगा कॉल कॉलर ट्यून कोना में, बिकॉज ये आपका कॉलिंग प्रोग्राम है। कॉलिंग नंबर है 6393316429 एंड देन हम आपके गाने को जरूर से प्ले करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे थे इरशाद जी की फरमाइश। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश को लेकर के आवाज विकास से। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, हटचारे ताऊ भैया, बहुत ही जबरदस्त गाने की फरमाइश कर दी है उन्होंने, तो एंजॉय कीजिए आपकी जन्माष्टमी का सुपर डुपर हिट गाना। स्टे ट्यून्ड।

अरे भैया क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त गाने के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने को लेकर के। राजू टेलर जी की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है और आप एंजॉय करने जा रहे हैं किशोर दा की आवाज में मेरे दिल में आज क्या है तुम कहो तो मैं बता दूं। एंड शर्मा जी आपके गाने को बहुत जल्द ट्यून करते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।

Oh my goodness, what a romantic गाना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही romantic गाना, and of course one of my favorite, किशोर दा का बहुत ही चुनिंदा सॉन्ग था। और इसी बात को, इसी गाने को लेकर किशोर दा ने बहस भी कर ली थी डायरेक्टर साहब से कि ये गाना रिलीज नहीं होना चाहिए, छुपा दू छुपादा क्या होता है, छुपा लू छुपाले हो सकता है। तब तक ये गाना रिलीज हो चुका था और बिना चेंज के इतना हिट गया है जितना किशोर दा ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो थोड़ा सा आपको उदास करने वाला है, क्योंकि हमारे निशा जी ने फरमाइश किया है अच्छा सीला दिया तूने मेरा प्यार का। ओ, ये गाना हम तब गाते थे जब अपनी मम्मी को ब्लैकमेल किया करते थे, जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती थी स्पेशली। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा।

और ये थी फरमाइश हमारे निशा जी की, सनम बेवफा फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, लेकिन आवाज हम आपको बता दें भैया सोनू निगम साहब की आवाज थी, आप एंजॉय कर रहे थे। एंड योगेश जी ने लिखा था इस गाने के बोल, निखिल जी ने दिए थे बहुत प्यारा सा संगीत, और हमारी शमा जी को ये गाना बेहद पसंद आया बिकॉज उन्हें सैड सॉन्ग पसंद है। क्या बात है भैया, सैड सॉन्ग के भी दीवाने बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग बात है कि हम तभी सुनते हैं जब हमारा मूड बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं सुरेश कुमार जी की फरमाइश, मोहम्मद रफी की आवाज में बड़ी देर भई नंदलाला। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर जो कि हमारी शमा जी की ही फरमाइश है, सौदागर फिल्म से। स्टे ट्यून्ड।

और ये थी फरमाइश हमारे सुरेश कुमार जी की, जो मैं चौक से सुन रहे हैं, और उन्होंने फरमाइश की थी मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में सुनील दत्त पे फिल्माया गया गाना बड़ी देर भई नंदलाला। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगली गानी की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है हमारी शमा जी की, और वो सुनना चाह रही हैं राधा नाचेगी। इस गाने को डेडिकेट किया है उन्होंने नाजिया अंसारी जी और महेंद्र दीपन जी को। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अपने अगले सॉन्ग पर, जो कि हमारी महेंद्र दीपन जी का ही है, पालकी में हो के सवार चली रहे। स्टे ट्यून्ड।

ये थी फरमाइश हमारे शमा जी की, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारे महेंद्र दीपन जी की है, और कहीं वो जा भी रहे हैं इसी तरह फरमाइश भी उन्होंने कर दी है, पालकी में होकर सवार चली रहे, एंजॉय करते रहिए अलका जी की आवाज़ में। माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया गाना खलनायक फिल्म से स्टे ट्यून्ड।

और भैया ये थी फरमाइश हमारे महेंद्र दीपन जी की फ्रॉम राजस्थान एनएससी के साथ। अब चलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को ट्यून करने के लिए। अमर गोयल जी ने हमें फरमाइश भेजी थी अपनी, और जाते जाते हम आपको सुना देते हैं हैप्पी बर्थडे श्याम, क्योंकि भैया आज है उनका जन्मदिन। तो चलिए मिलकर विश कर देते हैं, और एक बार वापस से आप सभी को जन्मदिन की, यानी कि हमारे कन्हैया जी के जन्मदिन की, जिसको हम कहते हैं जन्माष्टमी, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चाहूंगी आपसे इजाजत, वक्त है आपसे विदा लेने का। आई होप आज का शो आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अपना त्यौहार भी इंजॉय करते रहिए, एंड फिर मुलाकात होगी। आप रखिएगा अपना ख्याल, कल मिलते हैं आपसे लेकर के बॉलीवुड वाला सैटरडे इन क्वालिटी गुंडा सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव।
2: और मैं रचना शर्मा।
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया प्रतिभाग। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगों ने वेबसाइट एवं पोर्टल का हुआ शुभारंभ। बता दें कि कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी एवं संबंधित अधिकारियों ने प्रतिभाग कर मुख्यमंत्री जी के संबोधन एवं कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को अधिक व्यवस्था, पारदर्शी एवं बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनके हितों में प्राथमिकता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
2: गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर भोज मंगल नगर मार्ग पर विश्वाही नदी पर बना पुल लंबे समय से जर्जर हालत में है। पुल का निर्माण नहीं होने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे जर्जर पुल पर पानी में खड़े होकर धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान पुल की बदहाल स्थिति की ओर खींचते हुए जल्द निर्माण कराने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि पुल पर पानी का तेज बहाव रहता है, लेकिन दोनों तरफ सुरक्षा पाइप या रोलिंग नहीं लगी है। इससे राहगीरों, किसानों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय इस रास्ते से आवागमन करना और भी मुश्किल हो जाता है। छात्र नेता अंकित शुक्ला ने बताया कि पुल की हालत काफी जर्जर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा

0: अंत में 30 TFR लंबित पाए गए हैं। इसके अलावा राय बोझा उपकेंद्र पर काफी संख्या में लंबित मामले मिले हैं।
1: गोंडा के रुपईडी ब्लॉक सभागार में बुधवार देर रात शाम नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। इसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों से चुनी गई 35 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित सहायिकाओं में उत्साह दिखा। कार्यक्रम के दौरान सहायिकाओं को उनके काम के लिए शुभकामनाएं दी गयी। उनसे कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। नई सहायिकाओं से पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाने की उम्मीद जताई गई है।
0: गोंडा के तरबगंज करनेलगंज सरयू नदी में अलग अलग बैराजों से 3,18,000 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एल्गिन ब्रिज पर सुबह नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 सेंटीमीटर नीचे था। वहीं पानी पहुंचने पर जलस्तर बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। SDRF और राजस्व आपदा टीम भी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। एल्गिन ब्रिज मंगलवार सुबह 8 बजे सरयू का जलस्तर करीब 106.80 मीटर था, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है।
1: गोंडा के विकास खंड रुपईडीह की ग्राम पंचायत दूल्हापुर पहाड़ी में एक कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ चार दीवारी नहीं होने से छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। स्कूल परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इस वजह से बच्चों को जहरीले जीव जंतुओं का खतरा रहता है। वहीं विद्यालय के बगल में एक गहरा तालाब भी है, इससे किसी भी हादसे का डर और बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए चार दीवारी बहुत जरूरी है। परिसर खुला होने के कारण बच्चों के तालाब की ओर चले जाने या जहरीले जीव जंतुओं के स्कूल में घुसने का डर रहता है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
0: आउटसोर्स कर्मचारियों में उत्साह का एक माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन मानदेय दुगना तक बढ़ा दिया है। घटना, दुर्घटना या आपदा का शिकार होने पर कर्मचारी व उनके परिवार को करीब 40 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा दी जाएगी। कंपनियां मनमर्जी से किसी कर्मी को नौकरी से नहीं निकाल पाएंगी। इन कर्मचारियों की भर्ती की व्यवस्था भी बदल दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम UP कॉप बनाया गया है। अब भर्ती यहीं से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण नीतियों के तहत योग्यता व मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। भर्ती पोस्टिंग, उपस्थिति, मानदेय, ग्रेचुटी, बीमा और सेवा लाभ की डिजिटल निगरानी होगी। कर्मचारी अब सेवा विवरण, अकाउंट, उपस्थित, भुगतान और कटौती की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। पोर्टल पर सभी प्रकार की शिकायत भी किया जा सकता है।
1: गोंडा जिला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ये तैयारियां 2 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो अंतिम चरण में और 4 सितंबर को त्योहार संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SP अभिषेक झा द्वारा 2 एडिशनल SP, 8 CO, 18 थाना प्रभारी और 3,000 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इन 3,000 पुलिस कर्मियों में करीब 2,400 पुरुष और 600 महिला पुलिस कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा होमगार्ड और PRD जवान भी तैनात किए गए हैं। पूरे जिले में 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 400 पुलिस विभाग के हैं। इन कैमरों के साथ साथ संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन से भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी जन्माष्टमी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, गोंडा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मेडिकल और एम्बुलेंस टीमें तैनात रहेंगी। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वामीनारायण छपिया मंदिर में एक मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। राधा कृष्ण मंदिर मालवीय नगर और श्याम मंदिर गोंडा के पास भी एक मेडिकल टीम और एम्बुलेंस अस्थायी रूप से तैनात की जाएगी।
0: बारिश ने शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई मोहल्लों में पानी भरने से आवागमन की समस्याएं बनी हुई हैं। हालांकि खेती किसानी के लिए बारिश को फायदेमंद माना जा रहा है। बारिश के बाद न्यू कैलाशपुरी कॉलोनी की स्थिति सबसे खराब नजर आ रही है। यहाँ कई दिनों से रास्ते पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। नाली का गंदा पानी भी सब इसमें बह रहा है। कीचड़ और दुर्गंध के बीच लोगों का निकलना मुश्किल है। हालात से परेशान मोहल्ले वासी चंदा जुटाकर पानी निकलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मोहल्ला निवासी बीरू साहू के मुताबिक करीब 10 साल से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।
1: गोंडा के तरबगंज

0: खंड की ग्राम पंचायत चिवराहा में एक जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में डर फैल गया है। बीते रविवार को जगराम के घर के बाड़े में रखी 6 भेड़ों की मौत हुई। इस हमले में 4 भेड़े घायल भी हुई हैं, जबकि 5 भेड़े अब भी गायब हैं। इस घटना के बाद पिछले 4 दिनों से ग्रामीण लगातार डरे हुए हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं और बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने के लिए सलाह दे रहे हैं। वन विभाग अभी तक जानवर की पहचान करने में सफल नहीं हो पाया है। वन विभाग पिछले 4 दिनों से जानवर की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और आसपास पोस्टर भी लगाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि इस क्षेत्र में भेड़िया या तेंदुआ जैसा जंगली जानवर हो सकता है।
1: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष उपमंत्री स्तर प्राप्त श्रीमती चारू चौधरी ने जनपद गोंडा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वह महिला सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा ली। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रीमती चारू चौधरी ने करीब 10 बजे सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्त्री पीजी कॉलेज पहुंचकर छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना तथा इसके बाद 11 बजे जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सालय की सुरक्षा सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नवजात शिशु को बेबी किट्स वितरण किया है।
0: गोंडा जनपद के झंझरी विकास खंड के जानकी नगर ग्राम पंचायत में जल भराव की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। गांव की मुख्य सड़क पर नाली नहीं बनी है, जिस वजह से घरों का गंदा पानी खुलेआम सड़कों पर बह रहा है। इससे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को आने जाने में समस्या हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से इस रास्ते पर पक्की नाली का निर्माण नहीं करवाया गया है। इसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है और पूरी सड़क तालाब जैसी बन जाती है। इस कीचड़ और गंदे पानी से होकर बच्चों को स्कूल और ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकलना पड़ता है। जल भराव के कारण सड़क पर गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे रोजाना राहगीर और दोपहिया वाहन चालक फिसल कर घायल हो जाते हैं। समस्या सिर्फ आने जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क पर लंबे समय से जमा इस गंदे पानी के कारण पूरे इलाके में तेज बदबू भी फैल रही है। मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
1: चोरों की अब खैर नहीं। देवीपाटन मंडल मुख्यालय की सीमाओं पर पुलिस निगरानी व्यवस्था मजबूत होने जा रही है। जनपद में अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती और सराबस्ती से जुड़ी सीमाओं के 77 प्रवेश प्रमुख बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे और बैरियर लगाए जाएंगे। इससे जनपद में आने जाने वाले वाहनों, लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्र में उन स्थानों पर चिन्हित किया गया है जहां से बड़ी संख्या में वाहन और लोग जनपद में प्रवेश करते हैं या बाहर जाते हैं। बता दें कि नवाबगंज क्षेत्र में अयोध्या सीमा के ढिमुआ घाट, लोलपुर और कोल्हमपुर के अलावा बस्ती सीमा पर परशुरामपुर मोड़ तथा कोल्हमपुर के खड़ौवा मोड़ पर कैमरे लगाने का कार्य शुरू हो चुका है।
0: गोंडा के झंझरी विकास खंड की चंदवतपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले रक्षा राम पुत्र सूर्य नारायण ने आज डीएम कार्यालय में शिकायत पत्र दिया। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग सरकारी जमीन गाटा संख्या 1 जो बंजर खाते में दर्ज है पर कब्जा कर रहे हैं। इन लोगों ने गांव वालों का रास्ता भी पूरी तरह बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से गांव वालों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इसी रास्ते से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। आरोप है कि दबंगों द्वारा रास्ते पर नींव खोदकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर आज गांव के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने निर्माण कार्य रोकने और रास्ता खुलवाने की मांग की है। डीएम प्रियंका निरंजन ने शिकायत पत्र को ध्यान में रखते हुए एसडीएम सदर जितेंद्र गौतम को जांच के निर्देश दिए हैं।
1: गोंडा में शिक्षा व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में बारिश के बीच दिन में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते अंधकार का प्रतीक बताया है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के अमित तिवारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को अंधकार से निकालने के लिए आंदोलन जरूरी है। कार्यक्रम संयोजक रंजीत पांडे ने बताया कि संगठन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने लोगों को 8 सितंबर को गांधी पार्क में होने वाले आंदोलन की जानकारियां भी दिया है।
0: गोंडा जिले के तरबगंज विकास खंड के सोनवर्षा ग्राम पंचायत में बरसात के मौसम में गांव की सड़क झाड़ियों से घिर गई है। इससे ग्रामीणों को इस रास्ते पर आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो हादसों का कारण बन रहे हैं। रात के समय इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू जैसे जीव जंतुओं का भी डर बना रहता है। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी अक्सर गायब रहते हैं। सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियां जिम्मेदारों की लापरवाही को साफ दिखाती है। विकास खंड मुख्यालय पर कागजों में तो काम तेजी से हो रहा है, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। पिछले साल प्रधान प्रशासक प्रतिनिधि रामचंद्र मिश्रा ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके सड़क किनारे की झाड़ियों की सफाई करवाई थी। इस साल भी बरसात का मौसम चल रहा है और झाड़ियां फिर से उगाई हैं। शिव शंकर, महादेव, कृष्णदेव, विवेक और सुनील जैसे ग्रामीणों ने रास्ते पर बने बड़े बड़े गड्ढों में मिट्टी डलवाकर आवागमन को आसान बनाने की मांग की है।
1: BSF हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सिस्टम बंद होने पर रद्द कर दिया गया है। चकेरी के श्यामनगर स्थित MD इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए। करीब 11 बजे तक परीक्षा शुरू नहीं होने से 500 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर केंद्र के अंदर और बाहर 3 घंटे तक हंगामा किया। केंद्र की परीक्षा रद्द करने और 18 सितंबर को दोबारा कराने की सूचना के बाद अभ्यर्थी शांत हुए हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों ने केंद्र में रखे CPU मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तोड़ दिया है। इस बीच भीषण गर्मी और उमस के कारण 2 छात्राएं बेहोश भी हो गए थे।
0: गोंडा के तरबगंज तहसील के दत्तनगर बाड़ी माझा, साखीपुर, चहलावा, तुलसीपुर माझा और ब्योंदा माझा गांव से बाढ़ का पानी उतर गया है। नदी का जलस्तर सामान्य से 2 फीट नीचे पहुंचने के कारण फिलहाल कटान रुक गई है। हालांकि बाढ़ का पानी घटने के बाद इन गांवों में संक्रामक बीमारियां फैलने लगी हैं। साथ ही मवेशियों के लिए हरे चारे का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है। बाढ़ खत्म होने के बाद गांवों में वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे और बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। गांव के धनपत, राजत राम और पवन तेज वायरल बुखार से पीड़ित हैं। वहीं श्रीचंद की माता की हालत नाजुक बनी हुई है।
1: जनपद में मगरमच्छ से बचाव को लेकर वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। खेत खलिहान, तालाब व नदी के आसपास विशेष सतर्कता बरतने की अपील किया है। बता दें कि प्रभागीय वन अधिकारी अनुराग प्रियदर्शी ने जनपद वासियों को मगरमच्छ से सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी किया है। उन्होंने लोगों से खेत खलिहान, तालाब, नदी, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। वन विभाग ने बताया कि सुबह और शाम के समय मगरमच्छ अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए इन समय पानी के आसपास विशेष सावधानी बरती जाए। रात में खेत अथवा जल स्रोत के पास जाने पर टॉर्च का प्रयोग किया जाए। पानी के किनारे अकेले काम करने तथा घनी घास में बिना देखे जाने से बचने की सलाह दी गई है। तालाब, झील एवं नदी के आसपास चेतावनी बोर्ड और संकेतों का पालन करने, समूह में रहने तथा बच्चों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। मगरमच्छ दिखाई देने पर किसी भी स्थिति में पानी में हाथ या पैर न डालें और उससे दूरी बनाए रखें। वन विभाग ने लोगों से तालाब, झील या नदी में तैरने अथवा स्नान करने से बचने तथा पानी के किनारे बैठकर मछली पकड़ने या पैर लटकाने से परहेज करने की अपील किया है। साथ ही घरों के आसपास साफ सफाई रखने और झाड़ियों की नियमित साफ सफाई करने को कहा है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि घरों के पास जलभराव, नालों एवं जल स्रोत को असुरक्षित न छोड़ें। कचरा, मांस, मछली अथवा अन्य जैविक अपशिष्ट पानी के किनारे न फेंकें, क्योंकि इनसे वन जीव जल स्रोत की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से रात में पानी के पास जाने से भी बचने की सलाह दी गई है।
0: गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले से बरी होने के बाद लगातार स्वागत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बुधवार सुबह 10 बजे वे नवाबगंज स्थित अपने घर से जरवल रोड पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने निकले। कार्यक्रम में जाते समय नवाबगंज से जरवल रोड तक 38 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विधायकों ने क्रेन, JCB और हाइड्रा के जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया गया। नवाबगंज से निकलते ही सबसे पहले डहरास बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्रेन के माध्यम से उन्हें 30 फीट लंबी चमेली फूलों की माला पहनाई। महाकवि तुलसीदास महाविद्यालय परिसर के सामने हाइड्रा के जरिए लगभग 20 फीट ऊंची माला से उनका स्वागत किया गया।
1: हज के लिए बीमारी छुपाई तो जब्त होगा इस बार जमा धनराशि। बता दें कि हज 2027 के लिए चयनित यात्रियों को मेडिकल जांच में बीमारी छुपाना भारी पड़ सकता है। जानबूझकर बीमारी की जानकारी छिपाने और जांच में अनफिट पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई के साथ जमा धनराशि भी जब्त कर दी जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश हज समिति के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर 10 के अनुसार मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस जांच दो चरणों में होगी। पहली जांच चयन के बाद दूसरी जांच उड़ान से पहले होगी। चयनित यात्रियों को सरकारी चिकित्सा केंद्र पर जांच कराकर एलोपैथिक चिकित्सक से निर्धारित प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र, जांच रिपोर्ट, अग्रिम जमा धनराशि की रसीद समेत अन्य दस्तावेज 15 सितंबर 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे।
0: गोंडा जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO संजय कुमार पर पंचायती राज विभाग के जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO गोवर्धन दास जैन समेत विभागीय अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ तौर पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। इसे गंभीरता से लेते हुए तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने बुधवार शाम करीब 4 बजे जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोंडा की ओर से दिए गए शिकायती ज्ञापन का हवाला दिया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि DPO संजय कुमार ने DPRO पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के प्रति अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।
1: अमर बलिदानी गोंडा नरेश महाराजा देवी भगत सिंह जी के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति की स्मृतियों को बनाए रखने की दिशा में आज स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा के परिसर में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा अनावरण समारोह में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षक एवं छात्र एवं छात्राओं द्वारा गणमान्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद गोंडा एवं केंद्रीय विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने की। समारोह के दौरान महाराजा देवी भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9216-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे।
3: प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: नमस्कार, सांची विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी RJ मानिका। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सांची विरासत के इस अंक में यानी इस एपिसोड में हम आपसे बहुत ही खूबसूरत लघु चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं। यूं तो लघु चित्रकला यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत फेमस है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स खासा फेमस है। तो वो कौन सी है जगह? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, इट्स राजस्थान। लघु चित्रकला चर्म पत्र, तैयार कार्ड, तांबे या हाथी दांत पर बनाया गया छोटा बारीक गढ़ा हुआ चित्र है, जिसे हम हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये नाम मध्यकालीन प्रकाशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिनियम या लाल शीशे से किया गया है। अलग अलग परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुआ प्रबुद्ध पांडुलिपि और पदक लघु चित्रकला 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फली फूली ये मिनिएचर आर्ट। पोर्ट्रेट लघु चित्र लॉकेट या ढके हुए पोर्ट्रेट बॉक्स में संलग्न एक अलग चित्र के रूप में हॉरन बाउट परिवार जैसे फ्लेमिश प्रकाशकों से सबसे अधिक प्रशंसनीय रूप से पता लगाया जाता है। हालांकि सबसे प्रारंभिक डेटा योग्य चित्र लघु चित्र फ्लेमिश नहीं बल्कि फ्रेंच है, और माना जाता है कि ये सभी चित्रित किए गए हैं थर्म फ्रांसिस प्रथम के दरबार में जीन क्लॉड द्वारा। राजा हेनरी अष्टम के संरक्षण में लुकास हॉरन बाउट ने इंग्लैंड में रिकॉर्ड किए गए पहले चित्र लघु चित्रों को चित्रित किया। उन्होंने तकनीक सिखाई हंस होलबिन द यंगर, जो अपने चित्र फलक चित्रों और रेखा चित्र में स्पष्ट दृष्टि से तीव्रता और स्पर्श की सुंदरता को इस छोटे पैमाने के काम में डालने में सक्षम थे, जिसे तत्कालीन नए कला रूप की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ जो नायाब है। होलबिन ने इंग्लैंड में लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की एक लंबी परंपरा को प्रेरित किया। उनके एक शिष्य निकोलस हिलियार्ड उस देश में लघु चित्रकला के पहले मूल निवासी मास्टर बने। उन्होंने गोलाकार रूप को प्राथमिकता देते हुए अंडाकार आकार को अपनाया, जो हाल ही में यूरोप महाद्वीप में फैशनेबल बन गया और जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक सबसे लोकप्रिय आकार बना रहा। हिलियार्ड ने 30 से अधिक वर्षों तक महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के लघु चित्रकार के रूप में कार्य किया। उनके प्रमुख शिष्य आइजैक ओलिवर तकनीकी रूप से अधिक परिष्कृत कलाकार थे, जो किंग जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान मुख्य लघु कलाकार बन गए। ओलिवर के शिष्य सैमुअल कूपर ने अपने चरित्र और चुस्त प्रभावी ब्रश वर्क की प्रस्तुति से यूरोप में एक प्रमुख प्रतिष्ठा अर्जित की। आरंभिक लघु चित्रकारों ने चर्म पत्र या तैयार कागज पर जल रंग और गौचे यानी अपारदर्शी जल रंग में चित्रकारी की थी। धातु की सतह पर एनामल में लघु चित्र बनाने की तकनीक 17वीं शताब्दी में फ्रांस से शुरू की गई थी। इसमें सुधार किया गया लगभग 1700 ईस्वी में। इटालियन चित्रकार रोसाल्बा कैरियरा ने जमीन के रूप में हाथी दांत का उपयोग किया, जो पारदर्शी रंगों के लिए एक चमकदार सतह प्रदान कर सकता है, उनके प्रभाव को बढ़ा सकता है। इस तकनीकी नवाचार ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लघु चित्रकला के महान पुनरुद्धार को प्रेरित किया। इस अवधि के प्रमुख यूरोपीय लघु चित्रकार फ्रांस में पीटर एडोल्फ हॉल और निकोलस लैम्फ्रेसन, और इंग्लैंड में जेरेमिया मेयर, रिचर्ड कॉसवे, ओजियास हम्फ्री और जॉन स्मार्ट थे। 19वीं सदी की शुरुआत में जेबी इसाबे जैसे फ्रांसीसी लघु चित्रकार जैक्स लुई डेविड के चित्रफलक चित्रों से प्रभावित थे। अगले दशक में लघु चित्र बनाए जाते रहे, लेकिन वे महंगी विलासिता बने रहे। फोटोग्राफी के नए माध्यम में सस्ते काले और सफेद चित्रों ने सदी के उत्तरार्ध में चित्रित लघु चित्रों को अप्रचलित बना दिया। आपने लघु चित्रकला के भारतीय विद्यालय के बारे में तो काफी सुना होगा। प्रत्येक स्कूल का एक चरम और पतन का दौर था। एक ही स्कूल के विभिन्न युगों के चित्रों की गुणवत्ता थोड़ी सी भी एक जैसी नहीं थी। अपने चरम पर स्कूलों ने सुंदर कृतियों का निर्माण किया और उनके पतन के दौरान चित्रों की गुणवत्ता और मौलिकता में कमी देखी गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग इज अ ब्यूटिफुली यूनिक आर्ट फॉर्म स्पैनिंग अक्रॉस सेंचुरीज। मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रकला रंग बिरंगी हस्त निर्मित पेंटिंग होती है जिनका आकार बहुत छोटा होता है। मिनिएचर शब्द न्यूनतम से लिया गया है जिसका अर्थ है कि चित्र छोटे या बहुत छोटे हैं और इसमें कागज, ताड़ के पत्ते और लकड़ी से लेकर संगमरमर तक की सामग्री शामिल है। भारत में लघु चित्रकला को इसके प्रवर्तक के रूप में बंगाल के पलाश को श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये मुगलों के अधीन था कि इसने अपने चरम को प्राप्त किया। किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ जैसे कई राजस्थानी चित्रकला विद्यालयों के कलाकारों ने लघु चित्रों की विरासत को आगे बढ़ाया। राजस्थान, जिसका अर्थ है राजाओं का निवास, पहले इसे कहा जाता था राजपुताना यानी राजपूतों का देश। 1947 से पहले जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की तो इसमें लगभग 2 दर्जन रियासतें और सरदारियां, अजमेर, मेरवाड़ा का छोटा ब्रिटिश प्रशासित प्रांत और मुख्य सीमाओं के बाहर के कुछ क्षेत्र शामिल थे। 1947 के बाद रियासतों और सरदारों को चरणों में भारत में एकीकृत किया गया और राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। इसने अपना वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को ग्रहण किया जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग इज एन एस्टॉनिशिंग एंड डिटेल्ड आर्टिस्ट्री दैट कैन बी लिंक्ड टू द स्प्लेंडेड एरा ऑफ 6th एंड 7th सेंचुरीज। राजस्थान भारत में लघु चित्रकला के अग्रदूतों में से एक है। ये भारतीय लोक कला रूप यहाँ मारवाड़, मेवाड़ क्षेत्र में 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जैन पाठ कल्प सूत्र के पाठ्य चित्र के रूप में विकसित हुई। इन राजस्थानी लघु चित्रकला में अजंता और गुजरात की महान कला से गहरा संबंध है। ये पहली भारतीय लोक कला शैली पालम की भगव पेंटिंग जो कि 1555 के आसपास बनाई गई थी उसमें आकार लेना शुरू हुई और राजस्थान की कला शैलियों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में स्वदेशी कला रूपों के साथ साथ पश्चिमी प्रभाव भी शामिल है। राजस्थानी चित्रकला शैली पहली बार 16वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ में देखी गई है। समय के साथ राजस्थान में कई अलग अलग चित्रकला शैलियां विकसित हुई। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कोटा, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ और मेवाड़ है। वर्तमान समय में जयपुर सबसे ज्यादा फेमस है पेंटिंग्स के लिए भी और अपने गुलाबी अंदाज के लिए भी। राजस्थान लघु चित्रकला एक अद्भुत एवं विस्तृत कलात्मकता है जिसे 6वीं व 7वीं शताब्दी के गौरवशाली युग से जोड़ा जा सकता है। इसका स्रोत राजपुताना के भव्य शाही कक्षों में स्थित है जो निडर राजपूत योद्धाओं के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है जिसे वर्तमान में राजस्थान के रूप में पहचाना जाता है। राजस्थान लघु चित्रकला में राजघरानों के बीच भावुक संबंधों को दर्शाया गया है। चित्रों में राजसी जुलूस, शानदार दरबारी मामले और राजाओं और रानियों द्वारा संचालित शानदार जीवन शैली को दर्शाया गया है। विलासिता और परिष्कार को दर्शाने में कलाकारों की महारत बेजोड़ है जैसा कि इन दृश्यों की भव्यता से स्पष्ट है। एक राजसी क्षेत्र की झलक प्रदान करता है। ये मुगलों द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई पीढ़ियों से राजस्थान हस्त निर्मित लघु चित्रों का केंद्र बना रहा है। सांस्कृतिक केंद्र होने के नाते राजस्थान ने उस उत्कृष्ट कला रूप के लिए सही मायने में मान्यता प्राप्त की है। ये चित्रकला की एक अनूठी और विशिष्ट राजस्थानी या राजपुताना शैली का दावा करता है। राजस्थानी लघु चित्रकला को गढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रयास, सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होती है। कैनवस के लिए तैयार होने से लेकर अंतिम तत्वों को जोड़कर समाप्त करने तक कलाकार कई तरह के काम करता है जिसके लिए बहुत धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। रचनाओं की योजना बनाने में बहुत सावधानी बरती जाती है। प्रत्येक टुकड़े को सोच समझ कर रखने से कहानी का संचार या विशिष्ट भावनाओं का आभास होता है। राजस्थानी लघु कला में खोजे गए विविध विषय मानवीय अनुभव के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। पौराणिक कथाएं, धार्मिक कहानियाँ, शाही दरबार के दृश्य, रोमांटिक मुलाकातें और प्रकृति की सुंदरता का चित्रण, ये कलाकृतियाँ इन सभी तत्वों का सुंदर प्रतिनिधित्व करती हैं। चित्रों में रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों का आकर्षक पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। भारतीय समाज ने इन गहरे रूप से जड़े महाकाव्यों द्वारा छोड़े गए अमिट निशानों को झेला है। राजस्थानी लघु कला मुगल शैली से प्रभावित थी, लेकिन इसका अपना व्यक्तित्व और दृष्टिकोण था। अंतर का यह हिस्सा राजस्थानी कलाकारों के अधिक गीतात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ शुद्ध रेखाओं और रंगों से उनकी खुशी के कारण आया। अंतर का दूसरा हिस्सा पवित्रता की भावना को हासिल करने की व्यस्तता में निहित है। राजस्थानी लघु चित्रकला में मुख्य रूप से हरे, भूरे और सफेद रंग के साथ साथ प्राथमिक रंग जैसे लाल, नीला, पीला का उपयोग किया जाता है। कुछ चित्रों में सोने और चांदी का भी उपयोग किया गया था। राजस्थानी चित्रकला के विकास में दो मुख्य कारकों ने योगदान दिया। पहला, समृद्ध राजपुताना समुदाय का संरक्षण और दूसरा, वैष्णववाद का पुनरुद्धार और भक्ति पंथ का विकास। राजस्थानी लघु चित्रों में विभिन्न प्रकार के विषय थे, जिनमें ऋतुएं, रागमाला, संगीत, शिकार, रामायण, महाभारत के धार्मिक विषय और राधा और कृष्ण के प्रेम दृश्य शामिल थे। राजस्थान के प्रारंभिक कला शैली को उसके सर्वाधिक अविरल रूप में दर्शाने वाले अधिकांश लघु चित्र मेवाड़ से प्राप्त होते हैं। बोल्ड रेखाएं, भावनात्मक रूप से भरे चेहरे, तीखे फीचर्स, मजबूत आकृतियां और बुनियादी चमकीले रंग इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और नाथद्वारा में मेवाड़ कला के उपकेंद्र विकसित हुए। शाहपुरा और प्रतापगढ़ ने शाही चित्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देवगढ़ ने विभिन्न विषयों में और नाथद्वारा ने श्रीनाथ जी के चित्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नाथद्वारा ने कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया, लेकिन ये अपने बड़े आकार के कपड़े की दीवार लटकनों में सभी से आगे निकल गया, जिन्हें पिछवाई के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी लघु चित्रकला के विद्यालय, लघु चित्रकला के राजस्थानी विद्यालयों में अगर हम बात करें तो मेवाड़, मालवा, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर विद्यालय शामिल हैं। अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग्स की हिस्ट्री की तो इट हैज सच अ हिस्टोरिकल रूट। लघु चित्रकला की कला का इतिहास बहुत ही रोचक है और भारत में इसकी यात्रा मुगल आक्रमणकारियों के साथ शुरू हुई, जिन्होंने फारस से इस अत्यंत प्रतिष्ठित कला रूप को यहाँ लाया। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक हुमायूं ने फारस से कुशल कलाकारों को आमंत्रित किया, जो लघु चित्रकला की कला में निपुण थे। ये कलाकार जटिल और विस्तृत कलाकृति की एक समृद्ध परंपरा लेकर आए, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कौशल से मुगल दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स की हिस्ट्री और इसकी डेवलपमेंट 750 ईसवी पूर्व की मानी जा सकती है, जब पलाश ने भारतीय पूर्वी क्षेत्र पर शासन किया था। लोकप्रियता का कारण बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं थी, जिनमें उनके चित्र शामिल थे, जो ताड़ के पत्तों पर अंकित थे। ताड़ के पत्तों पर फिट होने के लिए इन चित्रों को छोटा होना था, जिस पर वे बनाए गए थे। लगभग 960 ईसवी में चालुक्य वंश के राजा द्वारा इसी तरह के चित्रों को पश्चिमी भारत में आयात किया गया था और इसी से विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ लघु चित्रों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। मुगल साम्राज्य, क्योंकि अकबर की चित्रकला में बहुत रुचि थी, तो हुआ यूं कि ये चित्रकला धीरे धीरे फलने फूलने लगी। चित्रकला की मुगल शैली की उत्पत्ति भारतीय लघु चित्रों में हुई, जो फारसी चित्रकला के पहलुओं को जोड़ती है। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रों के प्रभाव से इन लघु चित्रों का और विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी राजस्थान के राजपूत राजाओं ने लघु चित्र और कलाकार का समर्थन करना शुरू किया। मुगल कला चित्रकला से प्रभावित होने के बावजूद राजस्थान के लघु चित्रों की अपनी अनूठी विशेषताएं थी और अक्सर शाही जीवन शैली और कृष्ण राधा की पौराणिक कथाओं को चित्रित करती थी। इन छोटे चित्रों में से अधिकांश ने शाही जीवन को चित्रित किया और उनके साहस की कहानियां सुनाई। इनमें से कुछ पेंटिंग विभिन्न राजा और रानी द्वारा अपने लोगों और साम्राज्य के लिए किए गए योगदान को उजागर करने के लिए भी बनाई गई थी। कला और संस्कृति के पारखी सम्राट अकबर के संयोग से भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स का विकास हुआ। कला को बढ़ावा देने के लिए अकबर के जुनून ने उन्हें इन फारसी कलाकारों के लिए कार्यस्थल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें अपनी विशेषज्ञता दिखाने और भारतीय कलाकारों को इस कला रूप से परिचित कराने का एक मंच मिला। बदले में फारसी कलाकारों ने अपने ज्ञान और तकनीकों को भारतीय कलाकारों के साथ साझा किया, जिन्होंने उत्सुकता से इस नई कला को अपना लिया। भारतीय कलाकारों ने फारसी शैली सीखी, लेकिन इसमें अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को भी शामिल कर दिया। फारसी और भारतीय कलात्मक प्रभावों के इस मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक नई विशिष्ट शैली का निर्माण हुआ, जिसे आज हम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स या राजपूत पेंटिंग्स के नाम से जानने लगे हैं। राजस्थानी पेंटिंग्स ने भावनाओं और अभिव्यक्तियों को कैद किया, जिससे प्रत्येक पेंटिंग एक आकर्षक इतिहास बन गई, जिसने दर्शकों को सुंदरता की दुनिया में पहुंचा दिया। समय के साथ राजस्थानी लघु चित्रकला की कला राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। उदयपुर शहर अपनी खूबसूरती के साथ ही अपनी कला और संस्कृति के लिए भी दुनिया में पहचाना जाता है। इस खास कला में यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स कला खास तौर पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। छोटी छोटी कलाकृतियां और आकर्षक चित्र हर किसी को मोहित कर देती है और मेवाड़ की चित्रकारी खास रूप से अपनी मिनिएचर कला के लिए पहचानी जाती है। उदयपुर में मिनिएचर आर्टिस्ट कैलाश जिंगर ने बताया कि यहाँ कई विदेशी पर्यटक आते हैं, जिन्हें यहाँ की मिनिएचर कला खास तौर पर आकर्षित करती है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह और महाराणा सज्जन सिंह ने इस कला को विशेष बढ़ावा दिया। इस कला में मुख्य रूप से हाथी, घोड़े, चीते और मोर के चित्रण किए जाते हैं। इसके साथ ही मिनिएचर पेंटिंग्स में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाल, पीला और नीला। पहले इनका प्रयोग प्राथमिक चित्रों के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में इन मिनिएचर पेंटिंग्स को सिल्क के कपड़े या कैनवस पर बनाया जाता है और विदेशी पर्यटकों को इन्हें खास रूप से पसंद करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का अगर सही मतलब जाने तो उसका मतलब होता है छोटे आकार का चित्र, जिसका इतिहास भारत में लगभग 1000 से 1200 साल पुराना है। इस खास चित्रकारी में हाथों से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें धार्मिक, पौराणिक कथाएं और आदि काव्य के वर्णन की विशेष तरीके से रंगों को सजाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला से भिन्न है दिल्ली के शाही कारीगरों और प्रांतीय अदालतों की मुगल पेंटिंग में रंग का अधिक साहसिक उपयोग। मानव आकृति की एक अमूर्त और पारंपरिक अवधारणा और परिदृश्य का एक सजावटी उपचार शामिल है। 18वीं शताब्दी में दरबारी चित्र, दरबारी दृश्य और शिकार के दृश्य तेजी से आम होने लगे। मुगल कला की तरह राजस्थानी पेंटिंग को बक्सों या एल्बमों में रखा जाता था और एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाकर देखा जाता था। तकनीक मुगल चित्रकला के समान है, हालांकि सामग्री उतनी परिष्कृत और शानदार नहीं। अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये नाजुक ब्रश वर्क है जो उनकी विशिष्ट पहचान में योगदान देता है। चित्रों का आकार छोटा होना चाहिए, जो 25 वर्ग इंच से अधिक ना हो। चित्रों में उपयोग किए जाने वाले रंग हल, नील, कीमती पत्थर, सोना और चांदी सहित विभिन्न कार्बनिक पदार्थ से आते हैं। लघु चित्र में महिलाओं की मूर्तियों में अक्सर लंबे बाल होते हैं और उनकी आंखें और बाल हमेशा काले रंग के होते हैं। जबकि दुनिया भर के चित्रकार अपने कामों में अपने स्वयं के विषय को प्रसारित करते हैं, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स में राग, संगीत के नोटों का पैटर्न और धार्मिक और पौराणिक कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित विषय हैं। लघु स्तरीय लघु चित्र आमतौर पर पुस्तकों या एल्बम के लिए बनाए जाते हैं। ये कपड़े और कागज आधारित सामग्री पर किए जाते हैं। मुगल लघु चित्रों के पतन के परिणाम स्वरूप लघु चित्रकला की राजस्थानी शैली ने लोकप्रियता हासिल की। राजपूत सम्राटों में कला के प्रति वही जुनून था जो मुगल सम्राटों में था, और उन्होंने लघु चित्रों को काफी ज्यादा समर्थन दिया। किशन सिंह के बाद राजा सावंत सिंह के बेटे राजा राज सिंह के शासन काल में राजपूत चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। राजपूत लघु चित्रों में अक्सर रामायण की कहानियों और राजाओं और रानियों की शाही जीवन शैली के अलावा वर्तमान और पिछले शासक की विरासत को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त राजपूत चित्रों ने सामाजिक मानदंड और शासक द्वारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन को चित्रित किया। राजस्थानी चित्रों के विषय ऋतुओं, संगीत, शिकार के दृश्य आदि रहे हैं। राजस्थानी स्कूल की एक विशिष्ट पहलू चित्र की पृष्ठभूमि थी। नियोजित रंग आमतौर पर बोल्ड और विषम थे। अब बात आती है कि इतने सारे स्कूल ऑफ आर्ट का हमने जिक्र किया, तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है मेवाड़ स्टाइल। 17th और 18th शताब्दी की भारतीय लघु चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है मेवाड़ स्टाइल। ये राजस्थानी शैली की एक ऐसी स्कूल स्टाइल है और इसे मेवाड़ की हिंदू रियासत में विकसित किया गया। राजस्थान राज्य की ये बेहद फेमस स्टाइल है। तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या में चित्रों की तारीखें और उत्पत्ति के स्थान बताए जा सकते हैं, जो किसी भी अन्य राजस्थानी स्कूल की तुलना में मेवाड़ में चित्रकला के विकास की अधिक व्यापक तस्वीर को संभव बनाते हैं। सबसे पुराने उदाहरण 1605 में राज्य की प्रारंभिक राजधानी चावंड में चित्रित ये अभिव्यंजक और सशक्त शैली कुछ बदलाव के साथ 1680 तक जारी रही, जिसके बाद मुगल प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया। प्रारंभिक चरण के उत्कृष्ट चित्रकारों में से एक कलाकार साहबदीन थे। राणा अमर सिंह ने निसारुद्दीन को चावंड रागमाला बनाने का काम सौंपा। इस सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ लघु चित्रों में से एक है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रागमाला श्रृंखला है और राजपूत शैली के अंत और मेवाड़ शैली की कलात्मक विकास की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। मेवाड़ स्कूल 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी तक जारी रहा। उत्पादन काफी प्रचुर मात्रा में हुआ। चित्रकारी और शासक के जीवन से संबंधित चित्रों की बढ़ती संख्या हालांकि धार्मिक विषय लोकप्रिय बने रहे। यह पेंटिंग निसारुद्दीन की विशिष्ट शैली को दर्शाती है। रंग पैलेट अच्छी तरह से संतुलित है, एक गहरे प्रूशियन ब्लू रंग के साथ विपरीत जो पात्रों को ढकता है। रंगों का उपयोग नियंत्रित है और लाल नीले कंट्रास्ट पर बहुत अधिक निर्भर है। हम पीले और ठंडे रंग वाले हरे वनस्पति के कुछ टुकड़े देख पाएंगे अगर हम इन पेंटिंग्स पर गौर करें। सभी रचनाओं में किसी न किसी प्रकार का पशु जीवन भी शामिल है, चाहे वो मोर हो, हिरण का बच्चा हो या बंगाली लघु चित्र में पेड़ों से झांकते दो बगुले हो। उदयपुर से निकली मेवाड़ शैली अपनी गहन आध्यात्मिक और अलौकिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ये शैली अक्सर हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कलाकार अपने जटिल ब्रश वर्क और नाजुक विवरण के माध्यम से आध्यात्मिकता और भक्ति की भावना को कुशलता से व्यक्त करते हैं। मेवाड़ की पेंटिंग रंगों के अपने समृद्ध उपयोग देवी देवताओं के भावपूर्ण चित्रण के लिए जानी जाती है। अब बात आती है मारवाड़ स्टाइल की। जोधपुर से शुरू हुई मारवाड़ चित्रकला शैली साहस और कुलीनता की एक अलग भावना को दर्शाती है। ये शैली वीरतापूर्ण कहानियों, शाही दरबार जीवन और शिकार के दृश्यों को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ की पेंटिंग्स में राजपूत दरबारों की शान और विलासिता को दर्शाया गया है और ये काफी ज्यादा साहस को भी दर्शाती है। इसके बाद आती है हदौती स्टाइल। बूंदी और कोटा के क्षेत्रों में अपनी जड़ों के साथ हदौती स्टाइल, जिसे लोग हाड़ौती शैली की विशेषज्ञता को मानते हैं, इसकी बारीक विवरण और जटिल रचना है। ये शैली अक्सर धार्मिक विषयों की खोज करती है, हिंदू महाकाव्य और पौराणिक कहानियों के दृश्यों को चित्रित करती है। हाड़ौती पेंटिंग्स में राजपूत रईस और उनके दरबारी के लघु चित्र दिखाई देते हैं। कलाकारों का विवरण और जटिल ब्रश वर्क पर सावधानी पूर्वक ध्यान हाड़ौती पेंटिंग्स को देखने लायक बनाता है। एंड नाउ नेक्स्ट कम्स किशनगढ़ स्टाइल। किशनगढ़ शैली रोमांटिक विषय, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम के अपने अनूठे चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रकला शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में कृष्णगढ़ में हुआ था, जिसे बाद में कृष्णगढ़ या किशनगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अक्सर बनी ठनी शैली के रूप में संदर्भित इन चित्रों में अभिव्यंजक आँखें और पतली विशेषताएं दिखाई जाती हैं। बनी छनी के बारे में बात किए बिना किशनगढ़ चित्रकला का उल्लेख कभी नहीं कर सकते। वो महाराजा सावन सिंह की रखेल की रानी से बनी थी। उनका असली नाम विष्णुप्रिया था, लेकिन खुद को उत्तम श्रृंगार और आभूषणों से सजाने के कारण उन्हें बनी ठनी कहा जाता था। और ये यहाँ से शुरू होती है किशनगढ़ पेंटिंग्स की एक नई कहानी। 17वीं शताब्दी के अंत में किशनगढ़ में मुगल कला की शैली के समान सक्षम चित्र बनाए जा रहे थे, लेकिन राधा कृष्ण विषय पर चित्रों की शानदार श्रृंखला काफी हद तक राजा की प्रेरणा के कारण ही थी। सावंत सिंह एक कवि भी थे जिन्होंने नगरी दास के नाम से लिखा था। साथ ही वे वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक समर्पित सदस्य थे जो पृथ्वी पर भगवान के दिव्य प्रेमी कृष्ण के रूप में उनकी पूजा करता है। और सावंत सिंह की सौतेली माँ की कहानी पर काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं और यहीं से निकल कर आती है एक अद्भुत नैन नक्श वाली ये किशनगढ़ पेंटिंग्स। इसके बाद आती है बूंदी स्टाइल। बूंदी शहर से शुरू हुई बूंदी शैली अपने जटिल पेंटिंग और भीगती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान की हवेलियों की दीवारों को सजाती है। ये पेंटिंग आमतौर पर पौराणिक कथा, ऐतिहासिक घटना और क्षेत्र में रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती है। कलाकार आकर्षक रचनाएं बनाने के लिए बोल्ड और जीवंत रंगों का उपयोग करते हैं जो उनके चित्र दृश्यों में जीवन और चरित्र को जोड़ते हैं। चलिए जयपुर स्कूल की ओर चलते हैं। ये अपने आदमकद चित्रों और बड़े कैनवस के लिए प्रसिद्ध था। विद्वानों का मानना है कि साहिब राम जयपुर इंटीरियर के प्रमुख थे। वह बेहद लोकप्रिय थे और उन्होंने अपनी कार्यशाला में बड़ी संख्या में कलाकारों और अधीनस्थों को नियुक्त किया था। उनका करियर 1750 से 1820 तक चला और उन्होंने उस अवधि के दौरान 6 अलग अलग राजाओं की सेवा की। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का या बड़ा पैमाने का चित्र संभवतः उनके शासन काल के प्रारंभिक काल का है। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्हें राज्याभिषेक किया गया था और इस पेंटिंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उनकी आंखों का वो कमल आकार की है। और साहिब राम संभवतः किशनगढ़ शैली से प्रेरित थे। उनकी युवा उपस्थिति, उनके छोटे कद, हल्के चेहरे और बाल, उन पर मुकुट कितना बड़ा दिखता है उससे स्पष्ट है अगर आप इस पर गौर करें तो। अगले आती है बीकानेर स्कूल की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स जिसमें अली रजा, रकनुद्दीन और उस्ता नुथु की कृतियां शामिल हैं। अली रजा मूल रूप से दिल्ली के कलाकार थे लेकिन उन्होंने बीकानेर स्कूल में काम किया। राजा करण सिंह को एक सपना आया और उन्होंने अली रजा को इस विषय पर एक पेंटिंग बनाने का निर्देश दिया। इससे वैकुंठ दर्शन या विष्णु का निवास विषय का विकास हुआ। हालांकि 1660 के बाद अली के काम में अधिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ये व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्होंने मास्टर कलाकार रुकनुद्दीन को प्रशिक्षित किया था। अली रजा द्वारा प्रवर्तित तो वैकुंठ दर्शन द्वारा उनके समकालीनों के बीच लोकप्रिय हो गए और उन्होंने इसकी कई पुनर्व्याख्याएं लिखी। इसके बाद कुछ और स्टाइल्स आती हैं जिसे मुगल स्टाइल और मालवा चित्रकला कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स की तो इसे राजपूत चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज बीन डीपली इम्पैक्टेड बाय राजस्थानी पेंटिंग्स और कलाकृति में बोल्ड रंग का उपयोग किया जाता रहा है। उनमें से कुछ ऐसी रही हैं जो बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट आर्टवर्क रही हैं। इंडियाज आर्टिस्टिक हेरिटेज स्टिल इंक्लूड्स राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट, रेनाउंड फॉर देयर इलैबोरेट पैटर्न्स, रियलिस्टिक कलर्स एंड मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज। दे हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन आर्ट हिस्ट्री। इसी के साथ आपके आरजे मोनिका आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

श्री कृष्ण का अवतार हो। बात जो होती दुनिया सारी हो, गीता के पन्ने बढ़ने को तैयार हूँ। कब आने वाला है कान्हा, बस इसकी ही बात हो। प्रेम संदिग्ध दूषित हवा ना हो, मन में किसी तरह का लेश ना हो, अखियों को बस तेरा इंतजार हो। हर पल कान्हा आने वाला हो, कान्हा आने वाला हो। जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भादो मास की अष्टमी तिथि है, और आप सभी को पता है कि आज ही के दिन रात्रि में 12 बजे श्री कृष्णा ने जन्म लिया था, धरती का पाप हरने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया था। आप सोचिए मनुष्य रूप में कितनी शक्ति है जो ईश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ता है। कहते हैं कि कान्हा कहीं भी हो, पर अपने प्रेम की धुन जब बजाता है, हर किसी के मन में बस एक ही गीत बजता है, राधा राधा राधा। कीर्तन में जो गाती हूँ यमन राग है जो रात, अंधियारा वृंदावनी धुनों के साथ, जो मेरे पास होता है वो मेरे साथ सोता है। वह मेरी सुबह की ओस है, वह मेरे नहाने का पानी है, वह मेरे होठों की मिठास है। बात तो संचारी में रुद्र वीणा की लय में झूम उठता है। वो एक सुंदर गीत है, वो एक सुंदर कविता है, वो यमुना का कलकल जल है, राधा की आंख है, राधा का समर्पण है, राधा का प्रेम है। कृष्ण हर किसी में तो है, कृष्ण हर किसी में तो है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बड़ी खूबसूरत सी शाम है, और आज बॉलीवुडिया टॉक्स भी हैं, और देखा जाए तो भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, और अगर देखा जाए तो बचपन से हमने भगवान को टीवी से जानना शुरू किया है। वैसे तो घर में भगवान की फ़ोटो लगी होती थी, घर में पूजा पाठ होता था, लेकिन जब हमने रेडियो पे टीवी सीरियल्स में इनका जो बखान सुना तो और कनेक्ट होते चले गए मूवीज़ में। तो आज मूवीज़ की बात होगी, और आज स्पेशल मैं बात करूंगी अभी हाल ही में रिलीज़ हुई हनुमान अंश की, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा, मात्र 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 40 करोड़ पार कर चुकी है, चमत्कार भी चमत्कार हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं ना कि हमारे मैं क्या कहूँ सरल भाषा में, बड़े बड़े जो थिएटर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को लगाने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने इस फिल्म की जब सक्सेस देखी, हाउसफुल शोज़ जा रहे थे जिन्होंने भी इस फिल्म को लगाया, तो इन्होंने भी अपनी हार मानी और वापस इस फिल्म को लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी फिल्में लोगों को पसंद आती, स्पिरिचुअल, और ये जो कहते हैं ना कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी का बहाना होता है। इसी के साथ एक और फिल्म आई है जिसने और मुझे मतलब भावुक कर दिया है, वो है विवान, जो कि बिहार से एक परंपरा को हमारे सामने लाने वाली है। उस फिल्म के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक पहले कृष्ण भजन हो जाए फिर आगे बात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए और सुनते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और कहते जाइए राधे राधे राधे राधे, क्योंकि कहते हैं ना कि राधा का नाम लो तो कृष्ण जल्दी चले आते हैं। तो उस मन मोहना को बुलाने के लिए राधा का नाम तो पुकारना ही पड़ेगा। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ बी पराग।

कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। तो भाई आज शाम सब कुछ मिला है क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले तो भाई बॉलीवुड या टॉक हो जाए, फिर इसके बाद ऐसे गाना बजाना तो होता ही रहेगा। भाई आज जन्माष्टमी है तो मैं किसी को गाने से रोकने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आवाज़ में सुर के संगीत सजाएं। लेकिन 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे से आप लोग रेडी रहिएगा। और मैं चाहूँगी कि फटाफट से आप लोग की जो कहते हैं ना कि जुगलबंदी है गाने की, वो बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले उस फिल्म की बात करती हूँ जिस फिल्म के बारे में बड़े चर्चे सुने हैं, और ख़ास तौर से वो इतिहास से जुड़ी है। और अगर आप ईश्वर में ज़रा भी विश्वास रखते हैं तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। और फिल्म का नाम है विवान, ठीक है, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। और सबसे पहले तो बताऊँ कि ये काफ़ी अलग सी फिल्म होने वाली है आप लोग के मतलब सोच से पड़े ना, तो एकदम टोटल स्पिरिचुअल होने वाली है और ना ही रिवेंज या बदला टाइप की, ऐसी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे देश के वन विभाग को भी रिप्रेजेंट करने वाली है, और साथ ही साथ हमारे जो देश में संस्कृति है उसको भी अलग अलग रूप में दिखाने वाली है। स्टोरी मूवी का नाम पहले समझ लीजिए, द विवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें आपको मुख्य कलाकार के रूप में दिख जाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया। कहानी की अगर बात करूं तो ये वहाँ में मतलब जंगल के अंदर एक मंदिर है जो कि पिंड स्वरूप है और बिहार के पटना में बिहटा में स्थित है ये मंदिर। और ये माना जा रहा है कि ये 400 साल पुराना मंदिर हो सकता है। और इसमें ये चीज़ है कि जो जंगल है उसमें माता जी का मंदिर जो कि पिंड स्वरूप में है उसे माँ वन देवी कहा गया है, और रात के समय जंगल में जाना वर्जित है। माना जाता है कि रात के समय जो मंदिर है उसमें माँ जो है वो विचरण करती हैं। सो ये कहते हैं ना कि वहाँ की पौराणिक कथा जो हैं, पौराणिक कथाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें संस्कृति है। ये बात तो मुझे लगता है कि हमारे सबलू जी भी बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ पे ये मंदिर कैसा है। अगर आप लोग जाना चाहें तो इस मूवी को देखने के बाद जा भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मंदिर काफ़ी रहस्यमयी है और लोग अलग अलग कहानियाँ भी इसके बारे में बताते हैं। और फिल्म बनने की वजह से वहाँ पे जो पर्यटन है वो काफ़ी सुधर गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी अच्छी चीज़ें करने से आम जो जनता है वहाँ की उसको अच्छा खासा मतलब मुझे लगता है रोज़गार मिलता होगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर बात करें बिहार की या यूपी की या किसी भी राज्य की, वहाँ पे लोक कथाएं उस क्षेत्र की ज़रूर होती हैं, लेकिन क्या करें वो लोक कथाएं बन के रह जाती हैं, वो जो सच में लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती हैं। वैसे भी आपको पता है बिहार जो है अपनी समृद्ध विरासत की वजह से और अपनी संस्कृति की वजह से विश्व पटल पे अपनी पहचान बना चुका है। और इस मंदिर से जुड़ी जो कहानियाँ हैं वो अलग अलग हैं, लोग अलग अलग बताते हैं। और कहते हैं कि इस जो बिहटा में जो आनंदपुर में ये मंदिर स्थित है, इसमें लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो पूरा एकदम घना जंगल था, और महाकाल के मतलब सॉरी महाकाल बता रही हूँ महाभारत के समय में जो उस समय का दौर था, कहते हैं कि पांडव जो थे वो अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब उन्हें यहाँ देवी की शक्ति की आराधना की। घने जंगल में स्थापित होने के कारण इसे वन देवी भी कहा गया। और एक बार की बात है, एक और कहानी है कि एक साधक था, उसे मतलब कोई प्रॉब्लम थी, मतलब चल नहीं पाता था, और उसका माँ विंध्याचल में बड़ा विश्वास था कि मैं विंध्याचल जाऊँगा दर्शन करने, लेकिन दूरी की वजह से वो नहीं जा पाता था। तो उसे जंगल में जब वो लेटा तो उसे सपना आया कि माँ ने दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पर मेरी स्थापना करो और मेरा मंदिर बनाओ। तो ग्रामीणों की मदद से उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया और लोगों को बहुत सारी मतलब जो मनोकामनाएँ वहाँ से पूरी होती दिखने लगी। इसी के साथ
इस जो मंदिर है इसको संरक्षक देवी नाम से या ग्राम देवी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर अटूट विश्वास है और कहते हैं लोग कि वहाँ सबकी झोलियाँ भरी जाती है और नवरात्रि में अक्सर दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये तो बात हो गई मूवी की। अब मैं बात करती हूँ मतलब मंदिर की, मूवी की बात करती हूँ कि इस मंदिर से जुड़ी कहानी जो है वो फिल्म में बड़ी क्लियर दिखती है। जहाँ फिल्म में अगर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करूँ तो वो सूर्यास्त के बाद प्रतिबंधित जंगल और मंदिर क्षेत्र में प्रवेश का नियम तोड़ देते हैं। इसके बाद जंगल की अलौकिक दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो असामान्य रूप से सामने आ जाती हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। फिल्म की बात करूँ तो उसमें घना जंगल दिखाया गया है, छठ माई का गीत सुनाया गया है और फिल्म अगर बताऊं तो आप लोगों को फुल्ली मतलब सेटिस्फाई करने वाली फिल्म है। तो आप लोग के मन में ये होगा कि हम लोग ये फिल्म कब देख सकते हैं या देख सकते हैं कि नहीं, रिलीजिंग डेट की बात क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी इसका टीज़र सिर्फ आया है और 25 सितंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में होगी। फिर आरजे बीना इस मूवी की जो कहानी है उसको संक्षिप्त में बता देगी। फिलहाल टीज़र इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आज जन्माष्टमी भी है तो पॉजिटिव वाइब वाली चीज़ों की बात होनी चाहिए। अब बात करूँगी आज की फिल्मों के बारे में, कौन कौन सी फिल्में जो हैं जो आज के आज रिलीज़ हुई हैं और उनसे मतलब आपको क्या फ़ायदा होने वाला, फ़ायदा मतलब कि कौन सी मूवी ऐसी है जो आपको आज देखनी चाहिए। तो आज के आज तो फ़िलहाल आप लोग मुझे लगता है नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज आप जन्माष्टमी बनाएंगे मेरे साथ। तो मूवी आ चुकी है आज, मिर्ज़ापुर द मूवी, ठीक है। आपने मिर्ज़ापुर तो देख रखी है लेकिन मिर्ज़ापुर का जो समझ लीजिए सिक्वेंशियल मूवी समझ सकते हो, इसका सीक्वल है। तो मिर्ज़ापुर द मूवी आ चुकी है, इसमें पंकज त्रिपाठी है, अली फैज़ल है और ये फिल्म आपका इंतज़ार कर रही है। तो कल के कल, आज के आज, आज तो मतलब मुझे नहीं लगता आप देखेंगे, आज के आज आप ये फिल्म देख सकते हैं। कॉमेडी है, ड्रामा है, रोमांस है, क्राइम भी है। कॉमेडी थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ड्रामा तो बहुत तगड़ा वाला है। दूसरे नंबर पर आती है जीवन बीमा योजना। जीवन बीमा तो हमें सभी ने कराया होगा लेकिन जीवन बीमा योजना नाम की फिल्म आ जाएगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। अर्शद वारसी के साथ विजय राज, संजीदा शेख एंड विजेंद्र इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। थ्रिलर है लेकिन कॉमेडी कूट कूट के भरी है। क्राइम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है एंड आज के आज इसको 4.5 रेटिंग मिली है और मुझे लगता है कि इस मूवी को तो नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में वैसे ही गम बहुत हैं, अगर कहीं से खुशी मिले तो उसको ले लेना चाहिए। अगली है गांधारी। गांधारी तापसी पन्नू की है, 3 सितंबर को यही रिलीज़ हो चुकी है। एक्शन है, थ्रिलर है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वो उतनी मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। मुझे तो सही लगी, मैं तो देखूँगी ये फिल्म। और अगेन आवारापन 2 ने अपनी म्यूज़िकल जो एंट्री मारी थी और इसी के साथ स्टोरी का भी जो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था जिसके बारे में पिछले ही वीक बात हो चुकी है, दोनों ने ही लोगों को बहुत खुश कर दिया। और मुझे लगता है यार ऐसी फिल्में बननी चाहिए, मतलब चाहे कुछ दिन बाद ही किसी फिल्म का सीक्वल आए लेकिन आए ज़रूर। तो 7 बजे से आप लोग को मैं इन्वाइट करती हूँ लाइव कॉल इन के लिए और आपके साथ मनाऊंगी कृष्ण जन्माष्टमी लाइव। सो जय जय श्री राधे। और आज की जो शाम है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे बर्बाद क्योंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड और चलिए थोड़ा सा और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना जिसकी शुरुआत मैंने शुरू में ही कर दी थी।

तो कान्हा को पाना है तो राधे को तो पाना ही पड़ेगा। और चलिए अब मैं एक प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, बड़ा पुराना सा है। मतलब अक्सर मुझे जब मतलब मैं बहुत हर तरह के गाने मुझे सुनना पसंद है, लेकिन जो मेरी गुड बुक्स में है तो उसमें सबसे टॉप पे जो है वो सुनाती हूँ आपको। बड़ा अच्छा सा गाना है, कृष्ण के ऊपर ही है। और दो गाने वैसे तो पहले सुनाती हूँ एक, और जब तक आप लोग का कॉल आ रहा है और उसके बाद आप लोग सुनाएंगे तो उसके बाद मैं अपना गाना रोक दूंगी। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। वैसे तो लता जी की आवाज़ में था, फिल्म थी एक फूल चार कांटे, और चार कांटे हों तो समझ लो कि मामला बड़ा ख़राब है। तो चलिए सुनते हैं मेरी आवाज़ में ये प्यारा सा गाना, आज के लिए, आज के लिए, आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज की शाम के लिए, क्योंकि आज हम इस शाम को सुरीला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सुरीली शाम तभी होगी जब हम एक दूसरे के साथ इसे गुनगुनाते हुए सुरीली बनाएंगे।

झूठी है ये माया, झूठा सांस का ना जाना, झूठी

मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो बिल्कुल कृष्ण अगर आपको मिल जाए या कहें ईश्वर अगर आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमें सच में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो लाइव हो चुके हैं फटाफट से अपनी आवाज़ में कुछ सुना सकते हैं। आज आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी आवाज़ में कुछ भी डिवोशनल सा सुनाने के लिए। वैसे तो सवाल मैं हर बार करती हूँ और आपको अपनी पसंद का गाना सुनाती हूँ, तो सवाल भी आज मैं करती हूँ कि आपने OMG ओ माई गॉड फिल्म देखी है, इसमें पारिश रावल की पत्नी का रियल नेम क्या है, जो इसमें पारिश रावल की पत्नी बनी हुई हैं उनका रियल नेम क्या है। ओ माई गॉड, आपने OMG पहली वाली देखी है ना, तो उसमें जो है पारिश रावल हैं और उनकी पत्नी का रियल नेम क्या है जो उसमें बनी हुई है, तो सोच के बताइए। और मैं भी तब तक आप लोगों की आवाज़ का इंतज़ार करती हूँ और कृष्ण के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन रास रसैया की, गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन रास रसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहाँ चलता ना था काम तीरों और कमानों से, जहाँ चलता ना था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली के तानों से, मुरली वाले ने मुरलिया बजा दी, गीता की टेर यूं ही सुना दी, तेरी बंसी में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार, फिर वही बंसी बजाकर कर दो ना

भाई आज सबलू जी बड़ी सारी बातें बता रहे हैं। देखिए सारी बातें आप सभी को मैं शेयर कर दूं। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो तो करना ही है, लेकिन से पहले मैं मतलब कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं जिनके बारे में बात करें तो मुझे लगेगा कि ये शाम क्या ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। वैसे तो मुझे कृष्ण ने दोस्ती की भी एक जो गरिमा है वो बताई, अपने प्रेम को जताया। कृष्ण ने ऊंच नीच का भेदभाव हटा के ग्वालों के संग गोपियों के संग दोस्ती का एक अलग जो कहते हैं ना कि उदाहरण पेश किया, जिसमें हम समझ सकते हैं कि कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर हैं, एक दूसरे के समान हैं। अहंकार, इंद्र का अहंकार कैसे भगवान ने तोड़ा था ये तो गोवर्धन पर्वत को देख के ही पता चलता है। और जितनी बातें करी जाए उतनी कम होगी। तो सबसे पहले तो हमारे धर्मेंद्र जी के साथ साथ ये सबलू जी हमें कुछ बता रहे हैं कि हाँ भाई, अगर कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण जी की माँ देवकी, पिता वासुदेव, उनकी नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स यशोदा, पालक माँ जिन्हें कहा जाता है, और नंद बाबा जिन्हें पालक पिता कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की ही धरती पे उनका जन्म हुआ। एक मारीमान मंदिर है जो सिंगापुर में श्री कृष्ण प्रतिमा से संबंधित है, श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड है, ये इस्कॉन टेंपल वाले श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें बताई, चलिए इनका इनकी जो लिखी बातें हैं उसको पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी के 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के पुत्र द्वारा वो मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी बहन और उसके पति को कारागार में मथुरा के डाल देता है, और जैसे ही उनके पुत्र पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनको मारता जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता बने। अगर कृष्ण की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि कृष्ण ने अपने जन्म के बाद ही चमत्कार करना शुरू कर दिया था। जैसे राक्षसी पूतना, उस समय तो बहुत नन्हे कह सकते हैं कि एकदम बाल गोपाल के रूप में थे, उसका वध किया। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। इंद्र का अहंकार जो है उसको खत्म किया। कृष्ण ने अपनी लीलाओं से हर किसी को विस्मय में डाल दिया था, चाहे वो उनका परम मित्र, उनका दोस्त सुदामा क्यों ना हो। सुदामा की बात करूँ तो सुदामा बड़े मतलब स्वाभिमानी टाइप के थे, और उन्होंने अपना दुख नहीं बताया, पर कृष्ण ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आसानी से समझ लिया था कि कृष्ण क्या हैं। फिलहाल सबसे पहले तो कुछ खास लीलाओं की बात करते हैं, और उसमें सबसे खास है रासलीला। कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे। अब बहुत सारे लोगों को रासलीला नहीं पता क्या होता है, और इसकी जो कहते हैं ना गरिमा क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, तो आज उसे मैं बताती हूँ आपको। तो समझिए, रासलीला श्री कृष्ण के वृंदावन से जुड़ी एक भक्ति लीला होती है। धार्मिक परंपरा में श्री कृष्ण और
गोपियों के बीच ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति आत्मसमर्पण के प्रतीक रूप में इसको समझा जा सकता है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, उस मधुर स्वर से आकर्षित होकर गोपियाँ उनके पास पहुँची और फिर गान और नृत्य होने लगा, इसी को रासलीला कहा गया। तो अभी मुझे लगता है आप सभी समझ पाए होंगे कि क्या है मतलब रासलीला। अगली लीला है उनकी माखन चोरी की। भाई माखन चुरा चुरा के वो गोकुल की गलियों में खाते थे और सखियों को अपने सखाओं को भी खिलाते थे और गोपियों को परेशान भी करते थे। और मैया यशोदा जो हैं वो हमेशा अपने ललना को बचाने की कोशिश करती, कभी कभी डांटती भी थी, लेकिन वो इतना डांटती थी कि बस दूसरे ही पल बहुत सारा स्नेह। कालिया नाग की बात करें तो यमुना में एक विशाला नाग रहता था जिसका नाम था कालिया नाग, और गोकुलवासी उससे परेशान थे। श्री कृष्ण ने यमुना में उतरकर उसका जो दर्प था उसे तोड़ दिया और उसे उसके जो लोक है उसे जाने के लिए बोल दिया। कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां कान्हा है, जहां भक्ति है वहां कान्हा है, मुरली की मधुर तान में हर भक्त के अरमान में आज बसते हैं नंदलाला, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और सबसे बड़ा प्रेम का जो कहते हैं ना कि उदाहरण दिया उन्होंने, अपना और राधा का। आप सभी को पता है कि राधा जी को श्राप मिला था, चलिए उस श्राप की भी बात करते हैं और समझ के बताइएगा कि अगर किसी ने कोई श्राप या कोई भी चीज़ दी, वो भगवान थे, वो तो चाहते कि सामने वाले को एकदम नष्ट कर देते, तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं कि वो श्राप क्या था। एक श्री रामा नाम के भगवान के यानी कि प्रभु के भक्त थे, उन्हें ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधा से क्यों इतना प्रेम करते हैं, और वो प्रभु हैं हमारे, वो राधा को क्यों इतना प्रेम करते हैं। और इसी क्रोध में आके उन्होंने राधा जी को श्राप दे दिया और पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए कहा, और ये श्राप दिया कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण से कुछ समय के लिए वियोग सहना पड़ेगा। पर वो सिर्फ वियोग था, आज भी राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। भले राधा ने कृष्ण से विवाह नहीं किया, परंतु राधा ने श्री कृष्ण को पा लिया, अपने प्रेम में बसा लिया। तो चलिए आगे बात करते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को समझना और कितना आसान होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और सवाल का वैसे जवाब दिया किसने मुझे तो पता ही नहीं चला अभी, किसी ने आंसर दिया भी कि नहीं, कॉल पे भी अभी आंसर मुझे मिला नहीं। लेकिन गुड इवनिंग जुगल किशोर जी, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आंसर देने वाला कोई दिखा नहीं, बहुत सारी चीज़ें सबलू जी बता रहे हैं, और मैं चाहूँगी लिसनर्स जो चैट रूम में हैं वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो अगर आपने, वैसे तो श्री कृष्ण जी को हर किसी ने बहुत अच्छे से जाना है और जितना जानो उतना कम है, ये बात भी सही है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और इस गाने के साथ इस शाम को और भक्तिमय बनाते हैं।

0: प्रेम मधुर। अब इस मधुरम शाम में एक मधुर आवाज़ सुनने की भी बारी है। चलिए सुनते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइव है। हेलो, गुड इवनिंग।
1: राधे राधे मैम।
0: राधे राधे सबलू जी, स्वागत है आपका। और जैसा कि आप काफ़ी देर से काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी हम सभी को दे रहे हैं, आज जन्माष्टमी का पर्व है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है हमारे देश में। और हर घर में छोटा बच्चा अगर किसी के है तो वो राधा या कृष्ण ज़रूर बनता है, और हर किसी के वो अपने घर में ईश्वर दिखता है। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं? वैसे
1: सुनाएंगे, लेकिन हम तो अपने गांव के, अभी गांव में ही ठहर पाए हैं क्योंकि कल मेरी जो वाइफ है उनको ऑपरेशन होकर कल 7:47 में मुझे एक लड़का हुआ है।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपने इतनी बड़ी,
1: तो हम 3 दिन तो हॉस्पिटल में ही है मैम।
0: अच्छा, आपने लिखा कल शाम 7:45 पे कन्हैया का आगमन भइलबा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि लग रहा है कि भादो की जो अष्टमी तिथि कल से तो नहीं शुरू हो गई। क्या बात है, मतलब आपके घर तो साक्षात श्री कृष्णा का जन्म हो गया है। आपको तो बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कहने।
1: नहीं तो हम तो कल परसों टिकट बना हुआ था, उसको कैंसिल किया गया। नहीं तो आज तो हम मुंबई में रहते तो वहाँ पे बहुत सारी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि देखते हैं हम लोग वहाँ पे घारा प्रणाम को बेहद पसंद है कि
0: दही हांडी।
1: जी जी, वहाँ पे होता है कि एक दूसरे को चढ़ाव बनाकर, और घारा को करना बहुत कलाकारी हमको वो सबसे बेस्ट लगता है।
0: और मतलब यहाँ तो मैंने एक बार, मतलब गोंडा में तो पिछले साल मैंने देखा चौक में इन्होंने बांधा हुआ था, और मतलब इतना ऊंचा बांध दिया था कि आप समझ ले रात के 3 बज गए थे। यहाँ पे मतलब दिन में नहीं फोड़ा जाता है, रात में वही जन्म के बाद ये जो दही हांडी है फोड़ दी जाती है गोंडा शहर में। तो रात के 3 बज गए थे पर वो फूटा नहीं।
1: तो दिन नहीं आज छोड़ा गया है, लेकिन वहाँ पे होता है क्या कि प्रोग्राम होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टार लोग भी आते हैं उसे देखने के लिए।
0: हाँ, बहुत मजेदार होता है, बहुत मजेदार, मजा आ जाता है। मतलब पूरे त्योहार की एनर्जी वहाँ पे दिखती है।
1: जी जी जी, और हम लोग का इधर गांव में देख रहे हैं मठ में क्या बोलते हैं जागरूक होता है ना
0: जी,
1: वो जागरूक होकर पता नहीं हम लोग 12 बजे तक कैसे जाग पाएंगे। 12 बजे के बाद ही हम लोग का प्रसादी मिलता है, जो हलवा होता है ना, हलवा उसको घी में डालकर बहुत अच्छा बेस्ट बनता है। जब हम बच्चा थे तो काफी खाया करते थे।
0: कभी मौका मिले तो हम लोग को भी जरूर खिलाइएगा। फिलहाल तो आपको मिठाई खिलानी चाहिए, आपके घर साक्षात भगवान कृष्ण आ गए हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब आपका हम क्या बोलते हैं, जब हम आपके यहाँ उपस्थित होंगे तो पूरा कर देंगे आप।
0: हाँ बिल्कुल, तो फिलहाल तो अभी आप बिल्कुल अपने मतलब वाइफ को और अपने जो लाल गोपाल हैं उनका ध्यान रखें, और जो भी आप खुशी से सुनाना चाहते हैं बिल्कुल सुनाइए। और लिसनर्स को बताऊं, भाई सबलू जी को बहुत सारी बधाइयां दीजिए। लिखते लिखते देखिए हमें मतलब इतना बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं और हमें पता भी नहीं चला चैट रूम में। स्वागत।
1: नहीं नहीं, कल तो हम भी मिस्टेक कर गए थे ना, भोजपुरी प्रोग्राम था जिसमें हम बताना ही मिस्टेक कर गए, वो क्या बोलते हैं सिंपल मैम जी को बताए थे हम।
0: क्या बात है, स्वागत है। चलिए क्या सुनाइएगा?
1: कन्हैया जी के ही ऊपर लाइन है।
0: हाँ स्वागत है।
1: करे मेरे कन्हैया मुझसे प्यार करे, करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, दुनिया तो चाहे बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, दुनिया देती है मुझको ताना, श्याम सुने ना कोई बहाना, हर मुश्किल में आसान करे, मेरा है कन्हैया मुझसे प्यार करे, दुनिया तो चाहे बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, यमुना किनारे धेनु चरावे, मथुर मधुर मुरलिया जब तू बजावे, शुद्ध बुद्ध अपनी सब हर लहर लेवे, दर्शन देकर भक्तन को सतावे, करे मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। और एक छोटा सा गीत भी है मैम।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: थोड़ी सी एक सेकेंड। इन्हीं नैनों ने, इन्हीं नैनों ने, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा, हमरी ना मानो यशोदा माँ से ना पूछो, जिनके आंचल में छुपा हो कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा। हमरी ना मानो तो गवालों से पूछो, जिन टोली में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मोरा। हमरी ना मानो तो मीरा से पूछो, जिसे गीतों में छुपा हो कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा है कन्हैया मेरा। हमरी ना मानो दुपहर, हमरी ना मानो तो भक्तों से पूछो, जिनकी भक्ति में छुपा हो कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में बस छुपा है कन्हैया मेरा। जी बिल्कुल,
0: क्या बात है, क्या बात है। और यहीं छुपा है कन्हैया आपका, और क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने शाम को एकदम बिल्कुल खुश कर दिया। पहले तो कन्हैया का आगमन बता दिया, फिर एक कविता सुना दी और अपनी मुंबई की याद सुना दी। क्या बात है। और फिर
1: जो एक मोबाइल में जो होता है ना, आपसे जुड़ना एक समस्या भी बन जाती है, जैसे कि अब ऑन एयर बोलना, जो हमारे पास इंश्योरेंस है, हम तो आरजे का भी काम किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर वहाँ से जो बोलते हैं ना, वहाँ बोलने का इंश्योरेंस, और मोबाइल से इतना करना, सबकी बस की बात नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबलू जी, ऐसे ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में खुशियों का अनुभव करते रहिए कन्हैया की कृपा से। क्या बात है। तो चलिए, सबलू जी को बहुत सारी बधाइयां दे दी हम लोगों ने। और अब भाई अगला गाना सुनने की बारी है। भाई सबसे पहले तो मतलब गोविंदा आला रे आला जरा, हाँ हाँ मटकी संभाल ब्रजबाला। तो ये गाना सुनना तो बनता है। और दही हांडी का जो इसमें जो प्रोग्राम होता है ना, कई कई जगह षष्ठी के दिन होता है, कई कई जगह आज ही के दिन मनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ शहर में देखा है आज ही की रात मनाते हैं, लेकिन होता बड़ा धमाल से है भाई, मज़ा आ जाता है। तो चलिए हम लोग भी एंजॉय करते हैं इस एनर्जी को। और अगर आपको मिलता है मौका दही हांडी फोड़ने का, तो भाई आपको पुरस्कार भी मिलता है अच्छा खासा, 10,000, 12,000, 15,000 मतलब कैश भी मिलते हैं। तो बिल्कुल दमदार तरीके से ये जिम वाले लड़के जितना भी चाहें अपना मतलब कहते हैं ना एनर्जी लगा के दही हांडी फोड़ ही दें अगर आपकी कॉलोनी में तोड़ी जाती है। तो गो गो गो गोविंदा।

चलो ब्रिजबाला से मटकी संभलवा देंगे, लेकिन चलते चलते थोड़ा सा ब्रिजबाला की थोड़ी तारीफ भी कर दें। और ब्रिजबाला की अगर बात करें तो ब्रिजबाला की तारीफ में लोग अक्सर ये कहते हैं कि राधा हमारी गोरी गोरी, राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया मेरो का

जगते उजी हरो ये राधा जी को प्यारो है। हाय राधा हमारी गोरी गोरी ए नवल किशोरी कन्हैया मेरा कारो है। हाँ राधा हमारी शर्मीली है।

तो भाई राधा की तारीफ कर दी, कृष्णा की तारीफ कर दी, अब दोनों की ज्योति को अलौकिक करते हुए शाम को और उजाले में जगमगा देंगे। और आप सब भी भाई मुझे पता है आज खूब तैयारी में लगे हैं, जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं एंड बहुत हाई एनर्जी भी होती है। 12 बजे तक मतलब जागना ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल सी चीज़ तो है, आराम से हम लोग जग लेते हैं। कब 1-2 बज जाता पता ही नहीं चलता। लास्ट टाइम तो मुझे लगता है मैं 3-3.30 बजे सोई होंगी, वो मैं दही हांडी वाला फेस्टिवल भी देख रही थी। एंड रियली बता रही हूँ कि मतलब लग रहा था कि यार दिन और चढ़ ही रहा है, अभी तो मतलब रात ही नहीं हुई है। तो ये होती है ऊर्जा फेस्टिवल्स की, और इस ऊर्जा को हम लोग आगे बरकरार रखेंगे और ऐसे इंजॉय करते रहेंगे। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं और करते हैं बहुत सारी बातें। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसको सुनते ही यार मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल हमेशा से भर जाता है वाइब के साथ। तो आज की शाम ये आखिरी सॉन्ग आरजे बीना की तरफ से, राधा कृष्ण की कृपा आप सब पे बरसती रहे, इनकी ज्योति आपके जीवन में उजाला करती रहे। और 89.6 FM की तरफ से ये ज्योति आपके घर पहुँच रही है संगीत के रूप में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे थे कुछ बेहतर। तो डेफिनेटली आरजे बीना के साथ अपना फेवरेट शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला सुन रहे थे। फिल्में देखते रहिए, बॉलीवुड या टॉक्स करते रहेंगे हर शुक्रवार आपके साथ।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

कृष्णा, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत सी ढलती शाम में आपके अपने पसंदीदा शो गीत आपके नाम से में फरमाइशे में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, जहां हवाओं में घुली है माखन की मीठी मीठी मिठास। ओ माय गॉड, और हवा का झोंका गा रहा है कान्हा की मुरली की धुन सिर्फ और सिर्फ हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सो आज का ये सफर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि गली गली में मटकी फोड़ की धूम है, मंदिरों में बधाई गीतों की गूंज है, और हर दिल में बसे हैं हमारे नटखट नंदलाल। तो अपने चेहरे पर लाइए एक प्यारी सी मुस्कान और घर के कामों को दीजिए थोड़ा सा विराम, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक हम और आप मिलकर मनाने वाले हैं यशोदा के लाल का जन्मोत्सव। चलिए इस सुहानी शाम की शुरुआत करते हैं हमारे हमारे हमारे फरमाइशी गीतों से। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, अब किसका है इंतजार, मैं हूं ना। फटाफट से अपनी फरमाइशी गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। ओह माय गॉड। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेलकम इन योर शो जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सबलू सावंत मुंबई से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, महेंद्र दीपेन राजस्थान से, श्याम नाम की पगड़ी मीन्स सुमित्रा जी जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सबलू सावंत मुंबई से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा आपका भी स्वागत है, और इसी के साथ में निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सो नाउ लेट्स गो टू पहले वाले फरमाइश की तरफ। और दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, और जग्गू दादा को सुनना है गाना हे रे कन्हैया। तो किशोर कुमार जी की आवाज में इंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारे हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की इन इस बकबक को, लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हमने एंजॉय किया है जग्गू दादा की फरमाइश पर ये वाला गाना। और बात जब कान्हा की हो तो उनकी नटखट बाल लीलाएं और मटकी से माखन चुराना अपने आप याद आ जाता है ना दोस्तों। वैसे मक्खन किस किस को पसंद है, माखन किस किस को पसंद है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आपके घर में कान्हा के स्वागत की तैयारियां कैसी चल रही है ये भी आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आपके घर के नन्हे गोपाला ने आज क्या शैतानी की है आप ये भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, और सबलू सावंत को बोरीवली मुंबई से सुनना है गाना श्याम चूड़ी बेचने आया। सो एंजॉय करते हैं जन्माष्टमी स्पेशल वाले ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लेकिन इस बार सबलू सावंत की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा से।

चूड़ी बेचने आया। हमने एंजॉय किया है एक और जन्माष्टमी स्पेशल वाला गाना, लेकिन इस बार सबलू सावंत की फरमाइश पर जो कि है मुंबई से। इसी के साथ में उनका कुछ कहना भी है, क्या कहना है ये भी सुन लीजिएगा। सबलू सावंत का मुंबई से कहना है कि गोकुल की गलियों में गूंजे मुरली की मीठी सीताएं, माखन चुरा कर खाने वाला सबका है प्यारा कन्हैया महान, यशोदा मैया का दुलारा और नंद बाबा की आंख का तारा, रंग रूप है सांवला सलोना जग से न्यारा रूप हमारा, मटके फोड़ गैया चरावे गोपियों संग रास रचावे, काली नाग नाथिया यमुना पर सबको प्रेम पाठ सिखावे, ग्वाल बाल संखेलन लागे पल में सारे संकट भागे, देख यशोदा मुख में जिसके ब्रह्मांड के सारे नजारे जागे। ओ माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन सी लाइंस थी सारी की सारी। अब इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला है जू जू जू जू जू। ओहो, सलता जी की आवाज में इंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा संजोग पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स कोंडा से दिल से आपका स्वागत है, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

तेरे लिए कैसे कैसे सपने सजाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिल मिलाए। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा संजोग पिक्चर का, हमारी आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, और उनको सुनना है गाना तुम पर हम है अटके यारा दिल भी मारे झटके। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सलमान खान का ये सुपर डुपर डुपर हिट गाना सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सोनिया तिवारी, आपका स्वागत है। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका भी स्वागत है, और धर्मेश त्रिपाठी स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। इनका कहना है कि मुरली की धुन से सजे है हर पल आपका, मुरली की धुन से सजे हर पल आपका, कान्हा की कृपा से महके हर कल आपका, खुशियों से भरी रहे आपकी हर कहानी। आर जे सिंपल जी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं इस धर्मेश की जुबानी। ओ थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट। राधे राधे एवरीवन, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी को सुनना है गाना, कान्हा जी का जन्मदिन वाला भजन वाला स्पेशल वाला सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं इतना ज्यादा स्पेशल वाला सॉन्ग एक ही साथ में, सिर्फ और सिर्फ श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

एक तो सब जगह कटेगा क्यों, पूरे इंडिया में कटेगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश थी श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, और मालवे नगर गोंडा से मोहित को सुनना है गाना खुल गए सारे ताले। सो एंजॉय करते हैं लखबीर सिंह लखा की आवाज में कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल ये वाला गाना मोहित की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो शमा लखनऊ से आपका स्वागत।

करामात हो गई लखबीर सिंह लखा की आवाज में मोहित की फरमाइश पर। मोहित जो कि है मालवीय नगर गोंडा से, इनकी फरमाइश पर हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन सा नगमा जन्माष्टमी स्पेशल वाला। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। ओ माय गॉड, ओहो मेरा फेवरेट गाना। एंट्री किया था इसके साथ लेकिन कोई बात नहीं, वंस मोर। सो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, हैप्पी जन्माष्टमी।

हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अंबर गोयल जी आपका स्वागत है, नाजिया अंसारी, स्टे ट्यून, वेलकम इन योर शो। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है केके गुप्ता की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से केके गुप्ता जी को सुनना है गाना अरे रे मेरी जान है राधा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, बचपन से पचपन तक चलने वाला नगमा और जन्माष्टमी स्पेशल वाला गाना। राधे राधे एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड।

था, हमने एंजॉय किया जन्माष्टमी स्पेशल वाला ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से, और उनको सुनना है गाना मैया यशोदा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम साथ साथ हैं पिक्चर का, हमारी प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर जो की है बहराइच से। स्टे ट्यून्ड। आवाज है अलका याग्निक अनुराग।

बहुत ही खूबसूरत सनंग में प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर जो की है बहरा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और उनको सुनना है गाना श्याम बंसी बजाते हो क्या मुझे बुलाते हो। सो एंजॉय करते हैं जन्माष्टमी स्पेशल वाला एक बार फिर से सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नंग वाले, लेकिन इस बार निशा की फरमाइश पर।

जाते हो या मुझे बुलाते हो, हमने एंजॉय किया है। गाना निशा की फरमाइश पे, जो कि है पटेल नगर गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों संतोष कुमार की गिलौली से, उनको सुनना है गाना छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा जन्माष्टमी प्लेलिस्ट से नगमा। इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा जन्माष्टमी वाला नगमा, और हैप्पी जन्माष्टमी वंस

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026। ब्रिक्स समिट 2026 इज बीइंग होस्टेड इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, फ्रॉम 12th to 13th September 2026 अंडर India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
7: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
8: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
7: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धारडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट newsonair.gov.in और हमारी newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के तीन बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत तीन लोगों को हिरासत में लिया।
11: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
12: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
13: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने परमाइशी प्रोग्राम में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉन से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, माहौल की इस धमाकेदार ऊर्जा के बाद में चलिए थोड़ा ठहरते हैं थोड़ा सा, और महसूस करते हैं इस पावन शाम की इस रूहानी सी ठंडक को, क्योंकि कान्हा का जिक्र राधा रानी के नाम के बिना अधूरा है। वृंदावन की उन गलियों में जो निश्चल प्रेम और समर्पण है, वही तो इस त्योहार की असली पहचान है।

मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो हिलक जाएगी। स्टेडियम और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ।

फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सविता दुबे जी की, और उनको भी सुनना है जन्माष्टमी स्पेशल वाला गाना। सो एंजॉय करते हैं राधा कैसे न जले, जिस गाने के बिना शायद जन्माष्टमी स्पेशल प्लेलिस्ट अधूरी है ना। सो एंजॉय करते हैं आशा जी की और उदित नारायण जी की आवाज़ में लगान पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। हैप्पी जन्माष्टमी।

ये तो फरमाइश थी सविता दुबे जी की। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की गोंडा से, और सबीहा को सुनना है गाना। म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, सो एंजॉय करते हैं ये डीजे पार्टी वाला गाना राधा नाचेगी। तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर बॉलीवुड तड़के के साथ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी।

धन आचेगी। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना सबीहा की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवम सिंह की, और शिवम सिंह को सुनना है गाना गो गो गो गोविंदा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रभु देवा का गाना जन्माष्टमी स्पेशल वाली प्लेलिस्ट से, सिर्फ और सिर्फ शिवम सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं अपने अगले और अगली फरमाइशी गीत के लिए? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अगली और आखिरी फरमाइश है प्रेम रतन धन पायो गाने की, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई है सुमित्रा जी की तरफ से, जो कि हैं लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना प्रेम रतन धन पायो। तो इन्जॉय करते हैं ये गाना, और इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मैं बज़्मे तसव्वुर में उसे लाए हुए था, जो साथ ना आने की कसम खाए हुए था। हम दिन भर लोगों के बीच में रहते हैं, हजारों बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद के लिए वक्त मिलता है? आज की शब हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके तसव्वुर यानी कि कल्पनाओं की वो अंजुमन जिसे बरसों से आपने अपने दिल के किसी कोने में सजा रखा है। यहां हकीकत का दखल नहीं, सिर्फ ख्यालों की हुकूमत है। आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका आज के इस खास शो बहारे गजल में, आपके अपने आरजे अदनान। आज के इस शो का उन्वान है बज़्मे तसव्वुर, यानी कि ख्यालों की महफिल। इसी तसव्वुर को कुछ अनवर शऊर साहब अपनी गजल में इस तरह पिरोते हैं कि मैं बज़्मे तसव्वुर में उसे लाए हुए था, जो साथ ना आने की कसम खाए हुए था। दिल जुर्मे मोहब्बत से कभी रह न सका बाज, हालांकि बहुत बार सजा पाए हुए था। हम चाहते थे कोई सुन ले बात हमारी, ये शौक हमें घर से निकलवाए हुए था। होने न दिया खुद पे मुसल्लत उसे मैंने, जिस शख्स को जी जान से अपनाए हुए था।

और कई बार खुद भी ख्याल आता है कि ये तसव्वुर है क्या। तसव्वुर ना कारीगरी है, जहां हम अपनी यादों के धागों से उम्मीद की रेशम बुनते हैं। बज्म का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां अपने अजीज लोग इकट्ठा हों। और देखिए ना, इस महफिल में आपके अजीज आपके ख्याल हैं। इसी जगह हम हकीकत के उस नकाब को उतार देते हैं जो हमें दुनिया के लिए पहना हुआ है। यहां तो हम वो बनते हैं जो असल में होना चाहते हैं। एक साहब ने बड़ा ही खूब कहा था, वो तो तसव्वुर में भी आए तो महक उठे रूह, वो तो तसव्वुर में भी आए तो महक उठे रूह, सोचो अगर सामने होते तो क्या आलम होता। तसव्वुर की इसी कैफियत को सीमा शर्मा साहिबा अपनी इस खूबसूरत सी गजल में कुछ यूं पिरोती हैं कि लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता, सहरा में निकल जाता दरिया भी शराबों से, गर कल्पना को मेरी आकार मिला होता, पल भर की मोहब्बत में जा तक भी मैं दे देती, अफसोस नहीं होता गर प्यार मिला होता, होती ना महाभारत या कोई बगावत फिर, हकदार को जो उसका अधिकार मिला होता, अय्याश अमीरों के लड़के न बिगड़ते गर, औरत को न फिर कोई बाजार मिला होता, भूखे न भटकते फिर दिन रात परिंदे ये, जो इनको शजर कोई फलदार मिला होता। और लिखती हैं कि मैं नूर जहां होती उस दौर की ऐसी माँ, मैं नूर जहां होती उस दौर की ऐसी माँ, कर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता, कर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता।

नादानों कम निगाह रहा बेकमाल में, नादानों कम निगाह रहा बेकमाल में, किरदार से जिंदगी पे बना एक सवाल में। हर इंसान के अंदर एक फनकार छिपा होता है और उस फनकार की एक जगह चाहिए होती है जहां उसे कोई टोकने वाला ना हो। वही पनाहगाह है बज़्मे तसव्वुर। बेशक जब हकीकत की दीवारें हमें कैद करने लगती हैं, जब दुनिया की जिम्मेदारियां हमें थका देती हैं, तब हम तसव्वुर यानी इसी हुजरे कमरे की तरफ आते हैं। यहां हम हकीकत की सरहदों को लांघ कर अपनी तन्हाई में आजाद होते हैं और यहां न कोई सही होता है न कोई गलत। यहां से मिला सुकून हमें जिंदा रखता है और हम खुद को तैयार करते हैं अगली सुबह को सामना कर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981 9761 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: रात के इस मोड़ पर बज़्मे तसव्वुर और भी गहरी होने लगी है। एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है ना? आप जानते हैं कि हम इस महफिल में बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ वो सब कुछ मुमकिन है जो जिंदगी ने हमसे छीन लिया। यहाँ बिछड़े हुए यार मिलते हैं, यहाँ वो मोहब्बतें मुकम्मल होती हैं जो अधूरी रह गई, और तो और यहाँ के सपने पूरे होते हैं जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन करार दिया था। ये तसव्वुर ही तो है जो हमें एक नई उम्मीद देता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका दरवाजा सिर्फ आपके पास है। आइए ये खूबसूरत सी गजल आपको उसी तसव्वुर की दुनिया में ले जा रही है। गजल कुछ यूं है कि वो अदा फरेब महफिल, वो नजर बलाएं जा हैं, मुझे क्या यकीन आए कि वो मुझ पे मेहरबान हैं। कभी आंख से दिल तक, कभी दिल से जिगर तक, जो मिली है उस नजर से वो खलिश कहाँ कहाँ है। जो अधर में है बेकरारी, वही बेकली इधर है। ना सुकून दिल यहाँ है, ना सुकून दिल वहाँ है। तुझे बेरुखी मुबारक, मुझे गम पे गम दिए जा। मेरी हिम्मत सलामत, मेरा हौसला जवां है। मेरे होंठ सीने वाले, कभी तूने ये भी सोचा? वहाँ खामोशी से हासिल, जहाँ खामोशी जुबां है। हुए एक चमन में पैदा, मगर अपनी अपनी किस्मत। कोई खार बन के खटका, कोई हुस्न गुलिस्तां है। कोई बज़्म ये ना पूछे, ये मामला है दिल का, कि जहाँ कदम वो रख दे वो ज़मीं भी आसमां है। जहाँ कदम वो रख दे

इस बज़्म-ए तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, मिज़गाँ कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं। वैसे तो वक्त ने इशारा कर दिया है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन मुझे यकीन है बहारे गजल की ये महफिल आपके जहन में सजी रहेगी। जाने से पहले एक बात कि बज़्म-ए तसव्वुर को कभी वीरान मत होने दीजिएगा। चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, अपने ख्यालों की, अपनी इस बस्ती की दुनिया को आबाद रखिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी रूह खुल कर सांस लेती है। अपने तसव्वुर हमेशा जिंदा रखिएगा ताकि जिंदगी में अंधेरा महसूस ना हो। और जाकिर खान जाकिर साहब लिखते हैं कि इस बज़्म-ए तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, मिज़गां के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं, होंठों के दरीचों पर दिलदार की बातें हैं, पर्दा भी है पर्दे में दीदार की बातें हैं। इजहारे मोहब्बत का अंदाज निराला है, इनकार के लहजे में इकरार की बातें हैं। दिन रात तसव्वुर में तस्वीर तुम्हारी है, इस पार की दुनिया में उस पार की बातें हैं। यूं कैफ नुमाया है गजलों में मेरे जैसे, आफाक की वसअत में फनकार की बातें हैं। आंखों की मेरी पढ़कर साकी ने कहा हंसकर, ईफान जरा मुश्किल में ख्वार की बातें हैं। ये इश्क तुम्हें जाकिर किस मोड़ पे ले आया, जंजीर है पैरों में झनकार की बातें हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अगले हफ्ते इसी वक्त किसी नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन
1: नमस्कार श्रोतागण, मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेट नाइट हॉरर शो। रात जितनी गहरी होती है कहानियां भी उतनी सच्ची लगने लगती है। कुछ कहानियां डराती नहीं, बस धीरे धीरे आपके भीतर उतर जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। कश्मीर, जहाँ लोग कहते हैं कि हर चिनार का पेड़, हर झील, हर पहाड़ अपने भीतर किसी न किसी की याद संभाले बैठा है। लेकिन अगर किसी की याद वहीं रह जाए और इंसान लौट आए तो क्या होता है? आज की कहानी है चिनार गवाह है। आइए सफर शुरू करते हैं। पहाड़ी पर एक टैक्सी चल रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है जो शीशे से टकरा रही है और दूर कहीं कोई नदी बहने की आवाज आ रही है। ड्राइवर लगभग मध्यम आयु का है और अचानक ही बहुत सहज आवाज में कहता है, साहब बस 10 मिनट और आपका गांव आ जाएगा। आरव करीब 38 वर्ष का शांत लेकिन भीतर से थका हुआ इंसान है। वो कुछ नहीं बोलता। ड्राइवर ने फिर पूछा, पहली बार आ रहे हैं इधर? आरव ने कहा, नहीं, बहुत साल पहले आया था। अच्छा, तो साहब आप इस रास्ते को तो पहचानते होंगे? आरव ने कहा, रास्ते शायद बदल जाती है पर यादें नहीं। कुछ क्षण मौन रहता है, फिर ड्राइवर धीरे से कहता है, सही कहा आपने, यहाँ लोग कहते हैं पहाड़ सब याद रखता है। टैक्सी एक छोटे से गांव में रुकती है। इंजन बंद होता है। दूर से बच्चों की आवाजें आती है। कहीं लकड़ी काटने की धीमी ठक ठक आवाज भी आ रही है। हवा में घंटियों की बहुत हल्की हल्की झंकार सुनाई देती है। ड्राइवर ने कहा, लीजिए साहब आपका दरांग आ गया। आरव धीरे धीरे उतरता है, सूटकेस जमीन पे रखता है और कुछ पल वहीं खड़ा रहता है। 15 साल एक इंसान को बदलने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन कुछ जगह समय से समझौता नहीं करती। सामने वही पहाड़, वही नदी और गांव के किनारे खड़ा एक विशाल चिनार का पेड़। आरव की नजर उसी पर ठहर जाती है। उसकी सांस एक पल को जैसे रुक जाती है। हवा अचानक तेज हो जाती है और चिनार के सूखे पत्ते गिरने लगते हैं। आरव धीरे धीरे चिनार से ही बात करने लगता है। नदी के उस पार चिनार के पेड़, तुम अब भी यहीं हो? तभी पीछे से किसी के कदम की आवाज आती है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग अत्यंत स्नेहिल आवाज में कहते हैं, आरव। आरव चौंकता है, अरे यूसुफ चाचा। यूसुफ चाचा हंसते हुए कहते हैं, पहचाना तो सही, मुझे लगा था अब शहर में रहते हो तो हम गांव वालों को कहाँ पहचानोगे। आरव ने बोला, यूसुफ चाचा आप तो बिल्कुल नहीं बदले। यूसुफ ने कहा, अरे उम्र बदल देती है बेटा, मगर कुछ इंतजार कभी नहीं बदलते। दोनों धीरे धीरे कच्ची पगडंडी पर चलने लगते हैं। यूसुफ ने पूछा, शहर में कैसे हो? आरव ने कहा, मत पूछिए चाचा, काम बस काम। और दिल, आरव धीरे से कहता है, दिल तो चाचा यहीं कहीं छूट गया था। यूसुफ चाचा उसकी ओर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। कभी कभी सबसे बड़े सवाल चुप्पी पूछती है। यूसुफ ने कहा, घर खुलवा दिया है, साफ भी करवा दिया, कोई दिक्कत हो तो बता देना। आरव ने बोला, धन्यवाद चाचा। कमरे में हल्की सी नमी थी, पुरानी लकड़ी, पुरानी किताबें और खिड़की से दिखता नदी के उस पार वही चिनार। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। कमरे में बिल्कुल अकेलापन है। मेज पे रखा एक बैग है, जिसको आरव खोलने की कोशिश करता है, और तभी उसमें से एक पुरानी डायरी नीचे गिरती है। आरव उसे उठाता है, कुछ पल बस उसे देखता रहता है, जैसे उसे खोलने से कोई पुराना दरवाजा भी खुल जाए। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर कभी लौटो तो चिनार के पास नदी के उस पार जरूर जाना। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर लिया। अचानक बाहर की हवा और तेज हो जाती है और खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। आरव चौंक कर खिड़की की ओर देखता है। बाहर चिनार के नीचे उसे एक आकृति खड़ी दिखाई देती है, सफेद फिरन पहने, स्थिर, बिल्कुल बिना हिले। आरव एक कदम आगे बढ़ता है, धीमे से पूछता है, कौन? अगले ही पल हवा फिर से चलती है, पत्तों का एक घना गुबार उठता है, और जब साफ होता है वहाँ कोई नहीं था। आरव की सांसें तेज हो जाती है। क्या उसने सचमुच किसी को देखा था, या 15 साल पुरानी कोई याद आज पहली बार उसका इंतजार पूरा कर रही थी? श्रोतागण, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: प्यारे श्रोतागण, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो का अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो। श्रोतागण, कभी कभी डर उस चीज से नहीं लगता जो हमारे सामने खड़ी होती है, डर उस चीज से लगता है जो हमारे भीतर बरसों से चुपचाप खड़ी रहती है। आइए लौटते हैं आरव की उस रात में, जिसने अभी अभी उसकी पुरानी यादों का दरवाजा खटखटाया है। रात गहरी हो चुकी है, घड़ी में टिक टिक टिक टिक की आवाज आ रही है, बाहर हवा लगातार बह रही है। आरव कई मिनट तक खिड़की के पास खड़ा रहता है। वो बार बार उसी जगह को देखता है जहाँ कुछ क्षण पहले उसने सफेद फिरन में किसी लड़की को देखा था। अब वहाँ सिर्फ चिनार था और उसके नीचे गिरे हुए पत्तों की मोटी परत दूर से दिखाई दे रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। आरव ने कहा, हेलो। निशा ने उस तरफ से पूछा, पहुंच गए? आरव ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ निशा, अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। निशा ने कहा, कैसा लग रहा है इतने साल बाद उसी गांव में वापस आना? आसान तो नहीं होगा। आरव कहता है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं बदलती और शायद यही सबसे मुश्किल बात है। निशा फिर पूछती है, आरव, क्या तुमको यकीन है तुम्हें यहाँ आना चाहिए था? आरव कहता है, निशा, अगर इस बार भी नहीं आता तो शायद कभी नहीं आ पाता और जिंदगी भर तड़पता रहता, जिंदगी भर पछताता रहता। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे दोनों एक ही नाम लेने से बच रहे हो। निशा ने फिर धीरे से कहा, आरव, अगर कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज वापस लौट आना, सिर्फ एक अधूरी बात के लिए, पूरी जिंदगी के लिए रुक मत जाना। आरव बहुत धीरे से जवाब देता है, कुछ बातें पूरी जिंदगी रोक देती है निशा। कॉल समाप्त होता है, कमरे में फिर वही सन्नाटा। आरव ने फोन बंद कर दिया। उसकी नजर फिर उसी डायरी पर चली गई। इस बार उसने डायरी खोला, पहले कई पन्ने बिल्कुल खाली थे और फिर एक तारीख लिखी थी, 18 अक्टूबर। बस साल नहीं लिखा था, उसके नीचे कुछ पंक्तियां थी, आज फिर हम चिनार के पास बैठे। उसने कहा, अगर कभी मैं तुमसे पहले चली गई तो मुझे ढूंढते मत आना, मैं यहीं रह जाऊंगी। आरव ने पन्ना बंद कर दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर सूखे पत्ते पर किसी के कदम पड़ने की आवाज आने लगी। आरव ने सांस रोक लिया, कदम धीरे धीरे खिड़की के पास नीचे आकर रुक जाते हैं। फिर बहुत धीमी आवाज, जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर सिर्फ एक शब्द कह रहा है, आरव, आरव, आरव। आरव झटके से खिड़की खोल देता है। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चिनार के पत्ते जो हवा में गोल गोल घूम रहे थे। अचानक उसकी नजर नीचे गई, नीचे गीली मिट्टी पर जूते के निशान थे, एक जोड़ी जो सीधे खिड़की तक आए थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। आरव कुछ देर उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बाहर आया। रात हो चुकी थी, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो चिनार की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। नदी के पास पहुँच करके वो रुक गया। वहीं जहाँ वो कभी घंटों बैठा रहता था, वो चिनार का पेड़ आज भी नदी के उस पार उसको बुला रहा था। उसी समय पीछे से किसी ने पुकारा, साहब। आरा मुड़ा, एक लगभग 12-13 साल का लड़का हाथ में लांटेन लिए खड़ा था। लड़के ने पूछा, आप पुराने वाले घर में ठहरे हैं ना? आरव ने कहा, हाँ, क्यों? लड़का बोला, दादाजी ने कहा है रात को इस नदी के पास ज्यादा देर मत रुकिएगा। आरव ने मुस्कुरा के पूछा, क्यों, यहाँ क्या है? लड़का कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कुछ नहीं है, मगर जो लोग कुछ देर तक खड़े रहते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। ये कहके लड़का मुड़ा और अंधेरे में धीरे धीरे चला गया। आरव वहीं खड़ा उस विशाल चिनार को देखने लगा। हवा अब बिल्कुल थम चुकी थी। इतनी ज्यादा शांति कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे। और तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर बहुत पुरानी धुंधली सी नक्काशी थी। शायद वो दो नाम जो उन्होंने उस पे लिखे थे वो अब भी थे, लेकिन दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव के होंठ कांपने लगे। उसने उस नाम को छूना चाहा, लेकिन उसी क्षण किसी ने बहुत धीरे से कहा, आरव, इतनी देर लगा दी लौटने में। अचानक हवा फिर से तेज हो जाती है। चिनार के सैकड़ों पत्ते एक साथ उड़ते हैं और फिर पूरा अंधेरा। प्यारे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो पे अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो, और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। प्यारे दोस्तों, कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं ले जाते, वे हमें हमारे अपने सच तक ले जाते हैं। आज आरब भी ऐसे ही एक रास्ते पे है, जहाँ लौटना शायद वापस आना नहीं, बल्कि अपने आप से मिलना है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, आकाश अभी पूरी तरह खुला नहीं था। पहाड़ की चोटियों पर धुंध ऐसे ठहरी थी मानो रात अभी जाने को तैयार नहीं है। आरव धीरे धीरे चिनार के उस पार जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। उसके पीछे यूसुफ चाचा बहुत दूर तक आए, फिर वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, आरव, अगर वहाँ कुछ मिले तो उससे सवाल मत पूछना, बस सुनना। कभी कभी जवाब बोलने वाले के पास नहीं, सुनने वाले के पास होते हैं। आरव ने हल्के से सर झुकाया और आगे बढ़ गया। हर कदम जैसे 15 साल पीछे लौट रहा था। उसे याद आया, मीरा इसी पुल पर हमेशा रुक जाती थी। उसकी याद करके वो धीरे से हंसा। मीरा कहती थी, आरव, अगर ये पुल टूट गया तो? आरव कहता था, तो मैं पहले गिरूंगा मीरा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा हंसते हुए कहती थी, झूठे, तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। आरव पुल के बीचों बीच रुक गया। उसने रेलिंग को छुआ, उसी जगह जहां कभी मीरा ने चाकू की नोक से दो अक्षर उकेरे थे, आ और माँ। समय ने उन्हें लगभग मिटा दिया था, लेकिन उंगलियां अब भी उसे पहचान रही थी। पुल पार करते ही जंगल खुल गया, बीच में एक छोटा सा घास का मैदान, और उसके केंद्र में था एक विशाल चिनार का पेड़। उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा होगी, लेकिन आज पहली बार आरव को लगा जैसे ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक गवाह है। इतनी खामोशी कि नदी की हर लहर अलग अलग सुनाई दे रही थी। आरव धीरे से पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने हाथ तने पर रखा। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, बहुत हल्की, मानो पेड़ सांस ले रहा हो। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली। आरव ने टूटती हुई आवाज में कहा, मीरा, अगर तुम कहीं भी हो तो आज पहली बार मैं सच बोलने आया हूँ। आरव ने कहा, सबको लगता है मैं शहर इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी, और इसीलिए मैं कभी वापस नहीं आया, लेकिन सच और कुछ था। मैं डर गया था, तुम शादी करना चाहती थी और मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। मैंने कहा, बस 1 साल फिर लौट आऊंगा, पर साल बीतते चले गए और मैं काम में उलझता चला गया। मैंने फिर एक भी खत नहीं लिखा, एक भी फोन नहीं किया, क्योंकि हर दिन मुझे लगता था अगर मैं लौटूंगा तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखूंगा। आरव की आवाज भरा गई, और फिर मीरा एक दिन वो दर्द भरी खबर आई कि तुम नहीं रही। उस दिन से मैंने हर रात अपने आप को यही सजा दी कि अगर मैं वहाँ गया होता तो शायद तुम जिंदा होती। आरव ने सिर झुका लिया, उसके आंसू गीली मिट्टी पर गिर रहे थे। तभी बहुत हल्की सी पायल की आवाज आई। आरव की सांसें रुक गई, उसने सिर उठाया। सामने कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ की दूसरी ओर बहुत दूर सफेद फेरन का एक कोना हवा में लहराकर ओझल हो गया। आरव बिना सोचे उस ओर दौड़ा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घास पे रखी एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। बिल्कुल पुरानी थी, उसके किनारे घिसे हुए थे। वो झुककर उसको उठाता है, धीरे धीरे खोलता है। अंदर एक सूखा नीला जंगली फूल रखा था। उसके नीचे मुड़ा हुआ एक कागज, इतना पुराना कि छूते ही टूटने लगे। आरव कांपते हाथों से उसे खोलता है। पहचानते ही उसकी सांसें अटक जाती है। वो मीरा की लिखावट थी, लेकिन ये डायरी का पन्ना नहीं था। ये वो खत था जो शायद कभी उसने भेजा ही नहीं। आरव ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मीरा ने लिखा था, आरव अगर ये खत कभी तुम्हें मिले तो इसका मतलब तुम लौट आए। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। शिकायत इंतजार से बहुत छोटी होती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। लोग कहते हैं तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम खुद से भागे हो। आरव की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। पत्र की आखिरी पंक्ति तक पहुँचते ही पहले उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि एक एहसास हो चुका था कि 15 वर्षों से वो जिस सच से डर रहा था वो अब उसके सामने आने वाला है। श्रोतागण जल्दी मिलेंगे इस कहानी के क्लाइमेक्स में, मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। आरव पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ने लगा। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो एक बात अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देना। मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हें विदा कर चुकी थी। मैं जानती थी तुम चले गए हो। मैं रोज नदी के किनारे इसलिए आती थी क्योंकि मुझे अकेले बैठकर रोना होता था। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी को मुस्कुरा के विदा करना बहुत मुश्किल होता है। आरव के हाथ कांपते, उसने जल्दी जल्दी अगली पंक्तियां पढ़नी शुरू करी। मेरे साथ जो हुआ आरव, वो हादसा था, न तुम्हारी गलती न मेरी गलती, बस उस दिन पहाड़ ने मुझे रोक लिया। आरव की आंखें बंद हो गई। 15 वर्षों से जिस एक वाक को सुनने के लिए उसका मन तड़प रहा था, वो आज एक पुराने कागज से निकलकर उसके सामने खड़ा था। मीरा आगे लिखती है, आरव, अगर तुम कभी लौटो तो मेरे लिए मत रोना। अपने लिए जीना और एक काम जरूर करना, उस चिनार के नीचे अपने अपराध बोध को छोड़ देना। मैं नहीं, वो पेड़ तुमको सबसे ज्यादा सताता रहेगा। पत्र समाप्त हो गया। आरव बहुत देर तक उसी जगह बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसने पत्र को मोड़ा, सीने से लगाया और पहली बार फूट फूट के रो पड़ा। वो रोना सिर्फ मीरा के लिए नहीं था, उन 15 वर्षों के लिए भी था जो उसने पल पल अपने को सजा देते हुए बिताए थे। आरव ने कहा, मीरा, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया था, मैंने तो अपने आप को खोल दिया था। आरव ने धीरे धीरे सर उठाया। पेड़ के सामने कुछ क्षणों के लिए धूप और धुंध के बीच उसे एक आकृति फिर से दिखाई दी। सफेद

शांत मुस्कान जिसे वो 15 साल से भूल नहीं पाया था। उस आकृति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे किसी ने किसी को आखिरकार माफ कर दिया हो। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण बादलों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली। प्रकाश चिनार की शाखाओं से होकर गुजरा और वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में खुल गई। आरव मुस्कुराया। परसों बाद उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं था। वो लौटने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे से मीरा की वही खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, अलविदा नहीं मीरा, धन्यवाद। जब वो पुल पार करके वापस आया, यूसुफ चाचा वहीं बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आरव की आंखों में देखा। वहाँ बरसों बाद शांति थी। यूसुफ ने मुस्कुरा के पूछा, मिल आए? आरव ने कुछ पल लगाए, फिर कहा, चाचा मीरा से भी मिलाया और खुद से भी। यूसुफ की आंखें भीग गई और उन्होंने धीरे से कहा, तभी तो आज पहली बार इतने सालों के बाद इस पेड़ की हवा हल्की लग रही है। दोनों के कदम गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद आरव अचानक रुक गया। उसने पूछा, चाचा वो पत्र आपने वहाँ रखा था? यूसुफ चाचा ने हैरानी से पूछा, कौन सा पत्र? जो लकड़ी की डिब्बिया में था, मीरा का। यूसुफ चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा उसमें उसकी कोई चिट्ठी मुझे कभी मिली ही नहीं, हमने तो बहुत ढूंढा। आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसने जेब में हाथ डाला पत्र निकालने के लिए, लेकिन जेब खाली था। वो घबरा कर दूसरी तरफ जेब टटोलने लगा। फिर उसने बैग देखा, कुछ नहीं, पत्र गायब था। दोनों बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़े। दूर का वही विशाल पेड़ सुबह की धूप में एकदम शांत खड़ा था। उसकी सबसे निचली शाखा पे एक सूखा हुआ नीला जंगली फूल हवा में झूल रहा था और एक स्त्री की हंसने की आवाज आ रही थी। प्यारे श्रोताकर्ण, कश्मीर में दरांग जैसा कोई गांव है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हर इंसान के भीतर एक चिनार जरूर होता है, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अधूरे शब्द, अपनी भूलें, अपने अपराध बोध सालों तक छिपा कर रखता है। कभी अगर हिम्मत हो तो उससे जरूर मिलिएगा, हो सकता वो आपको आपकी आत्मा से मिला दे और तभी शायद आप अपने आप को माफ कर सके। और फिर इस कहानी का एक प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। जिस पत्र को आरव ने पढ़ा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, अगर वो सचमुच था तो वापस कहाँ गया? और अगर वो नहीं था तो आरव ने क्या पढ़ा? मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर लेट नाइट हॉरर शो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर कभी किसी पुराने चिनार, बरगद या पीपल के पेड़ के पास हवा अचानक थम जाए तो एक पल के लिए चुप रहिएगा। कभी कभी खामोशी भी बहुत सारी कहानियाँ सुना देती है। शुभ रात्रि।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कहीं दोस्ती की वफा है तो कहीं सत्यम शिवम का शोर, इनके बिना हर महफिल अधूरी, हर साज लगता है बेनूर।
2: मेलोडीन की वो प्यारी तान और वायलिन का वो मीठा शोर, खींच ले जाता है हमें फिर से बीते सुनहरे दौर की ओर। एक लक्ष्मी की धुन तो दूजे प्यारे का सांझ निराला था, इन्होंने तो हर टूटते दिल को अपने संगीत से सवारा था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: तो चलते हैं रात के सफर में, आज बहुत ही दो प्यारे से हमारे अनमोल सितारों को लेकर के, जिनके सफर में आज हम बताने वाले हैं उनके कुछ बीते लम्हों को और कुछ गानों के पीछे की कहानियों को। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर भूले बिसरे गीत, जो रात के सफर में है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि दोस्ती अगर किसी से हो जाती है तो वो इस जन्म की मुझे लगता है कि नहीं होती है, वो दोस्ती होती है हमारे काफी पुराने जन्मों की। कुछ ऐसी ही मिसाल इन दोनों की दोस्ती ने करी, कुछ ऐसी मिसाल जो कि हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। हम सब बताएंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कैसे बनी। बिल्कुल, इन दोनों की मुलाकात किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक मैच के फील्ड में हुई थी। प्यारेलाल जी अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे। लक्ष्मीकांत जी ने आकर उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। बस फिर क्या था, वहीं उनकी दोनों की शुरुआत हुई और मुलाकात। कह सकते हैं कि दोस्ती की मुलाकात या शुरुआत उसी समय, लक्ष्मीकांत जी करीब 15 साल के थे और प्यारेलाल जी मात्र 12 साल के। ये दोस्ती महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये दोस्ती की मिसाल बनने के लिए ही इन दोनों को ईश्वर ने मिलवाया था। और शायद आज उनकी जोड़ी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कि कोई न भूलने वाला कुछ ऐसा फूल हो। जैसे हम कई बार कभी बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है, गुलाब के फूल पे, है ना। तो ठीक वैसे ही इन दोनों जोड़ियों के लिए हम गुलाब की दोस्ती को कायम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा।

0: अभी आपने सुना आरजे ख्वाहिश की पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। क्यों आरजे ख्वाहिश?
1: बिल्कुल आरजे गुमसुम। और ये गाना आज बड़ा ही बेहद सुरीला सा लगा। वैसे कभी कभी हम लोग कभी जाते हैं ना तो सफर के दौरान सुनते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा ही मजा आ गया।
0: यही तो बातें होती है पुराने गानों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लिसनर्स, कि हम सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है कि हमारे स्ट्रगल में कोई ना कोई हमारा साथ दे, हमें आगे बढ़ाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जीवन में इस रोल को अदा किया हमारी हम सभी की प्यारी लता मंगेशकर जी ने। लता जी ने इन्हें आगे बढ़ाया, बहुत साथ दिया इनका। लता जी ने ही कोलाबा के रेडियो क्लब में लक्ष्मीकांत जी को मेडोलिन बजाना सिखाया। उनके हुनर से वो बहुत ही प्रभावित थीं। लता जी को उनका मेडोलिन बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने ही इन दोनों को संगीत अकादमी सुरील कला केंद्र में दाखिला भी दिलाया। इतना ही नहीं, लता जी उस वक्त बड़े संगीतकारों से इनकी सिफारिश भी करती थी ताकि इन्हें काम मिल सके और इनके हुनर को पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल, तो आपने सुना ना कि किसी न किसी एक मेंटोर को होना जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जो कि दोनों ने फिल्माया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और जिनका साथ दिया था हम सबकी स्वर कोकिला लता जी ने।

कहते हैं कि हर किसी के नाम के आगे कोई न कोई ऐसी पहचान जुड़ी हुई होती है, और ये भी कहा जाता है कि हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। नाम का अर्थ अगर हम जान लें तो उसके बारे में पूरी ही पूरी उनके जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिल सकती है। और बिल्कुल हर किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। लक्ष्मीकांत जी के नाम का भी एक बहुत बड़ा अर्थ है। आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मीकांत जी का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, जब लक्ष्मी पूजन हो रहा था, इसलिए उनका नाम लक्ष्मीकांत रखा गया। साथ ही साथ प्यारे लाल जी के नाम के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि हमें जब सबसे प्यारी कोई चीज लगती है तब हम उनके घर में निक नेम रख देते हैं, यानी कि उनके घर का नाम। आजकल सभी के घर का नाम कुछ न कुछ है। निक नेम मतलब छोटा किसी का नाम का स्वरूप। ऐसे ही प्यारे लाल जी का जब नाम पड़ा तो वो घर में सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे, इसीलिए आज तक उनके नाम के आगे प्यारे लाल फेमस हो गया। एक बार प्यारे लाल जी विदेश जाकर म्यूजिक सिखाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें बड़े भाई की तरह समझाया कि हम एक साथ कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे, और प्यारे लाल जी रुक गए। और फिर क्या था वो तो आप सभी को पता ही है। इनकी जोड़ी के तौर पर पहली रिलीज फिल्म पारसमणि, जो कि 1963 में आई थी। इनके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज भी वो सबके दिलों में छाया हुआ है। और एक गीत और भी था जो वो जब याद आए, ये जबरदस्त हिट हुए थे दोनों सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

इस जोड़ी ने 1963 से 1998 के बीच करीब 635 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, हम सबका फेवरेट 1 2 3 तेजाब मूवी का ये गाना, जिसमें की धुन जो दी थी वो दी थी लक्ष्मीकांत जी ने। और ये गाना उन्होंने कहाँ सुना आपको पता है? ये गाना उन्होंने गणेश पंडाल में बजते हुए सुना था और फिर उन्होंने इसे डमी लिरिक्स में लिखा और जावेद अख्तर जी को सुनाया। जावेद अख्तर जी को ये बहुत ही पसंद आया और उसके बाद उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड भी किया। 1964 की फिल्म दोस्ती ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा संगीत।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
0: कैसे?

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जुगलबंदी का तो क्या ही कहना। जहाँ लक्ष्मीकांत जी गानों की धुन बनाते थे और गायकों के साथ काम करते थे, वहीं पर प्यारे लाल जी को इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और उन्हें अरेंज करने का बहुत शौक था और वो इसमें बहुत माहिर भी थे। वे लगभग अपने सभी गानों में वायलिन जरूर बजाते थे और इसी के लिए बहुत मशहूर भी थे। आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

स्वतंत्र संगीतकार बनने से पहले उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ सहायक यानी असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने आरडी बर्मन और एसडी बर्मन के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट भी करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि जब बड़ी सफलता सामने हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। उनकी और एक बड़ी सफलता 1964 की फिल्म दोस्ती ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन जय किशन जी के जाने के बाद राज कपूर ने एलपी को चुना और उन्होंने बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसा कालजयी संगीत भी दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जी का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडालकर और प्यारे लाल जी का पूरा नाम प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा है। तो आइए उन्हीं की संगीत से ये जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर जी ने जब लक्ष्मीकांत जी को मैंडोलिन बजाते हुए देखा तो वो बहुत ही खुश हुई और उन्हें उनका मैंडोलिन बजाना बहुत पसंद भी आया, जिसके बाद उन्होंने सुरील कला केंद्र में उन दोनों का दाखिला भी करवा दिया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस दौर में लता मंगेशकर जी ने उनकी बहुत मदद की। शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से उनकी सिफारिश भी की ताकि उन्हें काम मिल सके और वो आगे बढ़ सके। कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक बन जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जहां लक्ष्मीकांत जी बहुत मिलनसार प्रोड्यूसर थे और सिंगर्स के साथ बहुत ही प्यार से डील करते थे। वहीं प्यारेलाल जी थोड़े शांत स्वभाव के थे और जल्दी किसी से बात करना या घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था। वो हमेशा सबको गाइड तो करते थे पर खुलकर कभी किसी से बात नहीं किया करते थे। आज भी जब आप पुराने गानों में मैडोलिन की प्यारी सी आवाज सुनते हैं तो समझ जाइए कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही कोई गाना है। जहां बड़ा सा वायलिन सुनाई दे वहां प्यारेलाल जी का जादू, तो लक्ष्मीकांत जी की धुन होना तो लाजमी ही है। तो आइए चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

0: महफिल आज की यही थमती है, पर यादें यही रहेंगी। उनकी हर एक सरगम कानों में मधुर बन कर बहेगी। एलपी के सुरों के साथ विदा लेते हैं आज हम।
1: वक्त के पन्नों से यादों का वो दौर नहीं मिटता, संगीत का ये बहता हुआ दरिया कभी नहीं रुकता। लक्ष्मीकांत की धुन और प्यारे लाल का वो जादू आज भी कर देता है हर धड़कन को बेकाबू। फिर मिलेंगे भूले बिसरे के बहुत सारे सुरीले गीतों के साथ, मिटाने हर गम को। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश और आपसे लेती हूँ विदा। रात के सफर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।